FM 102.2 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 24 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 हो चुके हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुन सकेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है। जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
1: लखनऊ में हाल ही में हुई आग की दुर्घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट जल्द से जल्द कराया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक ईरान समर्थित गुट आतंकी गतिविधियों में लिप्त है और हमले जारी रखे हुए हैं, तब तक पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल नहीं हो सकती। अबुधाबी में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि लेबनान में संघर्ष विराम को लेकर चर्चा ईरान के साथ चल रही वार्ता से अलग है। श्री रूबियो ने कहा कि उन्होंने अमरीका के उपराष्ट्रपति जेरी वेंस और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन से बात की है और अमरीकी अधिकारी लेबनान में पहल कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि कोई भी कूटनीतिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान समर्थित गुटों की गतिविधियों के मुद्दे पर कितनी प्रगति हो पाती है। पश्चिम एशिया में शांति बहाली को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड में हाल ही में वार्ता हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और

0: सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरला, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में भी तेज हवा के साथ आज बारिश की संभावना जताई है। फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हे गजानन, आपको नमस्कार है। आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म तत्व हैं। आप ही इस संसार के एकमात्र करता, धरता और हरता है। आप ही ये संपूर्ण विश्व और ब्रह्म है और आप ही साक्षात नित्य आत्मा है।

प्रार्थना का वास्तविक अर्थ है अपनी सारी आशंकाएं, सारी चिंताएं, सारे संकल्प विकल्प, अपनी सारी योजनाएं ईश्वर के चरणों में रख देना।

गोविंद का प्रेम हर किसी को नसीब नहीं होता, और जिसे हो जाता है गोविंद संग प्रेम, उससे बड़ा कोई खुश नसीब नहीं होता।

किसी को कुछ ना दे सकें तो बस दुआ दे दिया करो, क्योंकि दुआ वह उपहार है जिसके लिए अमीर भी हाथ फैलाते हैं।

कहते हैं चेहरे पर मुस्कान और चमक कभी कम नहीं होनी चाहिए। गमों का क्या है, वो तो आते जाते ही रहते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ आइए करते हैं अपनी मातृभूमि को नमन।

0: भक्ति संगीत के कार्यक्रम को आज अपने सुरों से सजाया लता मंगेशकर, चंचल दास, सुचित्रा बर्वे, लक्ष्मी राठौर और दीपा मोहन ने। इन्हीं सुरों के साथ वंदना कार्यक्रम को अब हम यही विराम देते हैं। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। चिंतन बिंदु इस कार्यक्रम में आज का विचार है अहिंसा परमो धर्म। आलेख डॉक्टर शैलेंद्र नाथ पांडे का है, वाचन किया है पुष्पा शर्मा ने।
1: महात्मा गांधी ने कहा था कि सत्य मेरा ईश्वर और अहिंसा मेरा धर्म है। कैसी विडंबना है कि इतिहास में अनेक बार सबसे अधिक हिंसा, क्रूरता और निर्दयता धर्म के नाम पर ही की गई है। धर्मांधता से पागल शासकों ने तो कभी कभी अपने धर्म की ध्वजा फहराने के नाम पर तमाम जघन्य अत्याचार तथा तांडव किए हैं, किंतु ध्यान देने पर स्पष्ट होगा कि जहाँ कहीं मनुष्यों, दीन दुर्बलों अथवा अन्यान्य पशु पक्षियों के प्रति नृशंसता और शोषण उत्पीड़न के कृत्य किए जाते हों, वह ना तो ईश्वर का निवास है ना धर्म का। जब जब धर्म की ओट में स्वार्थ पूर्ति, धन लिप्सा अथवा विभिन्न प्रकार की महत्वाकांक्षाओं को

0: पूरी करने के प्रयास किए गए हों, तो महापुरुषों ने उसके विरुद्ध आवाज़ उठाई है। हमारे अपने ही युग में महर्षि दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद तथा महात्मा गांधी जैसे युगावतारों ने धर्म के नाम पर प्रचलित कुरीतियों पर प्रहार कर धर्म के वास्तविक स्वरूप को उजागर करने का क्रांतिकारी कार्य किया। धर्म की ओट में मनुष्य मनुष्य के बीच किए जाने वाले भेदभाव, छुआछूत, विषमता, शोषण एवं उत्पीड़न से क्षुब्ध मानसिकता ने तो कभी कभी धर्म विरोधी स्वर तथा नास्तिकता तक को जन्म दिया है। अभी विगत शताब्दी में पश्चिम में कार्ल मार्क्स का आविर्भाव इसका ताजा उदाहरण है। अनेक शास्त्रों में कहा गया है कि न तो परहित के समान कोई धर्म है, न पर पीड़ा के समान कोई नीचता है। महात्मा गांधी का प्रिय भजन ही था, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। केवल मानव मात्र ही नहीं, अपितु समस्त पशु पक्षियों जीव जंतुओं के प्रति दया तथा प्रेम का भाव ईश्वर परायण मनुष्य की पहचान है। यही कारण है कि आज मांसाहार के विरुद्ध एक प्रकार का विश्व जनमत बन रहा है तथा पश्चिम के देशों तक में जीव हिंसा के प्रति विरोध तथा भर्त्सना का वातावरण निर्मित हो रहा है। जैन धर्म में मनसा, वाचा, कर्मणा किसी को कष्ट पहुंचाने को हिंसा के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। केवल अस्त्र शस्त्र से आघात पहुंचाना अथवा हत्या करना ही हिंसा नहीं है, अपितु शब्दों एवं वचनों से भी किसी को चोट पहुंचाने तथा मानसिक पीड़ा देना भी हिंसा ही है। अतः मनुष्य को अपने बोलने चालने तथा दैनिक व्यवहार में अत्यंत सावधान रहना चाहिए। यद्यपि आज का युग भौतिकवादी कहा जाता है तथा भोग के प्रति अमर्यादित आकर्षण निस्संदेह आज के जीवन की त्रासदी बन चुका है, तथापि एक शुभ लक्षण यह उभरता दिखलाई पड़ रहा है कि प्रबुद्ध लोगों की दृष्टि विश्व युद्ध के निवारण पर ही नहीं अपितु पर्यावरण के संरक्षण पर भी गई है। वैज्ञानिक सत्य है कि पेड़ पौधों में भी जीवन है और हरे भरे वृक्षों तथा वनों को काटना उतना ही बड़ा अपराध है जितना सीधे साधे वन्य जीवों का वध। अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए पर्यावरण संतुलन नितांत आवश्यक है, किंतु वह तभी संभव है जब हम अहिंसा के भाव को जीव जगत तक ही सीमित न रखकर उसे वनस्पति जगत तक भी विस्तारित करें।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन बिंदु कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज का विचार था अहिंसा परमो धर्म। आलेख डॉक्टर शैलेंद्रनाथ पांडे का था, वाचन किया था पुष्पा शर्मा ने। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान पाठ से लिए कुछ संगीतबद्ध अंश। स्वर महेंद्र कपूर के हैं, संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

कपटी मुनि एक तनु ने राजा प्रताप भानु को ब्राह्मणों को प्रसन्न करने का ये उपाय बताया कि वो एक वर्ष तक नित्य प्रति 100,000 ब्राह्मणों को उनके कुटुंब सहित भोजन कराए। उसी समय वहां कालकेतु नामक राक्षस आया। वो तपस्वी राजा अर्थात कपटी मुनि का गहरा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र तथा 10 भाई थे जो अजेय तथा देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों तथा देवताओं को निर्भय करने के लिए राजा प्रताप भानु ने उन सब की हत्या कर दी थी और इसी कारण बदला लेने

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान पाठ से लिए कुछ संगीतबद्ध अंश। स्वर महेंद्र कपूर के थे, संगीतकार थे सतीश भाटिया। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए जानते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

रात्रि 10:30 से हम आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे ख्याल गायन राग दरबारी कान्हड़ा में। कलाकार होंगे पंडित ओमकार नाथ ठाकुर। ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम लेकर आएंगे संध्या 6:15 से। इस कार्यक्रम में सुनिएगा एक वार्ता, विषय रहेगा खेत बचाओ अभियान के क्रम में मिट्टी की जांच के लाभ। वार्ताकार होंगे पुनीत कुमार।

इन सभा का आरंभ करेंगे संध्या 5:30 पर कार्यक्रम युववाणी से। इस कार्यक्रम में आज की बात क्रम में आज के विषय लेकर आएंगे पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जयंती, वीवी गिरी पुण्यतिथि, अंतर्राष्ट्रीय महिला कूटनीति दिवस। इसी के साथ आप सुन सकेंगे बातचीत व्यक्तिगत विकास वार्ता पर। विषय रहेगा युवा कलाकार अरुण रावल से चंचल सारस्वत की बातचीत। बहनों के लिए कार्यक्रम लेकर आएंगे वनिता लोग दोपहर 1:15 से। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे भेंट वार्ता। विषय रहेगा उत्तम स्वास्थ्य के लिए फिजियोथेरेपी की भूमिका। वार्ताकार होंगी डॉक्टर पूनम शर्मा। आपसे भेंट करेंगी उषा पांडे। श्री हाकिम सिंह के गाए ब्रज लोकगीतों का आनंद लीजिएगा दोपहर 12:30 पर। ब्रज की समसामयिक गतिविधियों पर आधारित सजीव कार्यक्रम ब्रज दर्पण सुबह 9:30 से प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम आबो हवा का समय रहेगा सुबह 9:25। सुबह 9 बजे होगी हिंदी वार्ता। आज का विषय लेकर आएंगे कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न व बचाव के कानून। जानकारी देंगे खड़क सिंह छोंकर।

ब्रज माधुरी कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 7:31। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का समय 2:30 रहेगा।

ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम लेकर आएंगे संध्या 7:05 से। भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन संध्या 6:45 से आप सुन सकेंगे। संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी का समय रहेगा संध्या 7:31।

0: अभी तक आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। खेती की बातें, इस कार्यक्रम में आज का विषय है खरीफ प्याज हेतु पौध की तैयारी। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत।
1: किसान भाइयों, आज हम आपको खरीफ प्याज के पौध तैयार करने के बारे में जानकारी देंगे। इसके लिए सबसे पहले प्रभेद का चयन करना होगा। अब तक आप लोगों ने खरीफ में N53 किस्म को लगाते आए हैं। अनुसंधानों से ज्ञात हुआ है कि एग्रीफाउंड लार्ज रेड किस्म भी खरीफ के लिए अच्छी है। बहरहाल N53 और एग्रीफाउंड लार्ज रेड किस्म में से किसी एक का चयन आप कर सकते हैं। प्रयोगों से ये भी सिद्ध हो चुका है कि खरीफ प्याज के पौध तैयार करने के लिए बीज को पौधशाला में जून के अंतिम सप्ताह में बो देना चाहिए। इसके बाद बीज बोने से उपज में कमी आती है। एक हेक्टेयर की रोपाई करने के लिए 500 वर्ग मीटर क्षेत्र में आपको पौध तैयार करनी होगी और इसके लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। बीज स्थली के लिए ऊंची जगह होनी चाहिए। मिट्टी हल्की दोमट या बलुई दोमट हो, जिस

0: बच्चे के अंकुरण आसानी से निकल सके। बरसात की प्याज के लिए ज़मीन से करीब 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियां बनाई जाती हैं। इन क्यारियों का आकार 1 मीटर चौड़ा और 5 मीटर लंबा रख सकते हैं और प्रत्येक दो क्यारियों के बीच में लगभग 30 सेंटीमीटर जगह छोड़ दी जाती है, जो खरपतवार निकालने के अलावा बरसात के अतिरिक्त पानी को भी क्यारियों से बाहर निकालने में मदद करती है। 1 मीटर चौड़ी तथा 5 मीटर लंबी आकार की प्रत्येक क्यारी में 10 से 15 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद तथा 10 से 15 ग्राम दानेदार फ्यूराडान डाल करके अच्छी प्रकार मिट्टी में मिला करके उसको भुरभुरा कर देते हैं। बीज को क्यारियों में बोने से पूर्व फफूंद नाशक दवा जैसे कि कैप्टान है, थीरम है, इनमें से किसी से 2.5 ग्राम दवा प्रति किलो बीज की दर से उपचारित की जाती है। इस प्रकार उपचारित बीज को सूखी राख या मिट्टी में मिलाकर क्यारियों में समान रूप से बिखेर दें। इसके पश्चात मिट्टी तथा गोबर की सड़ी खाद के मिश्रण से बीज को हल्का ढक दें। तत्पश्चात क्यारियों को सूखी घास या पुआल से ढक दिया जाता है। हजारे की सहायता से प्रत्येक दिन क्यारियों को हल्की सिंचाई करते रहें। हजारे का पानी फव्वारे के साथ सूखी घास से ढकी क्यारियों के ऊपर ही डालते हैं। जब बीज का जमाव या अंकुरण अधिक हो जाए तो घास या पुआल की परत को आप क्यारियों के ऊपर से हटा दें। समय समय पर क्यारियों से खरपतवार निकालते रहें। डाइथेनजेट 78 का 1-2 छिड़काव करना भी जरूरी हो तो उसको भी कर दें, जिससे कि पौध किसी बीमारी से प्रभावित न हो। जब पौध 7 से 8 सप्ताह पुरानी हो जाए तो उनको रोपने के काम में लाते हैं। रोपाई के लिए पौध स्वस्थ होनी चाहिए तथा रोपने की दूरी पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हैं तथा कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर रखते हैं।
1: खेती की बातें। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे खरीफ प्याज हेतु पौध की तैयारी विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत।

आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। सुबह का 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुन सकेंगे संस्कृत में समाचार।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् परिवर्तनशील वैश्विक परिस्थितौ सुरक्षा सहकार्यं गभीरं कर्तुं तथा च आतंकवादात् अंतर्जालीय सुरक्षायाः च आरभ्य उदयमान प्रौद्योगिकी पर्यन्तं समाह्वानानां परिहारे ब्रिक्स इत्यस्य महत्वपूर्णा भूमिका वर्तते। प्रधानमंत्री श्री मोदी गतसायं नवदिल्ल्यां ब्रिक्स देशानां राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदैः वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारिभिः सह मिलितवान्। सामाजिक माध्यम संदेशे श्री मोदिना प्रकाशितं यत् भारतस्य ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहकार्यं प्रवर्तयितुं वैश्विक दक्षिणस्य

लीजिए, पेश है पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

हसरत जयपुरी की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया शंकर जयकिशन ने। असली नकली अभी आपने सुना इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर के युगल सुरों को।

शैलेंद्र की शब्द रचना को अपनी आवाज दी मन्ना डे और साथियों ने। फिल्म थी सीमा।

0: एस डी बर्मन के संगीतबद्ध इस गीत को हमने लिया था फिल्म गाइड से। किशोर कुमार, लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही भूले बिसरे गीतों के कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। कृपया हमारे अगले अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी। मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर। अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम। जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी। आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है, और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है, और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी। मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
2: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। लखनऊ अग्निकांड मामले में SIT और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य। इमारत को गिराने का नोटिस जारी। कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा इंतजामों को लेकर प्रदेश भर में जांच अभियान शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलों में अग्नि सुरक्षा ऑडिट कराने के दिए निर्देश। कहा, आवासीय भवनों में नहीं होना चाहिए व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित SIT ने गृह विभाग को सौंपी प्रारंभिक रिपोर्ट। कहा, अभी जुटाए जा रहे हैं और सबूत। और प्रदेश सरकार की तरफ से बेंगलुरु में आज हो रहा निवेशक रोड शो, उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग का आयोजन। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे देश के कई उद्योगपति। और अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के मामले की जांच के लिए कल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल SIT के सदस्यों ने संयुक्त रूप से घटनास्थल का निरीक्षण किया। SIT ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के बाद KGMU पहुंचकर घायलों से भी बातचीत की। वहीं फोरेंसिक टीम ने सबूत जुटाने के साथ ही जांच के लिए पूरी

0: इमारत को सील कर दिया है। पत्रकारों से बातचीत में एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने बताया कि
1: हमें कुछ शुरुआती साक्ष्य मिले हैं, उसके बेसिस पर हमें फर्दर लोगों से पूछताछ करनी है, विक्टिम से भी बातचीत करनी है।
2: हम सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करेंगे, हर डिपार्टमेंट के लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और सभी आयामों पर विस्तार से देखेंगे और बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट जो कि निर्धारित समय सीमा है मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित एसआईटी में संस्कृति विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात और लखनऊ के एडीजी जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। अलीगंज पुलिस की ओर से रविवार देर रात इस मामले में 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर इमारत के मालिक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही नगर निगम के 2 और ऊर्जा विभाग और फायर डिपार्टमेंट के 1-1 अधिकारी को निलंबित किया गया है। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल लखनऊ में घटना में जान गंवाने वालों के अंतिम संस्कार में शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है।
3: बहुत ही दुखद घटना है हमारे जीवन की। परिजनों को तत्काल यूपी गवर्नमेंट ने 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता पहुंचा दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 2-2 लाख रुपए की सहायता पहुंचाई है और ये सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। इस दुख की घड़ी में पूरी सरकार पीड़ित परिजनों के साथ खड़ी। आगे घटनाएं न हो उसके उपाय किए जाएंगे और जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो।
0: लखनऊ में अग्निकांड के बाद कल प्रदेश के सभी जनपदों में अग्निशमन सुरक्षा को लेकर स्थानीय प्रशासन ने कोचिंग सेंटरों में जांच अभियान चलाया। वाराणसी के दुर्गा कुंड क्षेत्र में वाराणसी विकास प्राधिकरण पुलिस और फायर सर्विस की संयुक्त टीम ने निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर एक कोचिंग संस्थान को सील कर दिया। वहीं गोरखपुर बस्ती मेरठ प्रयागराज जौनपुर अमरोहा अम्बेडकर नगर फरुखाबाद आगरा समेत अन्य जिलों में जांच अभियान चलाकर नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया। जांच का क्रम आज भी जारी रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अलीगंज में सोमवार को आग लगने की घटना को एक बड़ा सबक बताते हुए कहा कि इससे सीख लेते हुए ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो। मुख्यमंत्री ने हर जिले में अग्नि सुरक्षा ऑडिट के लिए प्रदेश के सभी जिलों में एसआईटी का गठन कर अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: कल देर शाम लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश भर में अग्नि सुरक्षा को लेकर चलाया जाने वाला अभियान पूरी तरह जनहित में संचालित किया जाएगा। पहले जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि किसी भी परिस्थिति में बेसमेंट में कोचिंग अथवा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन न होने पाए। समाचार कक्ष से रितेश।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी 2026 के परिणाम कल घोषित कर दिए। उम्मीदवार सीयूईटी के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। यूपीटीईटी 2026 की परीक्षा अगले माह 2 से 4 जुलाई के बीच होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा प्रदेश के 60 जनपदों के 955 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र 30 जून से आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड किए जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल SIT ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी है। SIT के प्रमुख सदस्य और लखनऊ मंडल के आयुक्त विजय विश्वास पंत ने टीम के अन्य 2 सदस्यों के साथ कल अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को ये प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी। विजय विश्वास पंत ने बताया कि ये प्रारंभिक प्रतिवेदन है। SIT की जांच अभी जारी है और सबूत जुटाए जा रहे हैं।
5: शासन द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय SIT की रिपोर्ट हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है। जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी।
0: प्रदेश सरकार

0: उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के अंतर्गत आज बेंगलुरु में एक निवेशक रोड शो का आयोजन कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस रोड शो की अध्यक्षता करेंगे। देश के कई प्रमुख उद्योगपति भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। 3 सत्रों के कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश में निवेश और व्यापार के अवसरों पर एक लघु फिल्म भी दिखाई जाएगी। इस दौरान निवेशकों को उत्तर प्रदेश की मजबूत बुनियादी ढांचागत व्यवस्था, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, क्षेत्रीय नीतियों, एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी, रक्षा गलियारे, डेटा सेंटर पार्क, इलेक्ट्रिक वाहन और विनिर्माण क्षेत्र आदि में हुई प्रगति से अवगत कराकर उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा। हज 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट और हज सुविधा मोबाइल ऐप पर 20 जुलाई तक पंजीकरण कराया जा सकता है। जुलाई के अंतिम सप्ताह में डिजिटल रैंडम चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयनित यात्रियों की सूची जारी की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने बताया,
1: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहने का अनुमान जताया है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने कहा कि कोई सक्रिय मौसमी तंत्र न होने के कारण पछुआ हवाएं आ रही हैं, जिसके चलते पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर लू की स्थितियां बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि 28 जून से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात का एक नया दौर आरंभ होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ अग्निकांड मामले में एसआईटी और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य, इमारत को गिराने का नोटिस जारी। कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा इंतजामों को लेकर प्रदेश भर में जांच अभियान शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलों में अग्नि सुरक्षा ऑडिट कराने के दिए निर्देश, कहा आवासीय भवनों में नहीं होना चाहिए व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित एसआईटी ने गृह विभाग को सौंपी प्रारंभिक रिपोर्ट, कहा अभी जुटाए जा रहे हैं और सबूत। और प्रदेश सरकार की तरफ से बेंगलुरु में आज हो रहा निवेशक रोड शो उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग का आयोजन, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे देश के कई उद्योगपति। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को समझना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
4: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

ब्रज माधुरी कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनन को चंद्रा खत्री की जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। साथियों, हमारो ब्रज संस्कृति को ब्रज है, यहाँ की संस्कृति ही हमारी धरोहर है और यही धरोहर में हुए है 84 कोस की परिक्रमा। जी हाँ साथियों, और यह परिक्रमा में आवे है वृंदावन को श्री राधा वल्लभ मंदिर। तो आओ, ब्रज की माटी तोहे प्रणाम में आज हम यह मंदिर की महत्वता के बारे में जानेंगे और जाकी जानकारी दे रही है हमारी बहन रश्मि शर्मा।

0: जय श्री कृष्णा। तो श्रोताओं, आज के यह कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे श्री राधा वल्लभ मंदिर के विषय में। वृंदावन को श्री राधा वल्लभ मंदिर अपने आप में एक विशेष महत्व रखे हैं, क्योंकि श्री राधा वल्लभ मंदिर में भक्त श्री कृष्ण और श्री राधा दोनों के एक संग दर्शन पा सके हैं। लेकिन यहाँ राधा कृष्ण एक युगल जोड़ी हैं, वे दो नहीं एक हैं। राधा में कृष्ण हैं और कृष्ण में राधा समाहित हैं। वे एकाकार रूप में हैं। श्री राधा वल्लभ के दर्शन बड़े दुर्लभ हुए हैं। यही यहाँ कहो भी जाए है कि राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। प्रभु वाई को दर्शन देने हैं, जाके हृदय में सच्चो प्रेम और श्रद्धा हुए है, पूर्ण आस्था हुए है।
1: इस रसराज भूमि का प्राकट्य होने के लिए श्री प्रिया प्रीतम ने निकुंज धाम में अपनी तीन सखियों को पृथ्वी पर आने के लिए उत्कंठा उत्पन्न की। वो तीन सखियां हैं ललिता, विशाखा और मुरली। ललिता सखी के अवतार श्री हरदास जी, जिन्होंने बांके बिहारी प्रकट किए निधिवन राज से। विशाखा सखी किशोरवन व्यास जी महाराज प्राकट हुआ विशाखा सखी। और हितहरिवंश महाप्रभु, जिन्होंने श्री राधा वल्लभ लाल को प्राप्त किया, वो मुरली के अवतार, भगवान की मुरली। तो एक आत्मदेव ब्राह्मण थे, वो भगवान शंकर के उपासक थे, निष्काम भाव से सेवा किया करते थे। एकदम भगवान शंकर प्रकट हुए और कहा, भाई मेरी जो सेवा करता है मैं उसको कुछ ना कुछ अवश्य दूंगा। बोले, महाराज मैंने तो कोई कामना से सेवा की नहीं है। नहीं की है तो भी मैं आया हूँ तो कुछ ना कुछ तो दे के जाऊँगा, कुछ मांगो। बोले, महाराज क्या मांगू, आपको जो अति प्रिय हो वही दे दीजिए, जो आपके हृदय में बसता हो अत्यंत।

0: ये हो वही दे दीजिए। भगवान शंकर के हृदय में तो भगवान विराजमान होते हैं, उन्होंने उठा के अपनी एक विग्रह राधा वल्लभ लाल का हाथ दे ब्राह्मण को दिया। अब ब्राह्मण बोला, महाराज मुझसे तो सेवा होगी नहीं, क्यों मैं तो अकिंचन हूँ, मेरे पास कोई धन संपत्ति कुछ भी नहीं है, फिर इनकी सेवा कैसे हुई। बोले चिंता नहीं करो, मैंने उसकी व्यवस्था भी कर दी है, दोनों तरफ की व्यवस्था कर दी है, अपनी सेवा की भी और आपकी चिंता की भी, क्योंकि आपकी दो कन्याएं हैं निर्धन होने के कारण से, उनका विवाह नहीं करेंगे, आचार्य महाप्रभु आएंगे, उनको आप मेरे स्वरूप के दर्शन कराना मेरे स्वरूप के लोभ से, और वो दोनों कन्याओं को ले जाएंगे। तो यहाँ वृंदावन में एक बड़ा भारी डाकू नरवाहन नाम का निवास किया करता था, हरवंश जी महाराज के समीप में भी आया तो नरवाहन ने कहा, महाराज मैं आपको क्या भेंट करूं। बोले हमें तो कुछ नहीं चाहिए, ठाकुर जी की मन सेवा के लिए थोड़ी सी भूमि की आवश्यकता है। नरवाहन ने कहा, महाराज थोड़ी नहीं, आप तीर चलाइए और ये तीर जहाँ तक जाएगा वहाँ तक की आपकी सेवा के लिए भूमि आप उपयोग में ले सकते हैं। हरवंश जी महाराज ने ऊंची ठौर से तीर चलाया और यहाँ चीर घाट तक तीर गया, जहाँ तक वृंदावन की भूमि, राधा वल्लभ संप्रदाय की भूमि, और यहाँ पर इसी बीच में ये राधा वल्लभ जी के मंदिर की स्थापना हुई।
1: श्री राधा वल्लभ मंदिर वृंदावन को प्राचीन मंदिर है और याको निर्माण सन 1585 में भयो। श्री राधा वल्लभ मंदिर बांके बिहारी मंदिर के समीप आई चट्टान पे गौतम नगर के पास स्थित है। यह अपनी आकर्षक वास्तुकला और भव्य सजावट के कारण सबसे अलग है। यह मंदिर के निर्माण के कार्य सुंदरदास भटनागर को अकबर के दरबार की अनुमति मिली ही और यह की स्थापना गोस्वामी हित हरवंश महाप्रभु जी ने करी। यह प्राचीन मंदिर मध्यकालीन वास्तुकला में हिंदू और इस्लाम के बीच जीवित संवाद है। यह राजसी मंदिर लाल सैंडस्टोन यानी लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। वास्तविक केवल शाही इमारत, उच्च महल और शाही किलान के निर्माण के काजे ही या को उपयोग किया जाए हो। यह अद्भुत मंदिर की दीवार 10 फीट मोटाई में है और दो चरणन में छेड़ी गई है। यह राजसी मंदिर उदार शैली में बनाया गया है। श्री राधा वल्लभ मंदिर के संदर्भ में सेवायत श्री मनोज गोस्वामी बतावे हैं।
2: राधा वल्लभ संप्रदाय के आद्य प्रवर्तक गोस्वामी श्री इतरवंश महाप्रभु जी ने देवपन से आकर राधा वल्लभ संप्रदाय की यहाँ स्थापना करी वृंदावन में। प्रथम राधा वल्लभ लाल मदन टेर पे आके विराजमान हुए, उसके बाद में उनके पुत्र जो बंचन जी जब गद्दी पे विराजे तो जो लाल पत्थर का मंदिर है, सुंदरदास जी कायस्थ जो है इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। काफी समय तक श्री जी इस मंदिर में विराजे, फिर तो जब औरंगजेब का शासन काल आया तो ये मंदिर की तोड़ फोड़ हुई, तो उसके दौरान जो है श्री जी जो है कामा चले गए, काम वन में वहाँ जाते हैं, 125 वर्ष विराजे कामा में। 125 वर्ष के बाद यहाँ पे वृंदावन में लल्लू भाई जो भौंच के थे, उन्होंने जिस समय वर्तमान में राधा वल्लभ लाल अपने मंदिर में जो विराजते हैं उस मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर का निर्माण लगभग 250 वर्ष इसको हो गए है, इस मंदिर में राधा वल्लभ लाल के आज विराजते हैं। और उसी समय से ही हमारे यहाँ आद्य प्रवर्तक गोस्वामी श्री इतरवंश महाप्रभु जी ने एक अष्टयाम सेवा की विधि का स्थापना करी। इस सेवा में 5 आरती और 7 भोग उन्होंने निर्धारित किए। 5 आरती हैं मंगला आरती, श्रृंगार आरती, राजभोग आरती, संध्या आरती, शयन आरती। 7 भोग कौन से हैं? वो 7 भोग हैं मंगला भोग, श्रृंगार भोग, राजभोग, उत्थापन भोग, संध्या भोग, शयन भोग और एक शिशिर भोग। शिशिर भोग उसको कहते हैं कि जब श्री जी अपने शयन कक्ष में जाते, शयन में जब पधारते हैं तो जब वहाँ उनकी शयन जो कक्ष में शयन करते हैं तो वहाँ पे एक भोग भी रखा जाता है, जल भी रखा जाता है। रसिक लोगों का भाव ये था कि रात्रि में अगर इनको भूख लगे तो यहाँ भोग भी है जल भी है तो ये इसको ग्रहण कर लेंगे। तो उसी प्रकार से हमारे संप्रदाय में आज तक उस परंपरा का पालन किया जा रहा है।
1: प्रातः काल से सायंकाल तक ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा के दर्शन भक्तों को कराए जाए हैं।

0: हमारे यहाँ जो भोग लगते हैं जो ठाकुर जी को, तो सुबह जो भोग लगता है वो जो है कच्ची रसोई का भोग लगता है। इसमें दाल होती है, इसमें कढ़ी होती है, इसमें खीर होती है, इसमें पकौड़ी होती है, इसमें मिस्सी रोटी होती है, इसमें मीठी रोटी होती है, तीन तरह की सब्जी रहती है, सावक मूंग रहती है, सलाद रहती है और चावल रहते हैं। ये सब सामग्री जो है ये सुबह ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। ये सुबह का भोग की इनकी व्यवस्था यहाँ चलती है हमारे मंदिर में। शाम को जो भोग लगते हैं उसमें तीन सब्जी रहती है, दही बड़ा रहता है, रबड़ी रहती है और नाना प्रकार के अन्य व्यंजन पकौड़ी वगैरह जो सब बनाकर ये रात्रि में शैल भोग में लगता है। पूरी है, बेड़ी है, कचौड़ी है, समोसे है, ये रात्रि में जो भोग लगता है उसमें ये व्यंजन नाना प्रकार के ये ठाकुर जी को आरोग्य किए जाते हैं। क्योंकि हमारी उपासना में जो टिकी हुई है, रसिक लोग कहते हैं दो ही भाव हैं यहाँ पे, बोले एक राग और एक भोग। बोले सुंदर सुंदर पकवान बना के राधा वल्लभ जी को पवाओ और सुंदर सुंदर पद जो है उनको गा के सुनाओ, राधा वल्लभ लाल इसी में ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसी में ही निहाल हो जाते हैं। ये रसिकों का भाव है। और ये ब्रज के ठाकुर है ये तो भोग और राग में ही प्रसन्न है। तो ये हमारे मंदिर की जो परंपरा है, जो स्वरूप है, जो 550 वर्ष पहले आचार्य महाप्रभु जो प्राकट हुआ उन्होंने भी स्थापित करी, आज भी हमारे मंदिर में, हमारे संप्रदाय में ये सारी पद्धतियाँ, ये प्रणाली सुचारू रूप से बराबर चल रही हैं। ये यहाँ के मंदिर का स्वरूप है।
1: श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में समाज गायन को विशेष महत्व है। राग और भोग सेवा के माध्यम से ठाकुर जी को विशेष रूप से लाड़ लड़ाए जाए है। मंदिर के सेवायत तथा सेवा अधिकारी सभी पद गायन के माध्यम से ठाकुर जी को लाड़ लड़ाए के बिने रिझामे हैं।
0: हमारे यहाँ समाज का भी गायन होता है। ये समाज गायन जो महाप्रभु जी ने अष्टयाम पद्धति स्थापित करी, उस अष्टयाम में एक जो है अंग जो है समाज का बनाया। अगर हम पूरी अष्टयाम सेवा करें, मंगला भी करें, अपने श्रृंगार भी करें, राजभोग भी करें, उत्थापन भी करें, संध्या भी करें, शयन भी करें, तो इस पूरी अष्टयाम सेवा में अगर हमने कोई राग का कोई पद वगैरह का गान नहीं किया तब तक वो हमारी अष्टयाम अधूरी मानी जाएगी। पूर्ण जब बनेगी जब उसमें राग का भी शामिल किया जाए। अब वो राग कब है कि जैसे मंगला में भी पदों का गान होता है, श्रृंगार में भी पदों का गान होता है, शाम को जो है संध्या में भी पदों का गान होता है। तो हमारे यहाँ भाव ये है कि मंगला के बाद भी जो सखी परकर है वो ठाकुर जी को वन विहार करने लेके जाते हैं, अपने श्रृंगार होता है, श्रृंगार के बाद में भी ठाकुर जी को वन में विहार कराने के लिए ले जाते हैं, संध्या के बाद में भी वन विहार करने के लिए ले जाते हैं। तो भाव जो वन विहार का है, जो ठाकुर जी को लेके जा रहे हैं, वहाँ जो है पदों का गान होता है, उस भाव से यहाँ पे गान होता है अपने। और समाज की जो परंपरा है वो हमारे यहाँ सुबह और शाम दोनों टाइम श्री जी को समाज के माध्यम से उनकी लीलाओं का गान किया जाता है। हमारे यहाँ ये भी है कि जो समाज गान है, जो वाणियों में पद है, जो लीलाएं हैं, बहुत से लोग की मन में जिज्ञासा रहती है, बोले ये समाज गान क्या है। जो समाज गान है ये ठाकुर जी की लीलाएं हैं और इन्हीं की लीलाएं इन्हीं को सुनाई जाती है। हमारे यहाँ रसकों का भाव ये रहता है कि जब इनकी लीलाएं इनको सुनाई जाती है तो ये तो अपने प्रेम में इतने दोनों डूबे हुए हैं कि इनको अपनी सुध नहीं है तो ये और क्या सुध रखेंगे। तो जब उन पदों को, लीलाओं को जब ये सुनते हैं तो अब परस्पर में ये सखियों से पूछते हैं, वही ये बड़ी सुंदर अभी इन्होंने लीला का गान किया, ये किसकी लीला है। तो सखियां इनको बताती हैं कि बोले महाराज जी ये सब आप ही की लीला है। बोले अच्छा हमारी लीला है। बोले हाँ आप तो बोले अपने प्रेम में इतने डूबे हुए तो आपको सुधी भुख नहीं रहती, ये आप ही की लीला है। तो उन लीलाओं को सुन के राधा वल्लभ को अत्यंत जो है प्रसन्नता होती है, उनको बड़ा सुख मिलता है। इस भाव से हमारे यहाँ ये समाज की परंपरा परपाती जो है वो चलती है। हमारे यहाँ आचार वाणी में जो पद है उसमें महाप्रभु जी ने प्रथम पद बोला कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, भावे मोई जोई सोई सोई करे प्यारे, मोको तो भावती ठोर प्यारे के नैनन में, प्यारो है चाहे मेरे नैनन के तारे, मेरे तन मन प्राण भूते प्रीतम।

0: लिए अपने कोट प्राण प्रीतम मुसो हारे। जय श्री इतरवंश हंस हंस निशावल गौर कहो कौन करे जल तरंग गन न्यारे। ये इस उपासना का हमारे यहाँ का ये सिद्धांत है। इसमें जो स्वरूप जो बताया है ये स्वयं प्रिया जी ने महाप्रभु जी को अपने स्वरूप के विषय में बताया कि हमारे स्वरूप को समझ लो कि हम दोनों का स्वरूप क्या है। पद में आता है कि बोलो जोई जोई प्यारो करे, जो जो हमारे प्रीतम करते हैं वो हमको अच्छा लगता है। बोले जोई जोई प्यारो करे सोई मोई, जो जो हमारे प्रीतम कर देते हैं वो सब हमको अच्छा लगता है। ऐसा जी ये हमारा स्वरूप है। बोले जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, भावे मोई जोई सोई, सोई करे प्यारे। मेरे प्रीतम भी वही करते हैं जिससे हमको सुख मिलता है, हमको आनंद मिलता है। मेरे प्रीतम भी वही करते हैं, ये हमारे यहाँ का स्वरूप है। तो जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, भावे मोई जोई सोई, सोई करे प्यारे। मुँह को तो भावती ठोर प्यारे के नैन में। और सन्नी हमारी ये स्वरूप की ये स्थिति है कि मुझे अपने प्रीतम के नेत्रों में बस जाना अच्छा लगता है। और बोले महाराज जी ये आपने अपना स्वरूप बताया, बोले इनकी क्या स्थिति है, बोले ये हमसे एक कदम आगे हैं। बोले मुँह को तो भावती ठोर प्यारे के नैनन में, प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के। बोले हमारे प्रीतम की ये स्थिति है कि हम तो इनके नेत्रों में बसना चाहते हैं और ये तो हमारे नेत्र का तारा बन जाना चाहते हैं, ये इनका स्वरूप है। बोले ये हमारे यहाँ की उपासना का स्वरूप है। बोले मेरे तन मन प्राण भूत है प्रीतम प्रिय, मेरे एक तन एक मन एक प्राण से भी ज्यादा मुझको मेरे प्रीतम प्यारे हैं। तो उन सखियों ने पूछा, बोले जब एक तन एक मन एक प्राण से भी ज्यादा आपको प्रीतम प्यारे हैं, बोले इनकी स्थिति क्या है। ये तो आपने अपना स्वरूप बताया, इनकी स्थिति क्या है। बोले अपने कोटिक प्राण प्रीतम मुसो हारे, बोले हमने तो इनके आगे एक तन एक मन एक प्राण को हारे हैं, लेकिन इन्होंने तो अपने कोटे करोड़ों प्यारों प्राणों को हमारे ऊपर नौछावर कर दिया है, ये हमारा स्वरूप है। बोले जय श्री इतरवंश हंस हंस निशावल गौर कहो कौन करे जल तरंग न्यारे। जिस प्रकार जल से तरंग को अलग नहीं किया जा सकता है, जल से लहरों को अलग नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार हम दोनों की जो स्थिति है वो हम दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। हम दोनों एक हैं, एक ही ये स्वरूप है। और इसको ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ स्वामी हरदास जी की परंपरा में एक रसिक हुए, उन्होंने इसका एक उदाहरण दिया। जैसे कहते हैं कि एक प्राण दो देह का स्वरूप है ये, तो उन्होंने इसका एक बड़ा अच्छा सुंदर उदाहरण अपनी वाणी में दिया कि जैसे चना होता है ना, तो चना जो है वो एक छिलके के आवरण में बंधा हुआ रहता है। तो आप उस छिलके को हटाइए तो छिलका जब हटता है तो वो अंदर फिर जो चना है वो दो दल में बदल जाता है, उसका स्वरूप बदल जाता है, उसका रूप बदल जाता है। फिर आप किसी से जाके कहो, किसी से दो उसको, लो जी चना खाओ, तो सामने वाला व्यक्ति यही कहे, बोले ये चना कहाँ, ये तो दाल है। तो जिस प्रकार चने को जब छिलके को उतारते हैं तो वो दो दल में बदल जाता है, और फिर अगर उसको आवरण में डाल दें तो फिर वो चना बन जाता है। इसी प्रकार अपने प्रेम के रसास्वादन के लिए ये दोनों को दोनों स्वरूप एक से दो होते हैं, और अपने प्रेम के रसास्वादन के लिए ये सब लीला का स्वरूप जो है ये बढ़ाते हैं, ये इनका स्वरूप है।
1: पितृपक्ष में सांझी का भी आयोजन किया जाता है, उसके संदर्भ में
2: मंदिर के प्रमुख उत्सव के विषय में जानकारी दे रहे हैं सेवायत श्री मनोज गोस्वामी।
0: हमारे यहाँ आचार्य स्वरूपों ने जो है उत्सवों को भी वर्ष भर के उत्सव भी निर्धारित किए हैं। उत्सव की श्रृंखला जो है बसंत पंचमी से चालू होती है। बसंत का बसंत उत्सव मनता है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ पर जो है आचार्य चरणों के जो जन्मोत्सव आते हैं उनका जन्मोत्सव मनता है। हमारे यहाँ जो है फूल बंगला उत्सव मनता है, जो लगभग सवा दो महीने तक चलता है उत्सव फूल बंगले का। फूल बंगले के बाद में फिर झूला उत्सव प्रारंभ हो जाता है। झूला उत्सव के बाद में जन्माष्टमी उत्सव होता है, फिर राधाष्टमी उत्सव हमारे यहाँ मनता है अपने। उसके बाद में जो है दीपावली उत्सव मनता है, अन्नकूट उत्सव मनता है, और फिर उसके बाद में हमारे यहाँ खिचड़ी उत्सव मनता है जो पूस में मनाया जाता है। ये पूरे उत्सवों की श्रृंखला जो आचार लोगों ने डाली, आज भी हमारे संप्रदाय में वो कई वही स्वरूप वर्तमान में चलता चला आ रहा है। ये संप्रदाय की स्वरूप है अपने उत्सव में। जो उत्सव जितने भी हमारे यहाँ उत्सव होते

0: हो, चाहे वो बसंत उत्सव हो, चाहे वो झूला उत्सव हो, चाहे वो राधाष्टमी का उत्सव हो, हर चाहे वो शरद उत्सव हो, हर उत्सव का अमनिया अलग स्वरूप से बनता है। बसंत उत्सव होते हैं उसमें सारे जो व्यंजन ठाकुर जी को भोग लगते हैं वो बसंती रंग के ही भोग लगते हैं। जैसे रबड़ी भी होगी उसका भी रंग बसंती होगा, अपने बर्फी भी बनेगी उसका भी रंग बसंती होगा, जो मोहन भोग बनेगा वो भी बसंत, सब क्योंकि बसंत बन रही है। वृंदावन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पे नित्य जो है बसंत है और नित्य शरद है, ये दोनों ऋतुआ अगर देखा जाए तो परस्पर में एक दूसरे की विरोधी है। जहाँ बसंत होगा वह शरद नहीं होगी और जहाँ शरद होगा वह बसंत नहीं होगा। लेकिन जो वृंदावन धाम तो विचित्रता का धाम है ना, यहाँ पे दोनों ही ऋतुएं जो है श्री जी की परस्पर सेवा में विराजमान रहती हैं, ये इन ऋतुओं की विशेषता है। तो जो बसंत में बसंत के हिसाब से भोगराग की जो आचार्यों ने निर्धारित की है वो परंपरा आज भी हमारे यहाँ कायम है। झूला उत्सव आता है तो झूले में ठाकुर जी को जलेबी, पुआ, मालपुआ और रबड़ी का भोग विशेष लगाया जाता है। और उस प्रकार शरद जो उत्सव आता है तो उसमें चंद्रकला और दूध, मेवा युक्त दूध है वो ठाकुर जी को आरोग्य कराया जाता है। और जब होली आती है तो होली में भी ठाकुर जी को जलेबी, पुआ और जो है मालपुआ, रबड़ी, इसका भोग लगता है। ये उत्सवों में विशेष विशेष हर उत्सव का अमनिया निर्धारित है कि इस उत्सव में ये अमनिया बनेगा, ये परंपरा के अनुसार आज भी अमनिया चलता है।
1: पितृ पक्ष में या मंदिर में सांझी महोत्सव को भी आयोजन हुए है। संध्या होते ही ठाकुर जी के जगमोहन में विशेष रूप से भक्तन को सांझी के दर्शनों कराए जाए हैं।
0: पितृ पक्ष में हमारे यहाँ जो सांझी उत्सव बनता है तो सखियां जो हैं प्रिया जी को नवीन नवीन लीलाओं का दर्शन कराती हैं, वन में लेके जाती हैं प्रिया जी को, नवीन नवीन लीलाओं का, नवीन नवीन कौतुकों को। जब प्रिया इनके संग जाती हैं वन में, जब उसका वो दर्शन करती हैं तो उसके दर्शन के माध्यम से प्रिया को प्रसन्नता होती है। ये सांझी उत्सव जो है ये एक तरीके से प्रिया को प्रसन्न करने के लिए सखियां जो है ना इस उत्सव का आयोजन करती हैं, जिसको सांझी उत्सव कहा जाता है। पितृपक्ष में इसलिए सांझी उत्सव है कि हमारे यहाँ जो लोक की दृष्टि से जो एक पितृपक्ष चलता है, हमारे यहाँ जो आचार्य जो हुए उन्होंने अपनी उपासना में जो अपनी उपासना का जो आधार बनाया वो प्रेम को बनाया, ना कि ज्ञान, ना कि कर्म, ना कि भक्ति, इन्होंने जो है अपनी उपासना का आधार प्रेम को बनाया। और प्रेम जो है किसी के बंधन में नहीं रहता है, ये प्रेम तो है सबसे सबके बंधन से दूर रहता है, ये किसी के बंधन में नहीं रहता है।

तो अभी आप सुन रहे श्री राधा वल्लभ मंदिर की जानकारी। और यह ब्रज की माटी तो ऐसी है कि मन करे यहीं में लोट मारो।

ब्रज वृंदावनवास, ब्रज में रहने वाले हमारे सभी श्रद्धालु जो है ना, वृंदावन से जाने की बात ही नहीं करते हैं और इसी ध्यान इसी भाव के साथ कार्यक्रम को अब हमें यहीं विराम देते हैं। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुन सकेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक, और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के बीच मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर छूटा। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं।

0: प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
2: रास लाफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
2: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
2: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 285,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान,

ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका

0: अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया। भारत ने भी अमेरिका के कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं। रिशु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केन्या, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मॉनसून के कमजोर रहने की आशंका है।
3: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है, हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे, क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले, मतलब जहां 25-50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं, ऐसे 76 जिले हैं। और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले, इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
0: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से

0: प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और होर्मुज़ को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे 11 ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं। दैनिक भास्कर ने CUET परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना गहलोत का चित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, 100% वाले 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। नवभारत टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ इस समाचार को शीर्षक दिया है, दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में CUET के बाद भी 100% की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है, खबर को शीर्षक दिया है, दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून, जबकि दैनिक भास्कर का कहना है मानसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली NCR में अभी हफ्ते भर और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। पत्र की राय में मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हों, लेकिन इसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं राजस्थान पत्रिका ने कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को प्रमुखता से प्रकाशित किया है, वैज्ञानिकों की 7 साल की मेहनत रंग लाई, सुपरफूड ग्रेन ओट्स में भारत बन रहा आत्मनिर्भर।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस: BRICS nations call for stronger cooperation to address widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats. Prime Minister Narendra Modi gets condolence call from Qatar's Emir after 12 Indians killed in Ras Laffan gas plant blast. India strongly criticizes Pakistan's remarks over situation in POK, says Islamabad deflects attention away from its human rights abuses. India and United States open high-level trade talks in New Delhi to recalibrate proposed bilateral trade agreement. And in FIFA World Cup, Portugal thrash Uzbekistan 5-0, match between England and Ghana draw goalless. And now the news in detail. National security advisers and senior security officials from the BRICS nations called for stronger cooperation to address a widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats, during a high-level meeting hosted by India in the national capital. The 16th BRICS National Security Advisers meeting, held under India's chairship of the grouping led by India's NSA Ajit Doval, brought together top security representatives from member countries to discuss both traditional and emerging threats confronting the international community. According to India's Ministry of External Affairs, the discussions focused on evolving security risks that increasingly transcend national borders. Delegates exchanged views on issues ranging from energy and food security to climate-related instability and the misuse of emerging technologies by terrorist organizations. Speaking at the meeting, National Security Advisor Ajit Doval stressed the need for collective deliberation and cooperation among BRICS nations to address the emerging security risks and evolving forms of terrorism in an increasingly digitized world.
3: We need to be cognizant of the new security threats and challenges. Non-traditional threats have transcended national borders and have developed defeat systems against conventional responses. Innovative disruptive technologies, more camouflaged variants of terrorism, cyber

मदन मोहन के संगीत बद इस गीत को हमने लिया था फिल्म आपकी परछाइयां से। इस गीत को अपना सुर दिया मोहम्मद रफ़ी ने।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: मजर सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीत बद्ध किया आरडी बर्मन ने। आशा भोसले, किशोर कुमार और साथियों के गाए इस गीत को अभी आप सुन रहे थे फिल्म कालिया में।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: मुकेश की आवाज़ में ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म हिमालय की गोद से। इस गीत को संगीतबद्ध किया था कल्याण जी आनंद जी ने। गीत के बोल आनंद बख्शी के थे।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: अभी आपने सुना साहिर का लिखा है ये गीत, धुन तैयार की थी खय्याम ने, इस गीत को अपने सुरों में पिरोया लता मंगेशकर किशोर कुमार ने।
1: मिस सीमा
2: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
2: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर अभी आप आनंद ले रहे हैं चित्रपट संगीत के कार्यक्रम गीतांजलि का।

शंकर जयकिशन के संगीतबद्ध इस गीत को लिखा था शैलेंद्र ने। आशिक फिल्म से लिया ये गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश और साथियों की आवाज में।

0: आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया एसटी बर्मन ने। आराधना फिल्म से लिया ये गीत। अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले के युगल सुरों में। इस गीत के साथ ही गीतांजलि कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स इन डिप्लोमेसी हर साल आज यानी कि 24 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक निर्णय लेने से शांति निर्माण और कूटनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं की उल्लेखनीय भूमिका और योगदान को सम्मानित करना है। लेकिन आज भी कहीं कहीं कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न होता है। तो आज अपने कार्यक्रम हिंदी वार्ता क्रम में मुद्दे की बात में यही विषय हम लेकर आए हैं। महिलाओं को कैसे हम उत्पीड़न से बचा सकते हैं, उनके बचाव के कानून क्या क्या हो सकते हैं, तो आइए जानते हैं जानकारी खड़क सिंह छोंकर से।
1: प्राचीन काल की मध्यवर्गीय व उससे नीचे की सामाजिक संरचना का अध्ययन करें तो आभास होता है कि अधिकांशतः पुरुष वर्ग घर परिवार चलाने के लिए काम करते थे और महिलाएं अपनी घरेलू व्यवस्थाएं देखती चली आ रही थीं। लेकिन जैसे जैसे देश की प्रगति की ओर बढ़ा और विकास की ओर अग्रसर हुआ, शिक्षा का विस्तार हुआ, संसाधन बढ़ते गए, सरकारों ने प्रयास किए, जागरूकता से लोगों की सोच में बदलाव आया, तो समाज में ये धारणा भी बनी कि बेटा या बेटी में अथवा महिला या पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। शिक्षा सभी के लिए समान रूप से दी जाए, सभी विभागों में, सभी स्थानों पर, चाहे सार्वजनिक यानी कि सरकारी हो या निजी, सभी को रोजगार के समान अवसर प्रदान किए जाएं। तो इन प्रयासों का परिणाम भी देखने को सामने आए हैं। हमारी बेटियां शिक्षा के स्तर पर शिखर तक पहुंची नजर आई हैं और प्रतियोगिता के युग में अच्छे स्तर पर अच्छा स्थान प्राप्त करने लगी हैं। ये संख्या दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है और आज इस लेवल तक पहुंच गए हैं कि छोटी छोटी नौकरियों से लेकर सेना और वायुसेना में भी अच्छे स्तर के कमीशन में भी अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। भारतवर्ष की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति देश ही नहीं विश्व भर के लिए प्रेरणादायक है। हमारे देश में मातृशक्ति को बहुत ऊंचा और सम्मान का स्थान दिया गया है। जैसा कहा जाता है कि यत्र नार्यस्व पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देश की नदियों के नाम, देवियों के नाम, देश की वीरांगनाएं इसका साक्षात उदाहरण है। इसके साथ ही साथ कोई भी सार्वजनिक विभाग ऐसा नहीं है जहां महिलाएं कामकाज नहीं कर रही हों, और कोई भी प्राइवेट सेक्टर यानी एक निजी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां

महिलाएं काम नहीं कर रही हों। महिला पुरुष साथ साथ काम कर रहे हैं तथा देश की प्रगति और विकास में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो संस्कृति के साथ साथ चाहे या अनचाहे विकृति भी जन्म ले लेती है और उस विकृति के दुष्परिणाम सामने आने लगते हैं जिनका निवारण करना भी आवश्यक हो जाता है। इसलिए कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 लाया गया है, जिसका उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से बचाव के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाना है। इस अधिनियम का प्रभाव सभी सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में, यानी कि सभी जगह कार्यरत सभी महिलाओं पर लागू होता है, चाहे उनकी आयु और रोजगार की स्थिति कैसी भी हो। 10 या अधिक कर्मचारियों वाले स्थलों पर आंतरिक समितियां गठित करने का प्रावधान रखा गया है, जिसको इस अधिनियम 2013 की धारा 4 में परिभाषित किया गया है तथा इसी तरह धारा 5 में स्थानीय समिति गठित करने का प्रावधान है। सरकार द्वारा जारी सो बॉक्स पोर्टल भी महिलाओं को ऑनलाइन शिकायत करने के लिए एकल खिड़की मंच प्रदान करता है। यदि हम किसी समुदाय या देश का विकास चाहते हैं तो महिला सशक्तिकरण अति महत्वपूर्ण है। भारत विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से विकास कर रहा है। बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए बहुत सारी पहल की जा रही है जिसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं। उच्च शिक्षित होने के साथ साथ खेल, थिएटर, नाटक, मॉडल आदि अन्य क्षेत्रों में महिलाएं भाग ले रही हैं तथा संगठित और असंगठित क्षेत्रों में काम करती चली आ रही हैं। बिना किसी भेदभाव के महिलाओं को समान अवसर मिले और उन्हें कार्यस्थल पर एक सुरक्षित वातावरण का अनुभव हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जाते रहे हैं। इसी कड़ी में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 लाया गया। इस अधिनियम के आने से एक प्रश्न उठता है कि इस अधिनियम को बनाने की आवश्यकता क्यों हुई तथा इस अधिनियम के आने से पहले इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए क्या व्यवस्था थी। तो जानकारी में आता है कि 1990 के दशक में राजस्थान में एक सामाजिक कार्यकर्ता महिला के साथ कुछ पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से घृणित कार्य को अंजाम दिया गया था, तो उसमें कानूनी कार्रवाई के दौरान अनेक तरह की बाधाओं, धमकियों और अनावश्यक देरी का सामना करना पड़ा था। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य दिशा निर्देश सन 1997 में लाया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत कामकाजी महिलाओं के मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें उच्चतम न्यायालय में कहा गया कि इस घटना ने उन खतरों को उजागर किया है जिनका कामकाजी महिलाओं को सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सुरक्षा उपायों की तत्काल आवश्यकता है। साथ ही लैंगिक उत्पीड़न के परिणाम स्वरूप होने वाली अनैतिकता और सामाजिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करना है। उस समय माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ऐसा कोई घरेलू कानून नहीं है जो कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न को कवर करता हो, लेकिन समानता की गारंटी के लिए संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 में मानवीय गरिमा के साथ काम करने का अधिकार और लैंगिक उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और मापदंड तैयार करना महत्वपूर्ण है। इसलिए अनुच्छेद 253 के आधार पर, जो कि संसद को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को लागू करने के लिए कानून बनाने में सक्षम बनाता है, महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर सम्मेलन हुआ था, जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनी समझौता है जो राष्ट्रों से सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त करने का आह्वान करता है तथा महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ भेदभाव और उनके समान अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए विशाखा दिशा निर्देशों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। इन दिशा निर्देशों से पहले
अपराधियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 354

और 509 के माध्यम से दंडित किया जाता रहा है, जिनके स्थान पर अब नई भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 74 से लेकर 79 तक रखी गई है। विशेष रूप से भारतीय दंड संहिता की इन धाराओं में लैंगिक उत्पीड़न को निर्दिष्ट नहीं किया गया है, इसीलिए कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का मामला सामना करने वाली महिलाओं को कानूनी

महिलाओं को कानूनी सुरक्षा और निवारण तंत्र प्रदान करने के लिए लैंगिक उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम बनाया गया है। इस अधिनियम से पहले कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न को विशाखा दिशा निर्देशों के माध्यम से संबोधित किया जाता है। इस तरह के अपराधों से निपटने के लिए अब हमारे पास कानून है, विशेषकर इसके लिए जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। व्यक्ति विशेष के साथ साथ संगठनों को भी इसके बारे में जागरूक होना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा दिशा निर्देशों के माध्यम से परिभाषित किया है कि कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न किसे माना जा सकता है। इसके अनुसार शारीरिक संपर्क और प्रगति, लैंगिक अनुकूलता की मांग या अनुरोध करना, लैंगिक रंगीनी टिप्पणियां करना, अश्लील साहित्य दिखाना या लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक अथवा मौखिक आचरण करना है। इससे स्पष्ट होता है कि जब कोई व्यक्ति बिना अनुमति के किसी महिला को छूता है, गले लगाता है, चुटकी लेता है, उसके शरीर पर दबाव बनाता है या ऐसा कोई भी शारीरिक संपर्क जो अनचाहा है उसको अवांछनीय शारीरिक संपर्क और प्रगति माना जा सकता है। इसी तरह जब किसी आधिकारिक पद पर कोई व्यक्ति कुछ लाभों के लिए जैसे कि पदोन्नति, वेतन वृद्धि, नौकरी की गारंटी या अन्य अन्य फायदों के बदले लैंगिक संबंधों की मांग या अनुरोध करता है, या कोई व्यक्ति आपत्तिजनक और उत्तेजक टिप्पणियां करता है या चुटकुले या अश्लील व्यंग करता है, लैंगिक प्रकृति की बयानबाजी करता है या अन्य चिढ़ाने वाली रंगीनी टिप्पणियां करता है, तो वो भी इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आते हैं। आगे ये भी है कि अश्लील चित्र, अश्लील फिल्म या वीडियो, पोस्टर, अश्लील सामग्री का प्रदर्शन करना या व्हाट्सएप, SMS, ईमेल के माध्यम से संदेश देना है, तो वो भी इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आते हैं। जहां तक कार्यस्थल की बात है तो ऐसा कोई भी विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट जो समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी सरकारी कंपनी या निगम या सहकारी सोसाइटी द्वारा स्थापित हो और उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन, पूर्णतः या सारतः उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पोषित की जाती है, ये सभी कार्यस्थल माने जाएंगे। इसी तरह कोई प्राइवेट सेक्टर, संगठन या किसी प्राइवेट उद्यम, उपक्रम, संस्था, सोसाइटी, न्यास, गैर सरकारी, ये संगठन, यूनिट या सेवा प्रदाता जो वाणिज्यिक, वृत्तिक, व्यावसायिक, शैक्षिक, मनोरंजक, औद्योगिक, स्वास्थ्य सेवाएं या वित्तीय क्रियाकलाप करता है, जिनके अंतर्गत उत्पादन प्रदाता, विक्रय, वितरण या सेवा भी शामिल है। इसी तरह अस्पताल या परिचर्चा गृह तथा प्रशिक्षण, खेलकूद या उनसे संबंधित अन्य क्रियाकलापों के लिए प्रयुक्त कोई खेलकूद संस्थान, स्टेडियम, खेलकूद का क्षेत्र, क्रीड़ा का स्थान, कोई निवास या अन्य स्थान भी हो सकते हैं। किसी कार्यस्थल के संबंध में असंगठित क्षेत्र से ऐसा कोई उद्यम समझा जाता है जो नियोजित कर्मकारों के स्वामित्व में हो और किसी प्रकार के माल के उत्पादन या विक्रय अथवा सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है, और जहां उद्यमी कर्मकारों को नियोजित किया जाता है वहां ऐसे कर्मकारों की संख्या 10 से कम न हो। इस तरह के मामलों में कोई पीड़ित महिला कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का बाद घटना की तारीख से 3 महीने के अंदर लिखित में आंतरिक समिति को अथवा स्थानीय समिति को प्रस्तुत कर सकेगी। विशेष व समुचित परिस्थितियों में समिति 3 मास की अवधि को विस्तारित भी कर सकती हैं। यदि यह समाधान हो जाता है कि परिस्थितियां ऐसी थीं जिसके कारण महिला नियत अवधि के अंदर बात प्रस्तुत न कर सकी हो, इसका विवरण महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 की धारा 9 में परिभाषित किया गया है। इस तरह से इन अपराधों से बचाव के संबंध में प्रचार प्रसार व अन्य माध्यमों से जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता

0: आवश्यकता रहती है।
1: हिंदी वार्ता में मुद्दे की बात में अभी आप सुन रहे थे, एक वार्ता विषय था कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न से बचाव के कानून। जानकारी दे रहे थे खड़क सिंह छौंकर।
2: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
3: आराम से मैडम।
2: क्या?
3: आराम से पहुंचेंगे मैडम, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
4: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
5: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
1: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं।

आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में होगी जिले की हलचल।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए श्रावस्ती और सीतापुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं श्रावस्ती जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अम्मार रिजवी का।
1: श्रावस्ती जिला 12वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर पूरी तरह योगामय नजर आया। करो योग रहो निरोग के संकल्प के साथ जिले भर में योग की बयार बही। सुबह से ही विभिन्न स्थानों पर उत्साह का माहौल देखा गया। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का मुख्य आयोजन जिला मुख्यालय पर हुआ, जहां जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग और जिला पंचायत अध्यक्ष ददन मिश्रा की अगुवाई में भारी संख्या में लोगों ने एक साथ सामूहिक योग किया। सुबह की पहली किरण के साथ ही पंडाल में मौजूद हर शख्स योग के रंग में रंगा नजर आया। योग का ये उत्सव सिर्फ जिला मुख्यालय तक ही सीमित नहीं रहा। इकोना के स्थानीय विधायक, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारियों, भारी संख्या में आम जनता ने एक साथ योगासन किया। इस मौके पर सभी ने एक सुर में समाज को स्वस्थ और जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। जिले के तमाम सरकारी कार्यालयों, परिषद विद्यालयों, महाविद्यालयों, सामाजिक संगठनों द्वारा भी अलग अलग स्थानों पर योग शिविर का भव्य आयोजन किया गया। इस शिविरों में योग प्रशिक्षणों की मौजूदगी में विभिन्न योगासन, प्राणायाम का अभ्यास कराया गया। साथ ही योग से होने वाले शारीरिक और मानसिक लाभों के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी गई। विभिन्न कार्यक्रमों में वक्ताओं ने योग को आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बेहद जरूरी बताया। मुहर्रम के मौके पर श्रावस्ती में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शांति और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वाले शरारती तत्वों को प्रशासन का साफ और कड़ा संदेश है। पुलिस लगातार संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च, रूट मार्च कर रही है। जिले के अति संवेदनशील क्षेत्र नासिरगंज, इकोना, पिरवितनी में कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, जहां पुलिस खुद ड्रोन कैमरों की मदद से चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है। वहीं पीस कमेटी की बैठक के दौरान SDM संजय राय ने नासिरगंज के स्थानीय लोगों से बेहद भावुक और तार्किक अपील की। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा, इमाम हुसैन की शहादत पर गम मनाया जाता है, किसी की शहादत पर DJ बजाना बिल्कुल जायज नहीं है, इसलिए सरकार की गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन करें। इसके साथ ही प्रशासन ने साफ कर दिया कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की भड़काऊ या विवादित पोस्ट करने वालों के खिलाफ सीधे जेल की कार्रवाई होगी।
2: प्रशासन द्वारा जो भी निर्देश दिए गए मुहर्रम त्यौहार मनाने के लिए, इसको सभी लोगों को अवगत कराएंगे तथा सबको विश्वास दिलाएंगे कि पुलिस और प्रशासन त्यौहार को सकुशल मनाने के लिए प्रतिबद्ध है। और प्रशासन के द्वारा अभी रूट मार्च भी किया गया है, ड्रोन से निगरानी की गई है, शांति व्यवस्था कायम है तथा त्यौहार को बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाएगा।
1: केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विकास, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के महापर्व का

0: आगाज हो चुका। जिले के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान भारी लौ लश्कर और गाड़ियों के लंबे काफिले के साथ श्रावस्ती पहुंचे। भिंगा में जनप्रतिनिधियों आला अधिकारियों ने मंत्री का जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने जिले को एक बड़ी सौगात देते हुए सामायिक जन कल्याण एवं जन जागरूक अभियान का भावी शुभारंभ किया। श्रावस्ती में शुरू हुए एक बड़े बदलाव को लेकर प्रभारी मंत्री ने तारीफ की। सूबे के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने इसको लेकर बड़ी खुशी जताई। सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के मौके पर विकास, स्वच्छता और पर्यावरण को एक नई दिशा देने के लिए मंत्री जी खुद जमीन पर उतरे। मौका विश्व पर्यावरण दिवस का था, लिहाजा प्रभारी मंत्री ने सीधे एक्शन का रुख लिया। उन्होंने ऐतिहासिक रानी तालाब पहुंचकर खुद हाथों में झाड़ू थामी और श्रमदान किया। इसके साथ ही देशव्यापी मुहिम एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत उन्होंने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।
1: मुझे महसूस हुआ कि गांव का जो गरीब है, जो पैसे के अभाव में जिसका परिवार तबाह बर्बाद हो जाता है, आयुष्मान कार्ड देने की योजना में 60 करोड़ लोगों को उन्होंने हेल्थ कार्ड दिया। आज हर गरीब आदमी
0: श्रावस्ती में प्रधानमंत्री की दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर जिलाधिकारी अन्नापूर्णा गर्ग के निर्देशानुसार जनपद के कलेक्ट्रेट स्थित तथागत सभागार में प्राकृतिक खेती कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दूसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्ष जिला पंचायत ददन मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने गोष्ठी में लगे स्टालों का निरीक्षण किया तथा किसानों को प्राकृतिक खेती करने की नसीहत दी। इस अवसर पर अध्यक्ष जिला पंचायत ने कहा कि आजकल किसान रासायनिक खेती के दौर से अंधाधुंध रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक का प्रयोग करता है, जिसका प्रभाव उन पर और उनकी आने वाली पीढ़ी पर भी पड़ता है। इसलिए कृषकों से अपील है कि वो रासायनिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती को अपनाएं, ताकि उनका भी स्वास्थ्य अच्छा रहे।
2: श्रावस्ती जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सीतापुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है दीपक श्रीवास्तव का।
3: 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2026 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ओपन हॉल पुलिस लाइन सीतापुर में हर्षोल्लास एवं सफलतापूर्वक आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, सदस्य विधान परिषद पवन सिंह चौहान, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद सीतापुर नेहा अवस्थी, जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर द्वारा सम्मिलित रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने योग की महत्ता के बारे में बताते हुए सभी को प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा योग व्यायाम करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, इससे हम सभी का शरीर स्वस्थ रहता है और मन को शांति मिलती है। साथ ही अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी योग के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को उत्साहपूर्वक मनाने का आह्वान किया। आयुष विभाग द्वारा जनपद के सभी ब्लॉकों एवं तहसीलों में भी योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मानसून का सीजन शुरू होने के साथ ही सीतापुर में जिला प्रशासन ने लोगों को बाढ़ आपदा से बचाव के हेतु व्यापक प्रबंध शुरू कर दिए हैं। ज्ञातव्य है कि सीतापुर जनपद की 3 तहसीलें क्रमशः बिस्वा, लहरपुर और महमूदाबाद बाढ़ से प्रतिवर्ष प्रभावित होती हैं। यहां प्रतिवर्ष बाढ़ के पानी से एक बड़ी आबादी प्रभावित होती है। नागरिकों को बाढ़ से सुरक्षित रखने के लिए प्रशासन ने आपदा प्रबंधन समिति के साथ संयुक्त रूप से एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसके तहत मुख्य कार्यक्रम बिस्वा तहसील अंतर्गत चहलारी घाट पर किया गया, जिसमें बाढ़ के पानी में डूब रहे लोगों को आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा नाव और स्टीमर की मदद से बचाया गया। सीतापुर में टाउन हॉल स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय को सोमवार सुबह 5 बजे ध्वस्त कर दिया गया। नजूल की भूमि पर बने कार्यालय को हटाने के लिए प्रशासन द्वारा पूर्व में नोटिस दी गई थी, जिसके बाद कार्यवाही को अंजाम दिया गया।
4: अवैध कब्जा था इनका और ये हमारी सरकारी प्रयोजन के लिए जमीन सुरक्षित कर ली गई थी राजकीय महाविद्यालय के लिए। जहाँ भी हमारी नजूल की भूमि है, नोटिस दे जहाँ जहाँ दिया गया उसको हम सब खाली करवाएंगे।
3: पौराणिक तीर्थ स्थल नैमिषारण्य में सोमवती अमावस्या पर भक्ति और आस्था का सैलाब उमड़ा। अधिक मास में पड़ने वाली सोमवती अमावस्या का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इसी महत्व के चलते नैमिष क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। लोगों ने पूरे भक्तिभाव के साथ आदि गंगा गोमती में स्नान के उपरांत पूजन अर्चन और दान दिया। केंद्र सरकार के सेवा, संस्कार, सुशासन एवं सम्मान के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विकास भवन सभागार में आयोजित भव्य चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर, गुरु एवं जिला अध्यक्ष भाजपा राजेश शुक्ल ने फीता काटकर किया। प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की उपलब्धियों, जन कल्याणकारी योजनाओं, उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी वृहद इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के विकास, सुदृढ़ आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था तथा विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के विजन को आकर्षक चित्रों एवं प्रदर्शन सामग्रियों के

0: माध्यम से प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं, नीतियों एवं उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कारागारी राज्य मंत्री सुरेश राही ने कहा कि वर्तमान सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन है। पूर्व में विभाग तो थे किंतु योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक अपेक्षित रूप से नहीं पहुँच पाता था। आज केंद्र एवं राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के कारण गाँव गाँव तक विकास कार्य पहुंच रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पेयजल, आवास, शौचालय, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार तेजी से हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने अधिकारियों को पारदर्शी एवं उत्तरदायी प्रशासन के साथ कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान की है, जिससे योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों तक पहुंच रहा है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने विकास के अनेक नए आयाम स्थापित किए हैं। गांव को पैतृक सड़कों से जोड़ा गया है। किसान के हित में अनेक योजनाएं लागू की गई हैं तथा उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य गांव, गरीब, किसान एवं युवा के सर्वांगीण विकास के माध्यम से विकसित भारत एवं विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष भाजपा राजेश शुक्ला ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के दौरान मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीक्षा जोशी, अन्य जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, लाभार्थी तथा बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। सीतापुर पुलिस द्वारा एक अंतर जनपदीय गिरोह को गिरफ्तार कर कई बड़ी घटनाओं को पर्दाफाश किए जाने का दावा किया गया है। इस कार्रवाई में पुलिस को 50 लाख से अधिक की नकदी समेत जेवरात और लग्जरी वाहन के साथ चोरी के एटीएम कार्ड सहित असलाह बरामद किए हैं।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

0: एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुति कार्यक्रम आबो हवा। आज का विषय लेकर आए हैं जल और वायु प्रदूषण अधिनियम। आलेख व वाचन डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा का है।
1: दर्शन के अनुसार जल व वायु हमारे पंचभूतों पृथ्वी जल आग आकाश एवं वायु के अभिन्न एवं अति महत्वपूर्ण हिस्से हैं। वास्तव में जल व वायु के बिना जीवन का अस्तित्व असंभव है। जल की अधिकता एवं सहजता से प्राप्ति के कारण हम सोचते हैं कि जल कभी भी समाप्त नहीं हो सकता और हम उसके प्रति और उसके खर्च के प्रति लापरवाह होते चले गए, लेकिन हमारी ये धारणा नितांत गलत है। पीने योग्य पानी के स्रोत एवं उसकी मात्रा पूर्व निर्धारित है। विभिन्न सभ्यताओं ने जल के प्रति बहुत ही आदर एवं सम्मान का दृष्टिकोण अपनाया है। हिंदू धर्म में हर पूजा पाठ एवं पवित्र कार्य में जल से ही आचमन किया जाता है। मुस्लिम समाज काबे के जल को अति पवित्र एवं रोगनाशक मानता है। ईसाई धर्म में जल से ही ईसाई बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। जल विभिन्न स्रोतों तथा भूमिगत झील नदी वायुमंडलीय जल आदि से मानव समुदाय के लिए सुलभ हो पाता है। औद्योगिकरण नगरीकरण एवं मानव जनसंख्या के कारण जल की मांग में भारी वृद्धि होती गई। जल के प्रति मानव के लापरवाह एवं संवेदनशील व्यवहार के कारण जल की गुणवत्ता में भारी गिरावट आई। हालांकि जल में स्वयं शुद्धिकरण की क्षमता होती है, परंतु जब मानव जनित स्रोतों से उत्पन्न प्रदूषणों का जल में आवश्यकता से अधिक जमा हो जाता है तो जल की सहन शक्ति एवं स्वयं शुद्धिकरण की क्षमता से अधिक हो जाता है एवं जल प्रदूषित हो जाता है, जो एक बहुत खतरनाक स्थिति हमारे सामने है। जल के प्रदूषण का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास जारी है। भारत में जल प्रदूषण के निवारण हेतु जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 पारित किया गया एवं समय समय पर इसमें संशोधन भी किए गए। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 का प्रमुख उद्देश्य जल प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण करना है। इसके अलावा जल की स्वास्थ्य प्रदता बनाए रखना एवं पूर्वावस्था में लाना भी इस अधिनियम का मुख्य लक्ष्य है। इन प्रयोजनों को क्रियान्वित करने की दृष्टि से जल प्रदूषण निवारण बोर्डों की स्थापना की गई है एवं इन निवारक संस्थाओं को इस हेतु समुचित शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। इस अधिनियम में औद्योगिक बहिस्त्रावों के जल में विसर्जन पर कड़ी निगरानी, जल स्रोतों में हो रहे प्रदूषण का सर्वेक्षण, प्रदूषित

0: जल के उपचार हेतु विधियों का विकास, पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में अनुसंधान एवं प्रदूषण के बारे में जन चेतना के विकास से संबंधित विस्तृत प्रावधान किए गए। अब हम बात करें वायु प्रदूषण की एवं इसके नियंत्रण की। वास्तव में वायुमंडल एक गैसीय आवरण है जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है। यह विभिन्न गैसों का एक यांत्रिक मिश्रण है। इसमें नाइट्रोजन 78.09%, ऑक्सीजन 20.95%, ऑर्गन 0.93% तथा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। इनके अलावा भी बहुत सी गैसें वायुमंडल में सम्मिलित हैं। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य खाना व जल के बिना कुछ समय तक जी सकता है, लेकिन वायु के बिना शायद कुछ मिनट भी उसका जीवन संभव नहीं है। प्राकृतिक स्रोतों से भी वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है, जैसे ज्वालामुखी, मानव व पौधों का उत्सर्जन आदि, लेकिन प्रकृति इस प्रदूषण को आत्मसात कर लेती है। लेकिन औद्योगिक वाहन व अन्य लापरवाही एवं बिना सोचे समझे वाले विकास के कारण विकिरण आदि के प्रदूषण को प्रकृति आत्मसात नहीं कर पाती है एवं उसके दुष्परिणाम मानव स्वयं के जीवन के लिए खतरनाक साबित होते हैं। प्रदूषण के खतरों से जनमानस को सचेत करना भी इस अधिनियम का एक मुख्य उद्देश्य है। यद्यपि जल एवं वायु से संबंधित इन अधिनियमों ने अपना असर दिखाया, लेकिन फिर भी इनमें कुछ कमियों का आभास हमारी संसद को हुआ। उनके निराकरण हेतु भारतीय संसद ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। पर्यावरण की रक्षा हेतु सरकारी प्रयासों के साथ साथ हमारे उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय ने भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है एवं बहुत से क्रांतिकारी निर्णयों के सहायता से पर्यावरण सुधार आंदोलन को बल प्रदान किया है।
1: कार्यक्रम आबोहवा में आज का विषय लेकर आए थे जल और वायु प्रदूषण अधिनियम। आलेख व वाचन डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा का था। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है ब्रज की समसामयिक गतिविधियों पर आधारित सजीव कार्यक्रम ब्रज दर्पण। आज की प्रस्तुति सुरभि शर्मा की है। कार्यक्रम के संयोजक हैं OP सिंह।

सुप्रभात, करते हैं एक नई शुरुआत नए उमंग और नए उत्साह के साथ। हर दिन एक नई उमंग और नई उत्साह अपने साथ लेकर आता है, तो हम भी अपने आज के दिन की शुरुआत एक नई उमंग और एक नई उत्साह के साथ करते हैं। श्रोताओं, आज है 24 जून, यानी कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। प्रतिवर्ष 24 जून को ये दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत कब हुई? इस दिन को मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जून 2022 में पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से की गई। अब मन में प्रश्न आता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था योगदान का सम्मान, वैश्विक कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देना। महिलाओं ने हर जगह अपना परचम बखूबी लहराया है, चाहे वो राष्ट्रीय मंच हो या अंतर्राष्ट्रीय मंच हो। लैंगिक समानता, यानी निर्णय लेने और कूटनीतिक पदों पर महिलाओं को समान भागीदारी सुनिश्चित करना। ऐसा कहा जाता है, पुरुष समाज ये मानता है कि पुरुषों को निर्णय लेने की क्षमता ज्यादा अच्छे से आती है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। महिलाएं भी उतनी समझदारी से निर्णय ले सकती हैं और कूटनीतिक विषयों पर अपनी राय रख सकती हैं। बाधाओं को समाप्त करना, जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो उनके सामने कई तरह की बाधाएं आती हैं, तो उन बाधाओं को समाप्त करना, उनके लिए सुगम सहज पथ बनाना, इस दिन को मनाने का उद्देश्य ये भी था। राजनयिक और राजनीतिक नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं के सामने आने वाली संरचनात्मक कुरीतियों को उजागर करना, चुनौतियों को भी उजागर करना और उन्हें दूर करना, ये प्रयास था इस दिन को मनाने का। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति प्रक्रियाओं में मध्यस्था और वार्ताकार के रूप में महिलाओं की भागीदारी ऐतिहासिक रूप से बहुत कम रही है, या कहा जाए उनको इतने मौके नहीं दिए गए। निर्णय लेने के शीर्ष स्तरों पर समावेशी नेतृत्व लेने से शांति, लोकतंत्र और सतत विकास को बढ़ावा मिलता है, और अगर महिलाओं को ये अधिकार दिए जाएं तो वो शांति बड़े आराम से कायम कर सकती हैं। कूटनीति में महिलाएं न केवल अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भागीदार हैं, बल्कि वे शांति की सूत्रधार, समानता की पैरोकार और वैश्विक सहयोग के भविष्य को आकार देने वाली नेता भी हैं। उनकी आवाज, दृष्टिकोण और नेतृत्व हमारे विश्व के सामने मौजूद जटिल

0: चुनौतियों का सामना करने और अधिक समावेशी, न्यायपूर्ण और लचीले समाजों के निर्माण के लिए आवश्यक है। जैसे जैसे कूटनीति एक परस्पर जुड़ी हुई दुनिया को मांगों को पूरा करने के लिए विकसित हो रही है, निर्णय लेने के हर स्तर पर महिलाओं को पूर्ण समाधान और सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने का न केवल समानता का मामला है, बल्कि ये प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार निर्णय लेने वाले मंचों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी बराबर हो। कूटनीति उन लोगों के लिए आर्थिक प्रतिबिंब बन सकता है जिनकी वह सेवा करती है। स्थायी शांति, सतत विकास और मानवीय गरिमा को आगे बढ़ाने के लिए बेहद सुचारू रूप से वो सभी कार्य कर सकती हैं। राजनयिक मिशन हो, बहुपक्षीय संस्थान हो, अंतर्राष्ट्रीय वार्ता हो, महिलाएं संवाद, आम सहमति निर्माण, संघर्ष समाधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में अमूल्य योगदान देना जारी रखती हैं। उनका नेतृत्व राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और वैश्विक चुनौतियों के बीच सेतु का कार्य करता है, जिससे मानवाधिकार, सुरक्षा और साझा समृद्धि को बढ़ावा देने वाले समाधानों को आगे बढ़ाया जा सकता है। कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इस बात का सशक्त स्मरण दिलाता है कि शांति और प्रगति की खोज विविध आवाजों और अनुभवों को शामिल करने पर निर्भर करती है। यह महिला राजनीतिकों की उपलब्धियों का उत्सव होने के साथ साथ बाधाओं को दूर करने और अवसरों का विस्तार करने और सुनिश्चित करने के प्रयासों को मजबूत करने का आह्वान भी है। महिलाओं की भावी पीढ़ियां अंतरराष्ट्रीय मामलों का नेतृत्व, प्रभाव और दिशा निर्धारित कर सकती हैं। महिलाओं ने हर जगह अपना परचम स्थापित किया है। कोई भी दशा हो, कोई भी दिशा हो, महिलाएं जब घर से बाहर निकलती हैं तो सफलता हासिल करके ही होते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कैसी महिला की कहानी उनकी जुबानी, जिन्होंने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल करी है।
1: महिला चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है और महिला न केवल अपने कुल को बल्कि दो कुलों को रोशन करती है। जब महिलाएं अपना वर्चस्व स्थापित करती हैं तो पुरुष उनकी तरफ गर्व से सिर उठाकर देखते हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है। अब हम सुनवा रहे हैं आपको ऐसी ही महिला से बातचीत जो हमारे ब्रज का गौरव है, या मैं यूं कहना चाहूंगी हमारा ब्रज जिनकी वजह से जाना जाता है। अगर लोक गायिका में पूछा जाए कि आपके ब्रज की पहचान क्या है तो मैं कहना चाहूंगी शालिनी शर्मा जी। महिलाओं की स्थिति आप कहाँ पाती हैं, महिलाओं के बारे में आपके क्या विचार हैं?
2: जी, सभी को मेरी राधे राधे। महिलाओं की स्थिति आज बहुत मजबूत है। आज सभी क्षेत्र में महिलाओं ने बहुत ही आगे हैं, अग्रसर हैं महिलाएं। और लोक संगीत के क्षेत्र में भी हमारे ब्रज से महिलाओं ने बहुत अच्छा अपने जो हमारी विलुप्त जो विधाएं हैं उन्हें आगे लेकर आई हैं, उन्हें बहुत दूर दूर तक मंच तक पहुंचाया है। और ब्रज से ही नहीं, बाहर बहुत दूर दूर तक अपने ब्रज के कल्चर को, ब्रज की इस विधा को, ब्रज की परंपरा को लेकर गए हैं। तो महिलाओं की स्थिति बहुत ही आज अच्छी है, बहुत ही मजबूत है।
1: महिलाओं के बारे में आपने कहा उनकी स्थिति बहुत मजबूत है, एक महिला को कहाँ से सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलता है?
2: महिला को सबसे ज्यादा सपोर्ट देखिए परिवार से मिलता है। मैं अपने लिए ही बताऊं तो मतलब मैंने लोक गायन अपनी मम्मी से, मतलब अपनी माताजी से सीखा। घर की ही जो महिलाएं उन्हीं से सीखा मैंने विधिवत, उसको शिक्षा ग्रहण नहीं की थी संगीत की। शादी हुई मेरी, वो पूरा परिवार मुझे संगीत के क्षेत्र से ही मिला। अगर चाहते मेरे परिवारिकजन या मेरी सास या ससुर उसे वहीं पे बंद कर सकते थे, आगे नहीं देना, आगे जाने नहीं देते, लेकिन परिवार ने सपोर्ट किया, खुद मेरी सास ने सपोर्ट किया, मेरे ससुर हैं उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और आज एक मंच प्रदान किया मुझे कि मैं अपने विधा को बहुत दूर दूर तक लेकर गई हूँ। तो सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको अपने परिवार से मिलता है।
1: महिलाएं अगर कभी घर की चार दीवारी में जाती हैं, शौक पूरे नहीं कर पाती, क्या महिलाएं चाहकर भी बहुत कुछ नहीं कर पाती, महिलाओं से आप क्या कहना चाहेंगी?
2: नहीं है, मैं काफी लोगों से जब मैं कहीं बाहर कार्यक्रम में जाती हूँ तो मैंने देखा है ब्रज में भी जब कहीं मैं ऐसे गांव या कहीं ऐसे क्षेत्र में कभी कभी कार्यक्रम के लिए जाती हूँ तो मैंने देखा है कई महिलाएं ऐसे आती हैं जो बहुत अच्छा गायन, मतलब बहुत अच्छा गाती हैं, लेकिन शायद परिवार की किसी परिस्थिति या परिवार के किसी सपोर्ट ना मिलने की वजह से उन्हें एक मंच प्रदान नहीं हो पाता है। मतलब मुझे भी खुद ऐसा लगता है कि शायद ये मुझसे बहुत अच्छा गा रही हैं या बहुत अच्छा इनके पास ब्रज की बहुत ऐसी विधाएं हैं जिन्हें आगे आना चाहिए, लेकर आना चाहिए। जैसे आज मैं एक विधा है हमारे यहाँ रथ जगह की, जो शादी में रथ जगह होता है
1: जी,
2: तो आज उसके गीत मैंने खुद देखा है जो लोग जानते ही नहीं है कि रथ जगह में भी कौन से गीत गाए जाते हैं, क्या होता है, तो वो सब कुछ विलुप्त हो चुका है। और जो महिलाएं जानती हैं वो उन्हें उनके परिवार से ऐसा वो नहीं मिल पा रहा है।

0: कि वो आगे आ पाए, तो तब मुझे काफी दुख होता है।
1: चलनी जी, आपका बचपन और आपके अब के समय में, महिलाओं की स्थिति में आप कितना परिवर्तन महसूस करती हैं?
0: अपने बचपन में और आज के उसमें काफी काफी अंतर है। पहले इतना नहीं था, खुद मैं अपने ही बताऊं तो मेरे नाना जी थे, वो मुझे खुद ये कहते थे कि हमारी लड़की है मंच पे गाएगी, नहीं हम नहीं गाने देंगे, हमें घर में गाने दो, जितना भी है उसे अच्छा लगता है, घर तक ठीक है, लेकिन हम बाहर नहीं जाने देंगे। लेकिन आज इतना वो चेंज हुआ है कि आज मंच पे गा रही हैं, बहुत दूर दूर तक, मतलब विदेशों तक अपनी इस ब्रज की जब कला को हम पहुंचाते हैं और लोग अप्रिशिएट करते हैं, बहुत सराहना करते हैं ब्रजभाषा की, ब्रज के लोकगीतों की, तो खुद में हमें अपने अंदर ऐसा प्राउड फील होता है। तो आज काफी, मतलब जो लोगों की जो देखने की जो आज वो है, वो काफी चेंज हो चुकी है।
1: जी शालिनी जी, शिक्षा को आप कितना जरूरी समझती हैं किसी महिला की उन्नति के लिए?
0: नहीं, शिक्षा तो देखिए आज बहुत जरूरी है। मैं खुद जब भी कहीं मिलती हूँ या कहीं भी, आज मैं खुद ये करती हूँ कि महिलाओं के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है,
1: जी
0: सबसे ज्यादा जरूरी है। आप जिस क्षेत्र में भी जाएंगे, आप कुछ भी कहीं भी, तो आपको खुद ऐसा लगेगा कि शिक्षा बहुत जरूरी है।
1: महिलाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी?
0: बस यही, एक तो यही कहना चाहूंगी कि अगर आपके अंदर कोई भी ऐसा कुछ टैलेंट है, कुछ भी ऐसी कोई ऐसी चीज है जो आपके अंदर छुपी हुई है, तो उसे हमेशा आगे लेकर जरूर आए, चाहे वो संगीत के क्षेत्र से हो, कला के क्षेत्र से हो, या पेंटिंग। आप खुद जानते हैं कि कितनी विधाएं हैं, कितने क्षेत्र बहुत हैं अलग अलग,
1: जी
0: तो जो भी आपके अंदर कहीं छुपा हुआ है उसे सामने लेकर, महिलाओं के लिए यही है कि एक बार जरूर सामने लेकर आए अपना। और कुछ लोगों का टैलेंट जहाँ छुप जाता है, उसके लिए मुझे बहुत दुख होता है, तो एक बार प्लीज जो आपका टैलेंट है उसे एक बार सामने लेकर जरूर आए। और उनके परिवारिकजनों से भी मैं हमेशा जब भी मंच से कहीं मिलती हूँ तो यही कहती हूँ सभी परिवारिक लोगों को कि आपके घर में बहू बेटियां जो भी हैं, एक तो ये भेदभाव करना बंद करें कि बहुओं के लिए एक अलग नजरिया होता है, बेटियों के लिए वो
1: ये
0: बंद करके, बहू हो या बेटी हो, दोनों को एक नजरिए से देखकर
1: बहुत
0: उनको
1: अच्छी
0: जिस
1: बात
0: भी
1: बोली
0: क्षेत्र
1: आपने।
0: में है वो आगे लेकर आए।

जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, गंगा दशहरा जो है आने वाला है, बहुत ही मंगलमय पर्व है। गंगा दशहरा का दिन इसलिए शुभ है कि उस दिन गंगा जी का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था, क्योंकि भागीरथ जी ने तपस्या की और उन्होंने अपने 60,000 पूर्वजों के लिए तारण करने के लिए भगवान शिव की प्रार्थना की, क्योंकि गंगा भगवान श्री वामन अवतार जी के चरणों को ब्रह्मा जी ने जब धोया, अपने कमंडल में रखा, उनके लाने के लिए तपस्या की बहुत आवश्यकता थी। तो श्री भागीरथ जी ने, जो राम जी के पूर्वज थे, उन्होंने बहुत तपस्या की, उनको मनाया और शंकर जी को अब कहा कि भैया, गंगा जी अवतरण जब होंगी तो उनका बैग कौन धारण करेगा। भगवान शिव की उन्होंने तपस्या की और भगवान शिव कल्याणकारी हैं। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और गंगा दशहरा के दिन ही गंगा जी का पृथ्वी पर अवतरण हुआ, आविर्भाव हुआ और भगवान शिव ने अपने जटाओं में उनको संभाला। इसलिए गंगा भगवान शिव ने भी धारण की, इसलिए पवित्र है। और गंगा दशहरा के दिन जब गंगा जी हमारी पृथ्वी पर अवतरण हुई तो पृथ्वी पवित्र हुई और राजा सगर के जितने भी 60,000 जो भी उनके वंशज पूर्व, उनका उद्धार हुआ। तो गंगा दशहरा के दिन गंगा का स्नान करना, गंगा जल जो है घर में चरणामृत के रूप में लेना, गंगा का केवल नाम मात्र से ही हमारे जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि गंगा पवित्र करने वाली है, पापों को नाश करने वाली है, गंगा मोक्षदायिनी है। तो गंगा दशहरा के दिन कोई भी शुभ कार्य करिए, उसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है, दसों दिशाएं शुभ होती हैं। गंगा जी का अवतरण हुआ, इसलिए गंगा दशहरा बहुत दान पुण्य में भी लाभदायक है। इसलिए खाने पीने की चीज़ें जो भी है, शरबत है, कोई अपना रुआबजा है, कोई पंखा देता है, खरबूज है, तरबूज है, इसको दान करने से हमारे जीवन में पुण्य 10 गुना बढ़ता है और सारे पापों को मोक्ष प्राप्त होता है, परिवार में सुख शांति और समृद्धि भी होती है। जैसे गंगा बड़े बड़े पापों को धो करके निर्मल कर देती है, इसलिए गंगा दशहरा के दिन हम घर में जो भी पूजा पाठ करते, भगवान शिव पर जल चढ़ाते हैं या जो भी दान पुण्य करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, शक्ति के अनुसार, तो 10 गुना जा करके बढ़ करके हमारे परिवार को कल्याणदायी है, सुख शांति प्रदान करने वाला है। तो गंगा दशहरा का दिन बहुत ही शुभ है, सभी लोग बड़े प्रेम से, उत्साह से, नहीं हो तो गंगा जल भले ही एक बूंद अपने स्नान में कर सकते तो भी आपका गंगा की तरह स्नान मान्य होगा, और चरणामृत लें तो भी आपका जीवन पवित्र होगा। तो गंगा दशहरा के दिन पृथ्वी पर गंगा जी का अवतरण होने के कारण ये गंगा दशहरा बहुत ही मंगलमय, बहुत ही शुभ और सभी देवताओं की पूजा के लिए हितकारी है। जीवन में जो भी मनुष्य, उनके कल्याणकारी है।

अब डालते एक नजर समाचारों पर। गंगा दशहरा आज लगेगी आस्था की डुबकी। गंगा दशहरा का पर्व आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। सैकड़ों श्रद्धालु यमुना में आस्था की डुबकी लगाएंगे। घाटों पर सुबह से ही स्नानार्थियों की भीड़ उमड़ेगी। नगर निगम ने स्नान के लिए घाटों पर व्यापक इंतजाम किए हैं। प्रत्येक घाट पर गोताखोर भी मौजूद रहेंगे। मथुरा के विश्राम घाट, स्वामी घाट और वृंदावन के केसी घाट सहित प्रमुख स्थलों पर पुलिस बल और सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। किसी अप्रिय घटना से निपटने के लिए घाटों पर कुशल गोताखोर मौजूद रहेंगे। गहरे पानी वाले क्षेत्रों में बैरिकेडिंग और चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं। नगर निगम ने घाटों पर सफाई अभियान चलाया है। जगह जगह टैंकरों के माध्यम से पानी और कुआ पाया सहित अन्य इंतजाम किए गए हैं। महापौर विनोद अग्रवाल ने और नगर आयुक्त जग प्रवेश ने व्यवस्थाएं पर की। श्री द्वारकाधीश मंदिर में सजेगी यमुना जी की झांकी। गंगा दशहरा पर्व आज मनाया जाएगा। द्वारकाधीश मंदिर में बुधवार को यमुना जी की मनोहारी झांकी सजाई जाएगी। मंदिर के विधि एवं मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी जी ने बताया कि सुबह से ही ठाकुर जी के समक्ष यमुना महानरनी का दिव्य स्वरूप सजाया जाएगा। ग्रामीण ने अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सुरेश

रावत ने सोमवार को कस्बे में पैदल भ्रमण किया। उन्होंने पुलिस बल के साथ मोहर्रम जुलूस के प्रस्तावित मार्गों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा लोगों से संवाद का सुझाव प्राप्त किए। राजस्व कार्यों में लगाए तेजी व अवैध खनन पर सख्ती बरते जिम्मेदार। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने मंगलवार को राजस्व संबंधी कार्यों की बैठक में राजस्व वादों के निस्तारण अवैध खनन पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने 5 साल से अधिक लंबित मामलों को त्वरित निस्तारण किया जाएगा। स्टाम्प संग्रह में धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते उन्होंने अभियान चलाकर वसूली के लक्ष्यों को 100% पूरा करने के निर्देश दिए। IGRS पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों पर निस्तारण पर भी जोर दिया। बैठक में SDM पंकज कुमार वर्मा, अमरेश कुमार और वेद प्रिया आर्य उपस्थित रहे। हर दिन अपने आप में कुछ न कुछ ऐतिहासिक घटनाएं समेटे रहता है और अब नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। क्या कहते हैं आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टि से। आज ही के दिन 1564 में वीरांगना रानी दुर्गावती मुगल सेनापति आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेना के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए शहीद हो गई। वहीं 1793 में फ्रांस ने पहली बार अपना गणतंत्रात्मक संविधान अपनाया। 1901 में स्पेन के महान चित्रकार पाब्लो पिकासो की पहली कला प्रदर्शनी पेरिस में शुरू हुई। वहीं 1947 में कैनेथ ऑर्नोड ने वाशिंगटन के माउंट रेनियर के पास पहली बार UFO देखने का दावा किया गया, जिसे व्यापक रूप से रिपोर्ट किया गया। वहीं 1974 में लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच की दूसरी पारी में भारतीय क्रिकेट टीम मात्र 42 रनों पर ऑल आउट हो गई थी, जो टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम स्कोर है। वहीं 1859 में भारत के महान क्रांतिकारी दामोदर हरी चपेकर का जन्म आज ही के दिन हुआ था। वहीं 1933 में भारतीय लेखिका साहित्यकार अनिता देसाई का जन्म हुआ था। आकाशवाणी ने अपने 90 वर्षों के सफर में नित नए आयाम स्थापित किए हैं। वर्ष 2013 में प्रसार भारती ने न्यूज ऑन एयर ऐप लॉन्च किया। इससे आकाशवाणी दूरदर्शन के कार्यक्रम सीधे लोगों के मोबाइल फोन तक पहुंचे। इस ऐप के माध्यम से आकाशवाणी ने 230 से अधिक चैनलों को दुनिया के किसी भी कोने में लाइव सुनाने में सक्षम हुए। वहीं खेल, व्यवसाय, चुनाव जैसी छोटी मोटी जानकारी को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया गया। श्रोताओं, हमारे जीवन में कुछ ऐसी विभूतियां आती हैं जिनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जिनकी जयंती आज है और वीवी गिरी जिनकी पुण्यतिथि आज है, ये वो महान आत्माएं थीं, महान विभूतियां थीं जिनका जीवन हर युवा के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज के हित में, समाज को आगे बढ़ाने में, आम आदमी के लिए, हर जनमानस की सुविधाओं के लिए, जो भी जनमानस के लिए पर्याप्त सुविधाएं होती थी उसको दिलाने में लगाया। इनका आरंभिक जीवन कठिनाइयों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कठिनाइयों से हार नहीं मानी। इन्होंने हमेशा यही सिखाया कि किसी भी प्रकार हमें खुद से हार नहीं माननी चाहिए। अगर हमारे आज के युवा इनसे प्रेरणा लें तो निसंदेह वो जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कि चाहे आपके समक्ष कितनी भी कठिनाइयां आए, कितनी भी चुनौतियां आए, अगर आप चाहें तो आप आगे बढ़ सकते हैं, समाज के लिए कुछ कर सकते हैं और एक उदाहरण के तौर पर अपने जीवन को प्रस्तुत कर सकते हैं। क्योंकि हम समाज में जब अपने आइडल को देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनसे प्रेरणा लेकर वैसे ही बनने का प्रयास करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या करें क्या ना करें के अंतर बातचीत करते हैं, विषयों के बारे में जो होते आम बन जाते हैं खास।

अश्वता, हमारा कार्यक्रम समापन की ओर है। सदा प्रसन्न रहे, खुश रहें और अपने आसपास साफ सफाई का माहौल रखें। इसी के साथ स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज दर्पण FM 102.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

शफ़ाकत अमानत अली इस आवाज को अभी आप सुन रहे थे फिल्म यारियां में। फिल्म संगीत के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

शोर दिल पे नजोर तूफान सा है एक दोनों ओर मुझे खींच रही अनजानी डोर बस तेरी ओर बस तेरी।

अभी आपने सुना गर्लफ्रेंड फिल्म से लिया ये गीत। सुर दिए थे शान सुमेराव और डब्बू मलिक ने।

फिल्म आर्टिकल 15 से लिया ये गीत अभी आप सुन रहे थे अरमान मलिक की आवाज में। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर अभी आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत फिल्म लवशुदा से। आवाज दी है आतिफ असलम ने।

अमरिंदर गिल, अभी आपने इनकी आवाज को सुना मुंडे यूके दे में। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत के कार्यक्रम को अब हम यही विराम देते हैं। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं। श्रोताओं, हमें खेद है कि तकनीकी व्यवधान के कारण आपका पसंदीदा फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी आज प्रसारित नहीं हो पा रहा है। हम आपको सुनवाते हैं कुछ फिल्मी गीत।

बिल्लू बार बार, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना सुखविंदर सिंह, सुनिधि चौहान और साथियों के स्वर में। गीत को लिखा था गुलजार ने, संगीत था प्रीतम का। आइए सुनते हैं अगला गीत।

लागा चुनरी में दाग, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना स्मृति चौहान, श्रेया घोषाल, स्वानंद किरकिरे की आवाजों में। गीत को लिखा था स्वानंद किरकिरे ने, संगीत था शांतनु मोइत्रा का। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म भारत से।

अभिजीत श्रीवास्तव की आवाज़ में आपने सुना भारत फिल्म का ये गीत। गीत को लिखा था इरशाद कामिल ने, संगीत था विशाल शेखर का।

0: रब ने बना दी जोड़ी, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाज़ में। गीत को लिखा था जयदीप साहनी ने, संगीत था सलीम सुलेमान का।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत अनुपम आमोद की आवाज में। इस गीत को हमने लिया है फिल्म आक्रोश से। इरशाद कामिल के बोलों को संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। दिन के 11:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी पसंद।

अलका याग्निक, सोनू निगम और साथियों की आवाज़ में आपने सुना दुल्हन हम ले जाएंगे फिल्म का ये गीत। गीत को संगीत से सजाया था हिमेश रेशमिया ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म ज्वेल थीफ से।

ज्वेल थी फिल्म का ये गीत आपने सुना आशा भोसले और साथियों की आवाज़ में। शब्द रचना शैलेंद्र की थी, संगीत था ST बर्मन का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, फिल्म जब याद किसी की आती है से। गीत को आवाज़ दे रहे हैं महेंद्र कपूर, शब्द रचना राजा मेहंदी अली खां की, संगीत मदन मोहन का।

आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय हमारे श्रोता सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद, और अब सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज में रोटी फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

फूल है खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो, हे हम सारे हैं भारतवासी, सब हैं।

जिगरी दोस्त, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का यह आखिरी नगमा फिल्म घर द्वार से। गीत को आवाज़ दी है सुरेश वाडेकर, चंद्रानी मुखर्जी और साथियों ने।

0: घर द्वार, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना सुरेश वाडेकर, चंद्रानी मुखर्जी, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में। गीत को लिखा था अनजान ने, संगीत था चित्रा गुप्ता का। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम मेरी पसंद अब यहीं पर समाप्त होता है।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत बात और SMS। कार्यक्रम गीत बात और SMS सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत आपके अपने कार्यक्रम में और स्वीकार कीजिए ज्योति शर्मा का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम शुरू करें उससे पहले शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में जानवर फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा था हसरत जयपुरी ने, संगीत था शंकर जयकिशन का। और इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास फरमाइश आई लक्षणपुर छत्तीसगढ़ से, रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम सतीश, मुकेश कुमार साहू की फरमाइश पूरी हुई। और ये फरमाइश आई संतोष कुमार सोनार, नरेंद्र दंडगवाल, रविंद्र सोनार, सन्नी मुन्ना, बंडू दादा, बहादुरपुर रथ चौक, जिला जलगांव से। और कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पी रानी, आकाश कुमार का ये हमने फरमाइश शामिल की। इसी के साथ हमारे ये श्रोता हैं, इनका नाम है हीरा लाल साहू, संजय कॉलोनी, बलौद घाट, इंडियन गोदाम के पास, बालोदा बाजार से। आप सभी श्रोताओं की पसंद हम शामिल कर रहे हैं। ये हैं हमारे श्रोता, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, और कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। श्रोताओं, आपकी पसंद शामिल की, आपको गीत सुनवाया और अब थोड़ी सी बातें हो जाएं। बात भी वही जो आज की जा सकती है। जी हाँ, आज की बात खास क्या, आज की बात तो यही कि आज कुछ विशेष दिवस है। आज गंगा दशहरा का पावन पर्व है, जो हिंदू लोक रीति रिवाज में बहुत पुण्यशाली तिथि जिसे मानी जाती है, गंगा अवतरण का दिवस। इस कारण इस गंगा दशहरा को जितने भी भारतीय हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, वो गंगा तीर्थ पर स्नान करते हैं, या जिनके नगरों के पास में गंगा नहीं है, वो अन्य पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। हमारे भारतीय जनमानस में गंगा का स्थान बहुत ही ऊंचा है। गंगा को पवित्रतमा कहा जाता है, गंगा को लोकदायिनी, लोक जीवनदायिनी, प्राणदायिनी नदी के नाम से हम सब जानते हैं। हम सब जानते हैं कि गंगा का जल कितना पावन होता है। इस गंगा जल को कभी कोई मैला नहीं कर सकता, लेकिन अपनी आँखों से जब हम देखते हैं कि गंगा जी में, गंगा जल में कहीं कोई अपद्रव प्रवाहित किया जा रहा है, या कुछ लोग उसमें स्नान करते समय गंगा जल को, गंगा जल की पावनता को भुला करके उससे एक स्नान घर की तरह प्रयोग करते हैं, तो ज़रूर दुख होता है। तो हम इसकी पावनता को बनाए रखने के लिए प्रयास अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो कोई और नहीं आएगा जो हमारी धरती को, हमारी नदियों को पावन करेगा, या उनकी पवित्रतमा जो भाव है उनको उजागर कर पाएगा। यानी कि हमारी थोड़ी सी सावधानी से, थोड़ी सी अगर अपनी कर्तव्य परायणता से हम आगे बढ़ें, तो सभी चीज़ों के प्रति अपना जो कर्तव्य है उसको पूर्ण किया जा सकता है। और अगर हम अपने कर्तव्य पूर्ण करने में आगे बढ़ पाएंगे, तभी तो ऐसे दिवसों की सार्थकता संभव होगी। और अब सुनते हैं गीत, उसके बाद फिर आपसे होंगी कुछ बातें।

मुकेश की आवाज में हमारे श्रोताओं ने सुना संत ज्ञानेश्वर फिल्म का ये गीत। हम कार्यक्रम में बात कर रहे थे आज के पर्व की, आज का मुख्य पर्व गंगा दशहरा। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी अर्थात आज के दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। इसके पीछे की बहुत सारी कहानियां हम सब जानते हैं। मान्यता यही है कि जब सगर के पुत्रों का गंगा तट पर विनाश हो गया तो भागीरथ ने अपने तपोबल से प्रसन्न किया ईश्वर को और उसके बाद गंगा का धरती पर अवतरण हुआ। गंगा लोक को पावन करने के लिए, जी हाँ, न केवल सगर पुत्रों के लिए बल्कि लोक को पावन करने के लिए धरती पर अवतरित हुई। और इसी कारण आज भी जो व्यक्ति सच्चे मन से माँ गंगा का स्मरण करते हैं, चाहे वो कहीं पर भी हों, स्नान करते हैं, स्नान करते समय माँ गंगा का स्मरण करते हैं, तो उनके समस्त पापों का विनाश होता है।

सही बात है, जिस देश में गंगा बहती है हम उस देश के वासी हैं। हमारा वो देश भारत है, हम भारतवासी हैं और ये हमारे लिए बड़े ही गौरव का विषय है। लेकिन कहीं कहीं उस गौरव को तब ठेस पहुंचती है जब हमें कुछ ठीक देखने को नहीं मिलता, कुछ ठीक महसूस नहीं होता। आज का जो समय है और आज की हमारे इस भारत में नदियों की जो स्थिति है वो हमें ये दिखाती है, ये सिखलाती है कि हमें आगे बढ़कर कुछ करना होगा। और यदि हम प्राकृतिक संतुलन बनाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो इन नदियों से शुरुआत की जा सकती है, वृक्षारोपण से शुरुआत की जा सकती है। आज के दिन खास कुछ लोग दान पुण्य और परोपकार के लिए आगे बढ़ते हैं, तो जिसके पास जैसी सामर्थ्य होती है वो उस प्रकार से अपने जीवन में अपने जीवन की कुछ धन से, तन से या फिर मन से लोगों की सहायता करता है या उन पर उपकार करता है। गरीबों की, ज़रूरतमंदों को भोजन करा के, कुछ द्रव्य देकर, कुछ वस्त्र देकर, उनकी सेवा करके लोग पुण्य कमाने के लिए उत्साहित होते हैं। कुछ जगहों पर ग्रीष्म ऋतु के कारण, क्योंकि ये ज्येष्ठ का महीना होता है, तो गर्मी होती ही है और इस गर्मी में गंगा स्नान तो किया जाता है, स्वयं को जब पावन कर लिया जाता है तो ये भावना भी उत्पन्न होती है कि जिस प्रकार से हम सुखी हुए हैं उसी प्रकार से अपने आसपास के सभी लोगों को सुखी किया जाए। और इसलिए लोगों को गर्मी के मौसम में जल पिलाया जाता है, ठंडे जल का शरबत हो या फिर कुछ ऐसा सामान जिससे उन्हें तपती हुई गर्मी में आराम मिले, जैसे कि पंखा है या फिर छाता जिससे उनके

सुरक्षा होती है गर्मी से, तपते हुए मौसम से, और कुछ मौसमी फल जो उनको आराम दे सके इस तपते गर्मी के मौसम में। इन सभी वस्तुओं का दान लोग श्रेष्ठ समझते हैं कि यदि ऐसा किया जाएगा तो फिर हमारे समाज में सुख होगा और शायद दे करके हमारे मन में और ज्यादा संतोष के भाव भी आएंगे। और ये बात भी ठीक है कि यदि हम किसी पथ पर आगे बढ़ते हैं तो हमें प्रेरणा लेने के लिए कुछ न कुछ आगे करते रहना भी चाहिए, और आज हमारे समाज में ऐसा ही हो रहा है। हाँ, एक बात ये खास है कि जब हम आज के दिन की बात करें, जब आज गंगा दशहरा है समूचे भारतवर्ष में, और जहाँ तक हिंदू परंपरा को मानने वाले लोग हैं वो गंगा स्नान करेंगे। गंगा नहीं जहाँ पर होंगी, वहाँ पर अन्य पवित्रतम नदियों में स्नान करेंगे, और जिनके पास वो भी नहीं होगा वो गंगा जल के पावन आचमन से अपने आप को पावन महसूस करेंगे। ऐसे में हमें ज़रूर जागना चाहिए अपने पर्यावरण के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति। ऐसे में यदि हम नदियों को सही सलामत रखना चाहते हैं तो उनके आसपास वृक्ष जरूर होने चाहिए, या उनके आसपास या कहीं दूर, लेकिन वृक्षारोपण अवश्य होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के दोनों ही तत्व, जल और ये हरियाली, महत्वपूर्ण हैं। यदि नदियाँ और पर्यावरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो हमें इन दोनों की ही रक्षा करने के लिए मन में ठानना होगा। जल स्रोत के किनारे और अपने आसपास जहाँ हम रह रहे हैं, अधिक से अधिक पेड़ हम यदि लगाएं तो नदियों के जलस्तर और मिट्टी के कटाव को रोकने में ये सहायता हो सकती है, हम उनकी मदद कर सकते हैं। अगर नदियों की बात की जाए तो नदियों में जलचर भी होते हैं, मछलियां हैं, कछुए हैं और अन्य जलचर जो नदियों में होते हैं, उनको भी नुकसान न पहुंचाया जाए। और उनको नुकसान तब नहीं होगा जब हमारी नदियां स्वच्छ होंगी। कई बार देखा गया है कि नदियों में स्नान करते समय लोग साबुन का प्रयोग करते हैं, डिटर्जेंट का प्रयोग करते हैं, नदियों में कपड़े धुलने का कार्य करते हैं। तो याद रखना चाहिए कि हम नदियों में स्नान करके स्वयं को पावन करने आए हैं, ना कि उन नदियों की पावनता में गंदगी के लिए हम वहाँ पहुँचे हैं। तो ये बात यदि हमें याद रहती है तो ऐसा नहीं होगा, और यदि हम ऐसे लोगों को देखते हैं तो उनको भी रोकना टोकना उस समय हमारा कर्तव्य बन जाता है, क्योंकि यदि हम उनको समझा सकेंगे तो हो सकता है हमारी बात बन जाए, वो ऐसा करना छोड़ दें। लेकिन यदि हमने उन्हें ऐसे करते हुए देखा और बोल ही नहीं पाए, कुछ कहा ही नहीं, तो ये मन में अफसोस रह जाएगा कि हमने थोड़ा सा भी प्रयास नहीं किया। और बिना प्रयास किए हार मान लेना, ये कहाँ की बुद्धिमानी है। प्रयास करना चाहिए, और हो सकता है हम जिस गौरव के साथ ये गीत गाते हैं उसी गौरव के साथ आगे भी ऐसे ही गुनगुनाते रहें।

अपनी पावन नदियों के संरक्षण और उनके संवर्धन के लिए किस प्रकार से हम कार्य कर सकते हैं, इस विषय पर जरूर विचार करना होगा हमें आज के दिवस, तभी इस उत्सव की, इस पर्व की आस्था में और वृद्धि हो सकेगी और हम सब और ज़्यादा प्रसन्न और खुश हो सकेंगे। आज के कार्यक्रम को अब यहीं पर विराम देते हैं। आज के कार्यक्रम में आपके संदेशों को हम शामिल नहीं कर सके क्योंकि कुछ तकनीकी व्यवधान आज हमें देखने को मिले, और कल के कार्यक्रम में आप

0: आपके संदेशों के साथ, आपकी बातों के साथ, हमारी बातों के साथ आपके गीत जरूर सुनवाएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, स्वीकार कीजिए, नमस्कार।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम ब्रजलोक की।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज लोकगीत। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं हाकिम सिंह के गाए हुए कुछ लोकगीत। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं रामेश्वर दयाल शर्मा, ढोलक पर प्रोफेसर मिश्रा, सारंगी पर मनमोहन कौशिक और परकशन पर सूरज भान। आइए सुनते हैं हाकिम सिंह के स्वर में कार्यक्रम ब्रज लोकगीत का ये पहला लोकगीत।

0: तजो आपस की फूट अब तो मेल मिलाओ। अभी आपने सुना हाकिम सिंह के स्वर में ये लोकगीत।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1 लाख दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
7: जनगणना 2027

आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ब्रज लोकगीत। आज के कलाकार हैं हाकिम सिंह।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आइए सुनते हैं कार्यक्रम ब्रज लोकगीत में हाकिम सिंह के गाए हुए इस अगले लोकगीत को।

0: मैं ब्रज वृंदावन जाऊंगी। इसी लोकगीत के साथ आज का कार्यक्रम ब्रज लोकगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे हाकिम सिंह के स्वर में कुछ लोकगीत।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। दोपहर के 1 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि साध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने साध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। देश में रह रहे भारतीय नागरिकों और बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी तथा सतर्कता बरतने और स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है। 4 महीने से चल रहे पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है, जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा, और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग, उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए आज भूमि पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक, जिसके अंदर 9 स्टेशन्स है।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 603 अंक के उछाल के साथ 76,804 पर, जबकि निफ्टी 154 अंक बढ़कर 23,978 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी

0: का मथुरा वृंदावन केंद्र है। दोपहर के 1:05 हुए हैं।
1: जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: प्रस्तुत है हमारे आज की दोनों सभाओं में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। रात्रि 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। एनसीईआरटी और सीआईईटी के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रसारित किया जाएगा दोपहर 2:30 से। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 1:10 पर आप सुनेंगे देशगान और 1:15 का समय रहेगा बहनों के कार्यक्रम वनितालोक का। आज इस कार्यक्रम में चर्चा होगी अंतर्राष्ट्रीय महिला कूटनीति दिवस और महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर। इसी कार्यक्रम में सुनवाएंगे एक भेंट वार्ता, उत्तम स्वास्थ्य के लिए फिजियोथेरेपी की भूमिका। वार्ताकार होंगी डॉ पूनम शर्मा और आपसे भेंट करेंगी उषा पांडे। फिल्म संगीत का आनंद हमारे श्रोता लेंगे दोपहर 1:45 पर और 3:00 हमारी पहली सभा का समापन होगा। दूसरी सभा आरंभ होगी संध्या 5:30 से कार्यक्रम युववाणी के साथ। आज की बात के क्रम में आप सुनेंगे पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जयंती, बीवी गिरी पुण्यतिथि और अंतर्राष्ट्रीय महिला कूटनीति दिवस के बारे में। व्यक्तिगत विकास वार्ता के अंतर्गत सुनिएगा युवा कलाकार अरुण रावल से चंचल सारस्वत की बातचीत।

0: संध्या 6:15 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। इस कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय रहेगा फसल बीमा योजना से किसानों की सुरक्षा और खेत की उर्वरता बढ़ाने में जैविक खाद की भूमिका। इसी कार्यक्रम में सुनवाएंगे वार्ता खेत बचाओ अभियान के क्रम में मिट्टी के जांच के लाभ। वार्ताकार होंगे पुनीत कुमार। किसान भाई हमारे इस कार्यक्रम में सुनते हैं मौसम का हाल, बाजार भाव और कृषि समाचार। संध्या 7:05 पर सुनेगा ब्रज साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत ब्रज काव्य सुधा। आज के कवि होंगे खजेरमल भारद्वाज अनुरागी। संध्या वंदन भक्ति परक फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम लेकर आएंगे संध्या 6:45 पर। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 7:18 पर और संध्या 7:31 पर होगा कार्यक्रम शाम सुहानी। फिल्म संगीत का प्रसारण होगा रात्रि 8 बजे से और कार्यक्रम एक ही फिल्म से लेकर आएंगे रात्रि 8:30 पर। चित्रपट संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने आपकी सेवा में लेकर आएंगे रात्रि 9:15 से। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत। दस बजकर 30 मिनट पर आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे पंडित ओंकार नाथ ठाकुर का ख्याल गायन राग दरबारी कान्हड़ा में। रात्रि 11 बजे होंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचारों के साथ 11:10 पर हमारी सांध्यकालीन सभा समाप्त होगी। अभी आप सुन रहे थे हमारे दोनों सभाओं में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाश

हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट. बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल.

0: बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
1: प्रस्तुत है देशभक्ति परक रचना संवेद स्वरों में।

0: संवेद स्वरों में आपने सुना ये देशगान।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट. बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ.
1: मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है सब अच्छा होगा. FM 102.2 MHz पर आप सुन रही हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम वनिता लोक, और आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आपकी सहेली आरजे मीनू अग्रवाल. हंसता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ाता है, मगर हंसकर किया हुआ काम आपकी पहचान बढ़ाता है. जी, यदि किसी भी कार्य को खुशी खुशी किया जाए तो वो एक मुस्कान का बहाना बन जाता है. बात करें किसी भी कार्य की तो वो मन व लगन से किया जाए तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता. कार्य की मेहनत व लगन मायने रखती है. जैसे कि हम बात करें स्वरोजगार की, जिसका अर्थ है स्वयं के लिए काम करना, ना कि कहीं नौकरी करना. कभी कभी मन में आता है स्वरोजगार की आवश्यकता क्यों है. वो इसलिए क्योंकि स्वयं के लिए कार्य करना यानी अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना और अपनी योग्यता व कौशलता को एक साथ एक मौका देना. ये स्वरोजगार उन महिलाओं के लिए आवश्यक हो जाता है जो बाहर जाकर जॉब आदि नहीं कर सकती हैं, बल्कि घर पर ही रहकर अपनी रुचि के अनुसार कोई भी काम शुरू कर सकती हैं, जिससे उनको हौसला मिलेगा, बल्कि आर्थिक रूप से अपने परिवार की मदद भी कर सकेंगी. इसलिए महिलाओं के लिए स्वरोजगार के बहुत विकल्प हैं. जैसे घर पर बुटीक खोलकर कपड़े सिलने और कढ़ाई बुनने का कार्य कर सकती हैं. आज के टाइम में ब्यूटी पार्लर आदि का बहुत क्रेज है, इसलिए वो ब्यूटी पार्लर का कोर्स करके घर पर ही ब्राइडल मेकअप शुरू कर सकती हैं. यदि वो अच्छी कुकिंग जानती हैं तो टिफिन सर्विस कैटरिंग आदि का काम भी शुरू कर सकती हैं. और यदि हैंडीक्राफ्ट की शौकीन हैं तो घर पर ही तरह तरह के डेकोरेशन पेंटिंग्स आदि बनाकर ऑनलाइन या पास ही बाजार में बेच सकती हैं. ऐसे ही यदि वो शिक्षित हैं तो घर पर ही ट्यूशन पढ़ाना या ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर सकती हैं, जिसमें कोई भी खर्चा नहीं होता है. इस प्रकार और भी ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें कम लागत में घर पर ही कर सकती हैं. दूसरी तरफ भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए चलाई जाने वाली विशेष पहल है महिला स्वरोजगार योजना, जिसमें आसान शर्तों पर अनुदान और सस्ता लोन उपलब्ध कराया जाता है. अब बात करते हैं अपनी दूसरी चर्चा की, अंतर्राष्ट्रीय महिला कूटनीति दिवस. जैसा कि अभी हमने महिलाओं के स्वरोजगार की चर्चा की, वैसे ही आज के दिन महिलाओं को सशक्त और उनकी सराहना के अवसर पर एक दिवस मनाया जाता है, और वो है अंतर्राष्ट्रीय महिला कूटनीति दिवस, जो हर साल 24 जून यानी आज के दिन मनाया जाता है. लेकिन इसकी स्थापना 20 जून 2022 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी, ताकि ये पुष्टि की जा सके कि पुरुषों के साथ समान स्तर पर और निर्णय लेने के सभी स्तरों पर महिलाओं की भागीदारी सतत विकास, शांति और लोकतंत्र को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है. कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया को महिला राजनयिकों के काम को पहचानने और उनकी सराहना करने का अवसर प्रदान करता है. ये उन महिलाओं को धन्यवाद कहने का एक तरीका है जिन्होंने कूटनीतिक भूमिकाओं में बदलाव किया. उनकी उपलब्धियों को स्वीकार करके हम ये सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम उठाते हैं कि लिंग की परवाह किए बिना सभी को दुनिया को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण निर्णयों का हिस्सा बनने का उचित मौका मिले. और आपको जानकारी के लिए बता दें कि कूटनीति महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस की केंद्रीय थीम ग्लोबल मामलों में समान नेतृत्व को आगे बढ़ाना है. इस प्रकार ये दिन महिलाओं के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, जिससे

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। दोपहर के 1:15 हुए हैं। प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम वनिता लोक। आज किस कार्यक्रम को पेश कर रही हैं मीनू अग्रवाल।

अपने आप को अधिक मजबूत और सशक्त महसूस कर सकें। तो ये तो थी हमारी चर्चा, अब कर लेते हैं कुछ मनोरंजन इस गीत के साथ। तेरी दीवानगी का आलम क्या कहें साहिब, तेरी दीवानगी का आलम क्या कहें साहिब, तेरी परछाई तक भी मुझको ढूंढा करती है।

0: इस प्यारे से गीत के बाद अब हम बात कर लेते हैं अपने स्वास्थ्य की। जी, हम सभी अपने स्वास्थ्य के लिए सजग तो रहते ही हैं, फिर भी कोई ना कोई स्वास्थ्य समस्या हो ही जाती है। वैसे तो बीमारियों के अनेक इलाज हैं, लेकिन बात करें फिजियोथेरेपी की, तो ये स्वास्थ्य के लिए किस तरह भूमिका निभाती है, तो इन सभी की जानकारी हमें दे रही हैं पूनम शर्मा इस भेंट वार्ता के माध्यम से, और इनसे भेंट कर रही हैं उषा पांडे।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। धन पद और प्रतिष्ठा का आनंद तो तभी सार्थक है जब हमारा स्वास्थ्य हमारा साथ दे। स्वस्थ व्यक्ति के पास अनेक इच्छाएं होती हैं, लेकिन अस्वस्थ व्यक्ति की सबसे बड़ी इच्छा केवल स्वस्थ होना होती है। जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर स्वास्थ्य को पीछे छोड़ देते हैं, जबकि स्वस्थ रहना ही जीवन को पूर्णता से जीने का आधार देता है। साथियों, स्वास्थ्य केवल रोगों का अभाव नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण स्वस्थता की अवस्था है। जब शरीर दर्द, चोट या ऑपरेशन के बाद कमजोर पड़ जाता है, तब फिजियोथेरेपी उसे फिर से गति, शक्ति और आत्मविश्वास प्रदान करती है। और फिजियोथेरेपी केवल उपचार नहीं, बल्कि व्यक्ति को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने की कला और विज्ञान है। और साथ में साथियों, हम किसी भी प्रकार के ऑपरेशन के बाद जो हमारा अगला स्टेप है, यानी पोस्ट ऑफ ऑपरेशन, उसमें हमारी जो ऑपरेशन की सफलता की पहली सीढ़ी है, वो फिजियोथेरेपी है। मरीज को सामान्य जीवन में वापस लाने का मार्ग अक्सर फिजियोथेरेपी से ही होकर गुजरता है। एक कुशल फिजियोथेरेपिस्ट केवल शरीर का उपचार नहीं करता, बल्कि मरीज में नई आशा और आत्मविश्वास का संचार भी करता है। तो साथियों, इसी संदर्भ में आज हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित हैं डॉक्टर पूनम शर्मा, जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और आप और हम उनसे जानकारी लेंगे कि ये फिजियोथेरेपी है क्या और फिजियोथेरेपी के क्या-क्या फायदे हैं, हम किस तरह से एक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं फिजियोथेरेपी के द्वारा। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार डॉक्टर साहब, फिजियोथेरेपी है क्या? ये एक सामान्य लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमारे श्रोता साथी और हम भी आपसे जानना चाहेंगे।
2: फिजियोथेरेपी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें बिना दवाइयों के और बिना सर्जरी के आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। व्यायाम के थ्रू, स्ट्रेचिंग और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से आपका ट्रीटमेंट किया जाता है।
1: जी, आपने जो अभी बात की, इसके द्वारा किस तरह से ट्रीटमेंट होता है?
2: जैसे हमारी मसल्स हमारी वीक हो जाती हैं, तो
1: जी
2: मसल्स को हम स्टिमुलेट करते हैं,
1: जी
2: और जहाँ सूजन होती है उस जगह पर
1: जी
2: अल्ट्रासोनिक थेरेपी देते हैं, जिससे सूजन कम होती है, अंदरूनी सूजन कम होती है,
1: जी
2: तो उसी से हीलिंग फास्ट होती चली जाती है।
1: फिजियोथेरेपिस्ट क्या होता है?
2: फिजियोथेरेपी एक ऐसा प्रोफेशन है मैम
1: जी,
2: जहाँ पे पेशेंट की हड्डियाँ, नसें और मांसपेशियों को, जोड़ों को देखकर ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है कि हमें उस पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देना है।
1: फिजियोथेरेपी जब कोई व्यक्ति कराता है तो क्या उसके साथ में मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती है?
2: कभी कभार जब ज्यादा सूजन होगी तब, बाकी हम लोग तो मेडिसिन एडवाइस नहीं करते हैं, सिर्फ व्यायाम और मशीनों से ही पेशेंट को ठीक करने की कोशिश करते हैं।
1: या एक तरह से ये भी प्रश्न बनता है डॉक्टर साहब कि फिजियोथेरेपी और एक सामान्य जो चिकित्सा है, यानी दवाइयों की चिकित्सा,
2: जी
1: उसमें
2: मैम,
1: अंतर क्या है?
2: जैसे हम कोई भी मेडिसिन्स वगैरह लेते हैं तो उसमें दवाई लेने से लक्षण दब जाते हैं, या सर्जरी से हमारी बॉडी की संरचना बदल जाती है। फिजियोथेरेपी कराने से ऐसा कुछ भी नहीं है। फिजियोथेरेपी हमें एक्सरसाइज के थ्रू, व्यायाम के थ्रू खुद ही

0: बॉडी को हील करने की प्रोसेस को हाई करती है।
1: किन किन तरह की बीमारियों या समस्याओं का उपचार किया जाता है इसमें?
0: मैम बीमारियां तो जैसे बच्चों में ग्रोथ हो गई, फ्लैट फुट हो गया, क्लब फुट हो गया, या आप कह सकते हैं स्पाइनल इंजरी हो गई, सर्वाइकल हो गया, और कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटने दर्द, इन सभी में, या जो खिलाड़ी खेलते हैं उस समय टीयर हो जाते हैं, ACL टीयर वगैरह हो जाते हैं उस समय, उन्हीं बीमारियों में। महिलाओं में अगर बात करें तो आफ्टर प्रेगनेंसी या फिर आफ्टर सी सेक्शन के बाद हमारी कोर मसल्स लूज हो जाती है, जिससे लीकेज वगैरह की प्रॉब्लम आती है, यूरिन लीकेज
1: जी
0: की,
1: जी
0: तो उसी में फिजियोथेरेपी कोर मसल्स की स्ट्रेंथ करा के उसको कंट्रोल करती है।
1: तो इसमें क्या सिटिंग का भी प्रावधान है?
0: अगर अर्ली स्टेज होती है तो 10 to 15 days में आपको बहुत आराम आ जाएगा, अगर केस लंबा होता है तो वहाँ आपको टाइम लग सकता है।
1: तो प्रतिदिन की थेरेपी होती है अक्सर?
0: प्रतिदिन
1: आपने कमर दर्द, गर्दन दर्द, घुटनों के दर्द की बात की और स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका की प्रॉब्लम, तो ये जो सारी समस्याएं हैं इसमें किस तरह से फिजियोथेरेपी काम करती है? थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझाइए हमारे श्रोताओं को।
0: जैसे आप घुटनों की या कमर की या गर्दन की दर्द की बात करें या फिर आप सियाटिका की बात करें, तो इसमें ऐसा होता है कि पेन बहुत ज़्यादा हो गया, पेशेंट को कंट्रोल नहीं हो रहा, तो पहले 3 दिन हम लोग मशीनों से ट्रीटमेंट करते हैं,
1: जी
0: स्टिमुलेशन देते हैं, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देते हैं, और अल्ट्रासोनिक थेरेपी के थ्रू हम पेशेंट की सूजन को कम करते हैं। उसके बाद व्यायाम से और मैनुअल थेरेपी से, जैसे टेपिंग, ड्राई नीडलिंग हो गई, उसी से हम पेशेंट को रिलैक्स कराते हैं। वो जब रिलैक्स होती है उसके बाद हम कोर मसल्स हुई आपकी, जो मसल्स की पावर को बढ़ा के पेशेंट को ठीक करने में मदद करते हैं।
1: जैसे आपने कहा कि मसल्स की पावर को बढ़ाते हैं, तो ये जो थेरेपी होती है, इस थेरेपी के जरिए ज़्यादातर लोगों को आराम मिलता है, संतुष्ट होते हैं लोग?
0: जी मैम, अगर केस अर्ली होता है तो हर केस की स्टेज होती है, अगर आप जल्दी फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट ले लेंगे तो आपको जल्दी रिलैक्स हो जाएगा, जितना केस पुराना होता जाता है उतना टाइम लगता है, बाकी आराम तो मिलता है।
1: पहचाने कैसे? व्यक्ति जब किसी समस्या में आता है, पड़ता है, तो वो पहचान कैसे करे? क्योंकि वो तो दवाइयों पे निर्भर हो जाता है,
0: जी
1: तो
0: मैम,
1: उसे पहचान कैसे हो कि इसमें तो फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है?
0: हर एक बीमारी अपना लक्षण बताती है मैम,
1: जी
0: जैसे कि आप सर्वाइकल की बात करें तो आपके जो गर्दन के जॉइंट्स हैं वहाँ आपको पेन होना शुरू होगा, आपके कंधे भारी होंगे, सिर चक्कर आना शुरू हो जाता है इस तरीके से। अगर कमर की बात करें तो कमर में झुकने में दर्द होगा, कुछ वेट वगैरह लेने में, लेटने में भी दर्द होता है इवन उसमें आपको।
1: तो इसमें फिजियोथेरेपी की जरूरत
0: हाँ, इसमें
1: पड़ती
0: फिर
1: है?
0: थेरेपी की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ दिन तो आपको ऐसा फील होगा नहीं क्योंकि आप दवाई लेते हैं, फिर वहाँ दब जाती है।
1: क्या इसको हम एक तरह से मसाज भी कह सकते हैं क्या?
0: नो मैम, ये मसाज नहीं है,
1: वो
0: ये
1: अलग चीज है?
0: यस मैम, ये साइंस बेस्ड ट्रीटमेंट है। अगर आप फिजियोथेरेपी की बात करें, ये
1: जी
0: साइंस बेस्ड ओनली मसाज नहीं, इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं,
1: जी
0: फिजियोथेरेपी में कई सारे स्टेप्स होते हैं।
1: जी अच्छा, फिजियोथेरेपी केवल क्या बुजुर्गों के लिए होती है, या हमारे ये प्रश्न बनता है कि किस वर्ग के लिए ज्यादा जरूरी है, या हर वर्ग में इसकी जरूरत पड़ सकती है?
0: अगर आजकल की जनरेशन में देखा जाए तो मैम, नवजात बच्चे से लेकर 80 से 90 साल के बुजुर्गों के लिए, सभी वर्ग के लोगों के लिए, जैसे जो लोग लगातार कंप्यूटर बैठ के काम कर रहे हैं, जो खिलाड़ी होते हैं या घर में कामकाजी महिलाएं होती हैं, सभी के लिए फिजियोथेरेपी बहुत जरूरी है।
1: आपने नवजात शिशु की बात की, तो नवजात शिशु में आपके सामने कोई केस ऐसा आया होगा जिसमें जरूरत पड़ी होगी फिजियोथेरेपी की?
0: मैम एक्चुअल में अभी तो एक दो केस ही ऐसे आए हैं, जैसे बच्चे का ग्रोथ होने लगती है, वो उसका विकास थोड़ा डिले होता है। जैसे नवजात बच्चों में बात करें तो क्लब फुट होता है, क्लब फुट में जैसे पैर जो बच्चों के होते हैं उसका जो शेप होता है ना, वो प्रॉपर नहीं होता है,
1: जी
0: टेढ़े मेढ़े पैर होते हैं, तो उस केस को स्ट्रेचिंग देने से, उसकी स्ट्रेंथ कराने से वो ठीक हो जाते हैं।
1: अच्छा, उसमें भी फायदा होता है?
0: जी मैम, अगर जितना जल्दी होगा उतना जल्दी उसका फायदा भी होगा।
1: जैसे कोई दुर्घटना हुई, उसके बाद फ्रैक्चर हुआ और ऑपरेशन के बाद फिजियोथेरेपी की क्या भूमिका होती है?
0: जब भी कोई हमारी सर्जरी होती है या कोई, जैसे आप कह सकते हैं चोट लग गई,
1: जी
0: तो वहाँ प्लास्टर लग जाता है, प्लास्टर के बाद सारे जॉइंट्स जो होते हैं हमारे वो स्टिफ हो जाते हैं, मूवमेंट ब्लॉक हो जाते हैं। तो एक फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है कि पहले तो जॉइंट्स को खोलता है, सूजन कम करता है, फिर मसल्स वेस्ट ना हो, जैसे अगर हम ब्लॉक करके रखेंगे उसको तो मसल्स वेस्ट हो जाती हैं, तो वहां पे मसल्स को ताकत देकर फिर से शरीर की कार्य क्षमता को रेगुलर करता है।
1: फिजियोथेरेपी
0: जी
1: की
0: मैम,
1: जो प्रक्रिया है,
0: जी मैम,
1: इसमें समय कितना लगता है? कितनी सिटिंग लगभग होती होगी अगर ऑपरेशन के बाद इसकी जरूरत
0: ये
1: पड़ती है?
0: डिपेंड करता है मैम केस के ऊपर। वैसे अगर आप बात करें तो सर्जरी का केस है तो वहाँ आप कह सकते हैं 1 month अप्रोक्स लग जाता होगा।
1: अच्छा, बच्चों में भी तरह तरह की समस्याएं हो जाती हैं आजकल, जैसा कि देख रहे हैं।

0: कि बच्चे मोबाइल में बिजी रहते हैं, बच्चे को भी परेशानी हो रही है, उसके भी कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, और बहुत सारे बच्चों का तो केस ऐसा भी आ रहा है कि उनके घुटनों में बहुत समस्या होने लगी है। तो आपने क्या कारण समझा? फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है या नहीं? अगर पड़ती है तो कारण क्या हो सकते हैं इसके?
1: मैम, अगर बात करें आजकल की जो जनरेशन है, मोबाइल का अनलिमिटेड यूज़ करती है। पहली बात तो जब ज़रूरत हो तभी यूज करना चाहिए मोबाइल का। अगर आप मोबाइल का यूज भी कर रहे हैं तो गर्दन सीधी करके, पीठ भी सीधी होनी चाहिए और आंखों से दूर होना चाहिए, तभी आप मोबाइल का यूज करें। जो लोग कंप्यूटर पे बैठकर काम करते हैं उनको कमर की सपोर्ट वाली कुर्सी पर ही बैठकर काम करना चाहिए, और अपना एंगल, जैसे हमारे घुटनों का 90 डिग्री का एंगल होता है, वो सेट करके रखना चाहिए।
0: अगर देखिए, बच्चे तो ये सब बात समझते नहीं है और मानते भी नहीं है, अक्सर घुटनों में समस्या देखने को आ रही है, तो ऐसे में फिजियोथेरेपी के द्वारा क्या सही किया जा सकता है बच्चे की परेशानी को?
1: जी मैम, उसमें कुछ सेटिंग लगती हैं, आपको क्वाड्रिसेप्स मसल्स होती है घुटने की,
0: जी
1: उसको एक्टिव करना होता है। तो बच्चे आप खुद भी कर सकते हैं या एक फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा भी कर सकते हैं।
0: जी आपने शुरुआत में ही कहा कि जैसे खेल कूद के जो प्लेयर्स होते हैं
1: जी मैम,
0: उनके कोई इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, तो उसमें ये काफी हद तक कारगर है। हम जानना चाहेंगे कैसे?
1: जैसे प्लेयर खेलते हैं उस समय मूंछ आ गई पैर में, सपोज दैट मूंछ आ जाती है या मसल्स खिंच जाती हैं, तो अभी हमको फील्ड में वापस लेके जाना है, तो वहाँ पे हम जैसे कोल्ड थेरेपी, हीट थेरेपी हो गई, या स्ट्रेचिंग हो गई, या मैनिपुलेशन दे के खिलाड़ी को फिर से रेडी कर देते हैं हम खेलने के लिए।
0: जी मैं यही आपसे जानना चाह रही थी कि जैसे आपने अभी कोल्ड थेरेपी और अन्य थेरेपियों के बारे
1: जी
0: में
1: मैम,
0: बताया, थेरेपी में भी कौन-कौन से स्टेप हैं? क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास हम जाते हैं, बाद में जा पाते हैं, थोड़ा समय लग जाता है या दिमाग में आता ही नहीं है,
1: जी
0: तो
1: मैम,
0: आपके माध्यम से हमारे श्रोता साथी ये जान पाएंगे कि कोल्ड थेरेपी या और अन्य जो थेरेपी आपने बताई उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, जिससे वो प्राथमिक तौर पर इस चिकित्सा को घर पे कर सकें।
1: जैसे कोल्ड थेरेपी जब काम आती है मैम, आप कहीं जा रहे हो, गिर गए या चोट लग गई, नीले निशान पड़ गए, तो आप वहाँ पे कोल्ड थेरेपी दे सकते हैं। हीट थेरेपी होती है जॉइंट पे सूजन आ गई, अकारण सूजन आ गई, जैसे कि आपको घुटने में सूजन आ जाती है, तो वहाँ पे हम हीट थेरेपी देंगे। कोल्ड थेरेपी का ऐसा, आपको चोट लगी है तो वो चोट, कोल्ड थेरेपी हीट देने से जो स्वेलिंग है वो जल्दी रिकवर हो जाता है।
0: जी महिलाओं के बारे में आपने बताया कि गर्भावस्था के बाद में या फिर ऑपरेशन जब महिलाओं का
1: जी मैम,
0: होता है तो उसके बाद में जो उनकी समस्याएं होती हैं यूरिन से रिलेटेड समस्याएं, तो उसमें ये बहुत कारगर है। थोड़ा आप डिटेल में बताइए श्रोताओं को।
1: जी मैम, जैसे कि आप बात कर रही हैं कि फीमेल्स में पोस्टपार्टम डिलीवरी के सी सेक्शन या पोस्टपार्टम के लिए, तो आपकी जैसे आपने 9 मंथ की प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन, आपकी जो कोर मसल्स होती हैं वो बहुत लूज हो जाती है, उसी से हमारी स्पाइन का कर्व भी चेंज हो जाता है, तो फीमेल्स को मांसपेशी ढीले होने के कारण से लीकेज की प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत
0: जी
1: सी औरतों को खांसते समय या हंसते समय यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम होती है, तो उसमें हम मशीनों द्वारा भी और एक्सरसाइज जैसे कि कीगल एक्सरसाइज होती है उसके थ्रू हम जो फीमेल्स होती हैं उनकी रिकवरी कराते हैं।
0: जी एक्सरसाइज के बारे में तो आप बताते ही हैं और साथ में थेरेपी भी आप देते हैं, क्या विशेषकर कुछ योग वगैरह भी बताते हैं उनको? प्राणायाम, योग, ऐसा कुछ बताते हैं आप?
1: जी मैम, योगा में कुछ कुछ है, जैसे आपको मैंने बताया भुजंगासन वगैरह ले लिया आपने, या फिर आपने ब्रीजिंग कर ली, आपको कमर उठानी होती है, कमर उठाने के 5 या 10 सेकंड आपको होल्ड करना होता है, फिर नीचे करना होता है, इससे हमारी पैल्विक फ्लोर की मसल्स टाइट हो जाती हैं, कमर दर्द में भी रिलीफ मिलता है, और आपका जो यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम है वो भी कम होती है।
0: 40+ होते ही जब महिलाओं को पेरीमेनोपॉज की समस्या शुरू हो जाती है, उसके बाद वो आगे स्टेप में बढ़ती है मेनोपॉज की तरफ, तो बहुत समस्याओं से जूझती है महिला। उसको नींद ना आना, चिड़चिड़ापन, पूरे शरीर में दर्द, मसल्स पेन, हड्डियों में दर्द, तो ऐसे में क्या फिजियोथेरेपी में कोई रास्ता है या फिर आप एक्सरसाइज या योगा की सलाह देते हैं?
1: मैम, एक्सरसाइज या योगा ज़्यादा करना चाहिए। योगा मेडिटेशन से हमारे माइंड को रिलैक्स होता है, और बाकी आप अपनी जितनी स्ट्रेंथ रखेंगे बॉडी की उतनी बॉडी रिलैक्स रहेगी।
0: जी सही बैठने चलने और जो काम की आदतें हैं
1: जी मैम,
0: उसके बारे में आप क्या श्रोताओं से कहना चाहेंगी?
1: अक्सर आपने देखा होगा कि लोग आजकल झुककर चलते हैं, तो हमें अपना सिर स्ट्रेट करके, कंधे पीछे करके, और अपना जो पंजा है उसे बाद में रखना है, एड़ी पहले रखनी है, सीधे चलना होता है। अगर हम कुर्सी पे ही बैठे हैं, आजकल डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाने का चलन है, या फिर आजकल धरती पर बैठना है तो लोगों का बहुत ही कम।

0: हो गया है, कुर्सी ज़्यादा यूज करते हैं, तो कम से कम घुटनों का 90 डिग्री का एंगल रहना चाहिए, पीठ आपकी सीधी रहनी चाहिए। और आदतों में जैसे बात करें तो बराबर हमें उठकर 1-2 घंटे में अपनी सीट चेंज करनी चाहिए और अच्छे से खाना पीना बराबर लेना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, फिजियोथेरेपी को लेके लोगों में बहुत सारी गलत धारणाएं हैं,
0: जी मैम,
1: इसके बारे में क्या आप श्रोताओं से कहना चाहेंगी?
0: फिजियोथेरेपी को लोग समझते हैं मैम जैसे कि ये मालिश है, या आप कह सकते हैं कि हम लोगों को मूंछ वाला समझा जाता है कि मूंछ निकालने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिजियोथेरेपी हमारी शरीर की कार्य क्षमता को बढ़ाता है एक्सरसाइज करा के, हम एक्सरसाइज कराते हैं, या ऐसा आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की जरूरत जहाँ होती है वहाँ उसको यूज करके शरीर की कार्य क्षमता को बेहतर बनाया जा सकता है इससे।
1: जी डॉक्टर साहब, किस स्थिति में व्यक्ति को तुरंत फिजियोथेरेपिस्ट से संपर्क करना चाहिए?
0: जैसे आपको कहीं चोट लग गई या गिर गए आप, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको आराम नहीं मिल रहा है,
1: जी
0: पहले 3 दिन आप देखिए रेस्ट करके, अगर आपको आराम नहीं मिल रहा है या पैरों में हाथों में झुंझुनापन आ रहा है, सुन्नपन आ रहा है,
1: जी
0: या दर्द में बिल्कुल आराम नहीं मिल रहा है, तो आपको एक बार फिजियोथेरेपिस्ट से संपर्क करना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने फिजियोथेरेपी के बारे में बहुत सारी बातें बताई जिससे हमारे श्रोता साथियों को अवश्य जानकारी मिली होगी और संतुष्ट भी हुए होंगे। चलते चलते आप हमारे श्रोता साथियों से क्या कहना चाहेंगी, क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगी?
0: फिजियोथेरेपी कोई दवा नहीं, फिजियोथेरेपी दवाई नहीं है, ये हमारे शरीर को मजबूत करती है। तो हमें प्रतिदिन एक्सरसाइज वगैरह जरूर करना चाहिए जिससे हमारा शरीर निरंतर चलता रहे, शरीर हमारा दोस्त है, ये जरूर करनी चाहिए सभी को प्रतिदिन।
1: जी तो साथियों, फिजियोथेरेपी केवल एक उपचार नहीं है बल्कि बेहतर जीवन की ओर बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। जो लोग इस गलत धारणा को बनाए हुए हैं कि फिजियोथेरेपी एक मसाज है, मालिश है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं समझे। सही समय पे सही डिसीजन लेकर के यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, शरीर में कहीं भी दर्द है, किसी भी मसल्स पेन की परेशानी है, नसों से संबंधित कोई परेशानी है, हड्डियों से संबंधित कोई परेशानी है, तो आप देर ना करते हुए फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लें, उपचार कराएं, क्योंकि जीवन की ओर बढ़ाया हुआ आपका प्रत्येक कदम महत्वपूर्ण है। सही समय पे सही सलाह और नियमित अभ्यास से हम अनेक शारीरिक समस्याओं से बच सकते हैं। इसी बात के साथ, इसी
0: कुछ भी नहीं
1: संदेश के
0: जाएगा, टिप्स भी
1: साथ
0: नहीं।
1: कार्यक्रम को देते हैं यही विराम। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी नमस्कार मैम।
2: अभी आपने सुनी भेंट वार्ता, स्वास्थ्य के लिए फिजियोथेरेपी की भूमिका। जानकारी दे रही थी डॉक्टर पूनम शर्मा और इनसे बातचीत कर रही थी उषा पांडे। चलते चलते एक टिप्स मैं आपको देना चाहूंगी, और इस समय खीरे तो खूब चल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, एक खीरे का गाढ़ा जूस बनाकर उसमें 3 छोटे चम्मच चीनी और 1 चम्मच दही मिलाकर उसमें थोड़ी देर चेहरे की मसाज करें। फिर इसे सूखने के बाद 15 मिनट बाद इस फेस पैक को खींच कर निकाल लें या धीरे धीरे से, और उस पर थोड़ा सा कच्चा दूध हो आपके पास तो उसके बाद थोड़ा सा कच्चा दूध अपने चेहरे पे मसाज करें और नॉर्मल पानी से अपने चेहरे को धो लें। फिर देखिए आपके चेहरे की चमक किस तरह से बढ़ती है। हफ्ते में ये 2 बार करें इस चीज़ को। तो बहनों, अब हमारा जाने का समय हो गया है, घड़ी ने इशारा कर दिया है, तो चलते चलते इतना ही कहूँगी, परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए, सब कुछ अपने आप ही बदल जाएगा। तो इसी के साथ मीनू अग्रवाल को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: मुन्ना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है, नो ट्रैफिक नो टेंशन,
1: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
2: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। दोपहर के 1:45 हो चुके हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वनिता लोग। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत किया मीनू अग्रवाल ने।
1: जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट।

गदर टू, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना नीति मोहन मिठून, विशाल और शहनाज की आवाज़ों में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, पूरन चंद बडाली और साथियों की आवाज़ में। राजशेखर के इस गीत को संगीतबद्ध किया है कृष्णा ने, फिल्म का नाम है तनु वेड्स मनु।

0: पूरण चंद वडाली, प्यारे लाल वडाली और साथियों के स्वर में आपने सुना तनु वेड्स मनु फिल्म का ये गीत। गीत को लिखा था राजशेखर ने, संगीत था कृष्णा का। और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। दोपहर के 2 बजने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार और उसके बाद हिंदी में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
2: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द मिडडे न्यूज। The headlines. India lodges strong protest against Pakistan over Kashmir issue at UNSC, accuses Islamabad of

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है।

0: पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सहाध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सहाध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। विश्वसनीय स्रोतों के जरिए स्थानीय घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। लोगों से दूतावास को अपने बारे में जानकारी देने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है +98912810915। दूसरा नंबर है +98912810909। तीसरा नंबर +98912810902। और चौथा नंबर है +98993217935। इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है।
1: 4 महीने से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। श्री रूबियो कल देर रात अबू धाबी पहुंचे। उनका संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अधिकारियों से मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के ढांचे के बारे में जानकारी देंगे। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। सप्ताहांत में स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सकारात्मक रही, हालांकि दोनों पक्षों ने बैठक के बारे में अलग अलग राय व्यक्त की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3,000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के

0: 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कर्नाटक में उनके परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज नई दिल्ली में कहा कि वर्ष 2024 में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के लिए ट्रस्ट को लगभग 5 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की थी। श्री भंडारी ने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद ट्रस्ट को लगभग 100 करोड़ रूपये की अनुमानित कीमत की भूमि आवंटित की गई। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अश्मी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती हैं उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आरके आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक जिसके अंदर 9 स्टेशंस हैं।
0: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ताराताला के पास निर्माणाधीन गोदाम के छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती

0: जिले के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में सभी संबंधित विभाग हाई अलर्ट पर हैं।
1: अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद असम में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संभावित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके परिणाम स्वरूप असम में धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ और सोनितपुर सहित निचले क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर और प्रवाह की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अगले एक से दो दिनों में बाढ़ का पानी और आगे के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। SDRF, NDRF और अन्य इमरजेंसी रेस्पॉन्स दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। निचले तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश पालन करने, जलमग्न क्षेत्रों से दूर रहने तथा छोटी नावों से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम वाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदिम शिलेमा जानू टीम की कमान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेवारी संभालेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको में खेले गए ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। डैनियल मनोज के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से कोलंबिया ने लगातार दूसरी जीत हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 शानदार गोल की बदौलत पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान पर 5-0 से जीत दर्ज की। रोनाल्डो अब 6 अलग अलग विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 908 अंक के उछाल के साथ 77,109 पर, जबकि निफ्टी 241 अंक बढ़कर 24,065 पर कारोबार कर रहा था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित ऐतिहासिक हेमिस मठ में आज उत्साह और श्रद्धा के साथ हेमिस उत्सव की शुरुआत हुई। 2 दिन के उत्सव में देश विदेश के हजारों श्रद्धालु, पर्यटक, संस्कृति प्रेमी और बौद्ध विद्वान शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला हेमिस उत्सव लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में से एक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं।
3: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
2: प्रस्तुत है NCERT और CIET के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जय जोहार, जय हिंद। श्रोताओं, आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं, शांत रहना कमजोरी नहीं, ये समझदारी की निशानी है, क्योंकि हर जवाब शब्दों से ही नहीं लेकिन व्यवहार से भी दिया जाता है। इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से हमारा आभार। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, महताब जाटव, मिराज जाटव और अल्ताफ जाटव। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू। जेल रोड कानपुर से सरफुद्दीन फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम कुटरिया। भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल। तो श्रोताओं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि हम हर बार कहते हैं, इस बार भी कहेंगे कि जुड़े रहिए आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। और आइए अब चलते हैं आज की श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जहां तक गुफाओं की बात है, लगभग सभी अजंता और एलोरा की गुफाओं से परिचित हैं, लेकिन उमंग कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य है उन जानकारियों को उपलब्ध कराना जो लोक संज्ञान में कम है लेकिन पुरातत्व और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जी, तो श्रोताओं, कल हमने बात की थी भीम बैठका की गुफाओं के बारे में। आज हम बात करेंगे कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। कुटुम्बसर की गुफाओं को भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफाओं में गिना जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ स्थित हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं स्थित हैं छत्तीसगढ़ राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर। ये गुफाएं भूमि से लगभग 35 से 40 मीटर नीचे हैं। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं, लेकिन श्रोताओं, जब भी हम ऐसे स्थानों की बात करते हैं तो ये जिज्ञासा जरूर मन में आती है कि इनकी खोज कैसे हुई। तो आपको बता दें कि कुटुम्बसर गुफा का जनजातीय नाम गोपनसर था। सन 1951 की बात है, कुछ स्थानीय चरवाहे एक साही का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां ढेर सारी झाड़ियां थीं, पत्थर भी थे। जब उन्होंने झाड़ियों को थोड़ा हटाया तो क्या देखते हैं कि वहां एक बहुत बड़ी गुफा का प्रवेश द्वार है। जी, चरवाहे उस गुफा की बनावट देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वहां चट्टानों के आकार विचित्र थे। वे अद्भुत आकार के थे, जैसे किसी ने उन्हें तराश कर बनाया हो। तो आइए जानते हैं कि उन पत्थरों को तराशने वाला कौन था। श्रोताओं, यही तो खास और बड़ी अनोखी बात है कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। जब विशेषज्ञ यहाँ पर आए तो उन्होंने पता लगाया कि चट्टानों को तराशने वाली प्रकृति ही थी। यहाँ पानी हमेशा टपकता रहता है। पानी के लाखों वर्षों से टपकते रहने के कारण इन चट्टानों को आकार मिला। यहाँ की चट्टाने चूना पत्थर से बनी है। श्रोताओं, इन गुफाओं में कुछ आकृतियां तो ऐसी हैं जो किसी पशु, मुख्य रूप से हाथी, बाघ, विशाल मानव आकृति और शिवलिंग की तरह भी दिखाई देती हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, कैसे इन आकृतियों को प्रकृति ने लाखों वर्षों से पानी की बूंदें टपकाकर बनाया। अद्भुत है ना? जी, किसी ने लिखा है कि यदि प्रकृति को शिल्पकार के रूप में देखना है तो कुटुम्बसर की गुफाओं में जरूर जाइए। इन गुफाओं के ऊपर भूमि में कई भूमिगत जल के झरने हैं जहां से निरंतर पानी की बूंदें गिरती रहती हैं। वैज्ञानिकों ने इन गुफाओं में अनेक दुर्लभ जीवों के जीवाश्म भी ढूंढे हैं। एक बात और आपको बता दें श्रोताओं, कि इन गुफाओं के अंदर हमेशा घुप अंधेरा रहता है। वहां जाने के लिए पर्यटक गाइड्स और शक्तिशाली बैटरियों वाले लैंप्स लेकर ही जाते हैं। अंदर पानी बहता रहता है, लेकिन एक बड़ी रोचक बात है इन गुफाओं की। आपको बताएं क्या है वो? वो ये कि यहां के पानी में जो मछलियां पाई जाती हैं वे अंधी होती हैं, देख नहीं पाती। यहाँ के अन्य जलज प्राणी भी देख नहीं सकते। लेकिन एक सवाल है श्रोताओं कि भला ऐसा क्यों है? ना ये बड़ी अजीब बात। जी हाँ श्रोताओं, वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ हमेशा अंधकार रहता है। इससे संभवतः मछलियों और जलज जीवों की आंखें तो हैं, लेकिन उनमें देखने की क्षमता का विकास नहीं हुआ, या फिर धीरे धीरे देखने की क्षमता समाप्त हो गई। एक सिद्धांत ये भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अंधकार में रहने के कारण उनकी आंखें पूर्ण विकसित नहीं हुई, लेकिन दूसरी इंद्रियां अधिक विकसित हो गईं। मछलियां पानी में कंपन, स्पर्श और रासायनिक संकेतों जैसे गंध इत्यादि के माध्यम से रास्ता और भोजन तुरंत पहचान लेती।

0: सकती हैं। इसलिए श्रोताओं, कुटुंब स्तर की मछलियों को दुनिया भर में ब्लाइंड केव फिशेस के नाम से भी जाना जाता है। और हाँ, इन गुफाओं की एक और बड़ी खास बात है, यहाँ के कुछ भागों में यदि फुसफुसा करके भी कुछ कहा जाए तो बड़ी दूर तक ये आवाज सुनाई पड़ती है। श्रोताओं, यहाँ पर कार्य करता है इको या गूंज का सिद्धांत। श्रोताओं, ये कहा जा सकता है कि ये गुफाएं वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ के जंतु विकासवाद और भूविज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी भारत की एक और रहस्यपूर्ण और अनोखी गुफा कुटुंब सर के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, कुटुंब सर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, कुटुंब सर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? आप हमें हमारे IVRS नंबर 8804405559 पर या ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर इस प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज के हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम। तो सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम लीव्स ऑन द ट्री आर फॉलिंग। श्रोताओं, अंग्रेजी का ये सुंदर गीत पतझड़ और वसंत के मौसमों के बीच की प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है और विशेषकर संदेश देता है कि हमें प्रकृति का अवलोकन करके उनके सौंदर्य की प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा करके हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। द लीव्स ऑन द ट्रीज।
1: चिल्ड्रन, हैव यू एवर सीन द लीव्स ग्रोइंग इन द ट्री? द न्यू टेंडर लीव्स स्पर्टिंग आउट फ्रॉम द ब्रांचेस लाइक द फ्लावर्स ब्लॉसमिंग? Yes, we want to see them as the flowers blossom and leaves grow. But we never see them growing closely. Here is a song which makes you feel that you notice the growing of leaves and blossoming of flowers. Come on, let's sing the song to know and notice. But before we sing it, let's recite the song. Repeat after me, all right?
2: Yes!
1: The leaves on the trees are turning green, turning green, turning green.
2: The leaves on the trees are turning green, turning green, turning green.
1: The leaves on the trees are turning green, grow, grow, grow.
2: The leaves on the trees are turning green, grow, grow, grow.
1: Very nice. The flowers on the trees are beautiful, beautiful, beautiful.
2: The flowers on the trees are beautiful, beautiful, beautiful.
1: The flowers on the trees are beautiful, busy, busy bees.
2: The flowers on the trees are beautiful, busy, busy bees.
1: The leaves on the trees are falling down, falling down, falling down.
2: The leaves on the trees are falling down, falling down, falling down.
1: The leaves on the trees are falling down, yellow, red and brown.
2: The leaves on the trees are falling down, yellow, red and brown.
1: Yes, and now the leaves on the trees have fallen down, fallen down, fallen down.

0: इस खूबसूरत गीत के बाद आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्सकपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
2: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को शत प्रतिशत चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
3: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
2: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
3: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
2: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
1: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना।
2: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
1: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी धन्य जन्मो जगती।

0: तले दासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
1: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
2: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
1: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
2: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
1: मुंबई से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
3: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।
1: रांची आकर वे कुछ समय के लिए सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की 2 प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
3: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
4: आइए आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
2: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
4: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
2: जी मैं प्रस्तुत हूं।
4: तो फादर, मैं चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के 2 पदों की इसी समय सप्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
2: जी अवश्य।
1: फादर कामिल बुलके ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी। इस यूरोपीय श्वेत वर्णीय ईसाई पुरोहित को डॉक्टर वर्मा ने प्रारंभ में नौसिखिया समझा था, लेकिन जब उन्होंने व्याख्या पढ़ी तो
4: ओह अद्भुत, तो फादर,

0: अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
1: धन्यवाद डॉक्टर धीरेन्द्र, ये मेरा सौभाग्य होगा। जी।
2: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुल्के ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
3: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुल्के चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
2: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुल्के ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
1: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति महोदय?
4: आइए आइए फादर बुल्के। मुझे बताया गया है कि रामकथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
1: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
4: जी जी,
1: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
4: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
1: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही रामकथा की उत्पत्ति और विकास है।
4: जी,
1: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं रामकथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
4: जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर बुल्के।
1: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूं।
4: जी,
2: तो फिर क्या था, विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की सभा बुलाई गई और लंबे विचार विमर्श के बाद नियमावली में विधिवत परिवर्तन किया गया। फादर का ये अनुरोध मान लिया गया। भारत के शोध परिदृश्य में ये एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके द्वारा देवनागरी में शोध प्रबंध लिखने का रास्ता सबके लिए साफ हो गया और आदिवासी भाषाओं में भी पीएचडी स्तर तक पढ़ाई होनी शुरू हो गई।
3: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है।
1: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं है, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है, बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
2: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
3: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कम्बन द्वारा तमिल में रचित कम्ब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुल्के को जानने लगी।
2: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुल्के का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
1: सब हैं नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
2: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के

0: सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
1: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुल्के ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
0: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुल्के बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। उन्होंने लिखा था,
2: जब मैं अपने जीवन पर विचार करता हूं तो मुझे लगता है ईसा मसीह, हिंदी और तुलसीदास ये वास्तव में मेरी आध्यात्मिक साधना के 3 प्रमुख घटक हैं और मेरे लिए इन 3 तत्वों में कोई विरोध नहीं है बल्कि गहरा संबंध है। मैं ईसा मसीह का परम भक्त हूं, हिंदी मेरा अनुराग है और गोस्वामी तुलसीदास मेरी प्रेरणा।
0: कामिल बुल्के की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। जब लोग उन्हें फादर कहते तो वे किंचित संकोच से बोल उठते,
2: फादर अंग्रेजी शब्द है, यदि मुझे कामिल बाबा कहो तो सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
0: 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहुभाषाविद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु शैया पर मात्र 2 पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।
1: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
0: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
3: डॉक्टर कामिल बुल्के, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT और CIET के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।
6: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
7: आराम से मैडम।
6: क्या
7: आराम से पहुँचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
8: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
5: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं। अब हमारी ये सभा यहीं पर समाप्त होती है। संध्या 5:30 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर ही आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 5:30 हो चुके हैं। हमारी सांध्यकालीन सभा का सफर अब इस मीटर पर आरंभ होता है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी।

युववाणी कार्यक्रम सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं एक बार फिर से हाजिर हैं युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी लेकर। आज इस कार्यक्रम में आज की बात के अंतर्गत सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला कूटनीति दिवस के विषय में। या दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला कूटनीति दिवस प्रतिवर्ष 24 जून यानी आज ही के दिन मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचान देना तथा उनके योगदान को सम्मानित करना है। इस दिवस की स्थापना यूनाइटेड नेशन द्वारा वर्ष 2022 में की गई थी। महिलाओं ने विश्व शांति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, संघर्ष समाधान और वैश्विक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, फिर भी कूटनीति के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी लंबे समय तक सीमित रही। यह दिवस महिलाओं को नेतृत्व की भूमिकाओं और आगे बढ़ने तथा निर्णय लेने की प्रतिक्रियाओं में उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करने का संदेश देता है। आज विश्व के अनेक देशों में महिलाएं राजदूत, विदेश मंत्री, वार्ताकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की प्रमुख भूमिका के रूप में कार्य कर रही हैं। उनकी भागीदारी न केवल कूटनीति प्रक्रियाएं साथ ही साथ अधिक प्रभावी बनाती हैं, बल्कि शांति और समावेशी विकास को भी बढ़ावा मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला

कूटनीति दिवस हमें लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और वैश्विक शांति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने की प्रेरणा देता है। साथ ही साथ हमें यह सुनिश्चित भी करना चाहिए कि महिलाओं को हर क्षेत्र में समान अवसर और सम्मान प्राप्त हो।

और अब बात करते हैं पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जयंती के विषय में। जी हाँ दोस्तों, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान गायक, संगीतज्ञ, शिक्षक और संगीत के क्षेत्र में एक युग पुरुष थे। उनका जन्म 24 जून 1897 को गुजरात के भरूचू जिले में हुआ था। बचपन से ही उन्हें संगीत में विशेष रुचि थी। उन्होंने प्रसिद्ध संगीताचार्य पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर से संगीत की शिक्षा प्राप्त की और आगे चलकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रमुख स्तंभ बने। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर अपनी भावपूर्ण, ओजस्वी और अद्वितीय गायकी के लिए प्रसिद्ध थे। वे केवल एक महान गायक ही नहीं बल्कि एक कुशल शिक्षक और लेखक भी थे। जी दोस्तों, उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत एवं ललित कला के संकाय में प्रथम डीन रहे और अनेक विद्यार्थियों को संगीत की शिक्षा प्रदान की। उन्होंने देश विदेश में भारतीय संगीत की प्रतिष्ठा बढ़ाई, साथ ही साथ उनकी गायकी में राष्ट्रभक्ति, आध्यात्म और भारतीय संस्कृति की झलक स्पष्ट दिखाई देती थी। संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर की जयंती हमें भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध परंपरा को सहेजने और आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत समारोह और श्रद्धांजलि समारोह का भी आयोजन किया जाता है। हम सभी को उनके आदर्शों और संगीत साधना से प्रेरणा लेकर भारतीय संगीत के संरक्षण में अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि संगीत आत्मा की भाषा है जो मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जाती है। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। और इसी क्रम में अब बात करते हैं वीवी गिरी पुण्यतिथि के विषय में। जी हाँ दोस्तों, भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी का जन्म 10 अगस्त 1894 को वर्तमान ब्रह्मपुर में हुआ था। वे महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रख्यात श्रमिक नेता और कुशल राजनीतिक थे। श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए किए गए उनके अनेक कार्यों के कारण उन्हें विशेष रूप से याद किया जाता है। वीवी गिरी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और देश की आजादी के लिए संघर्ष भी किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वे श्रम मंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति तथा बाद में भारत के चौथे राष्ट्रपति बने। उनका राष्ट्रपति कार्यकाल 1969 से 1974 तक रहा। वीवी गिरी ने सदैव श्रमिक वर्ग के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने श्रमिकों और उद्योगों के बीच सहयोग तथा संवाद को बढ़ावा देने पर बल दिया। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें वर्ष 1975 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। वीवी गिरी पुण्यतिथि हमें ये याद दिलाती है कि वे सच्चे राष्ट्रभक्त, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठा और श्रमिकों के सम्मान के प्रति हमेशा प्रेरणादायी स्रोत हैं। इस अवसर पर हम उनके आदर्शों को अपनाने तथा देश की प्रगति में योगदान देने का संकल्प ले सकते हैं। राष्ट्र की प्रगति क्योंकि तभी संभव है जब श्रमिकों का सम्मान और कल्याण सुनिश्चित हो।

0: दोस्तों, कार्यक्रम आगे और भी है, लेकिन लेते हैं व्यावसायिक अंतराल।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
2: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
3: आराम से मैडम।
2: क्या
3: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
4: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: दोस्तों, कार्यक्रम में आगे आपको सुनवाते हैं व्यक्तिगत विकास वार्ता के अंतर्गत युवा कलाकार अरुण रावल से चंचल सारस्वत की बातचीत।
5: दोस्तों, आज के युववाणी कार्यक्रम में हमारे साथ हैं ब्रज के युवा कलाकार अरुण रावल, जो राज्य स्तर पर ब्रज लोकगीतों में अपना गायन प्रस्तुत कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम स्टूडियो में इनका स्वागत करते हैं।
6: नमस्कार।
5: दोस्तों, हम सबसे पहले इनसे ये जानते हैं कि इनकी सिंगिंग में रुचि कैसे हुई, कब आपने ये सोचा कि मुझे सिंगिंग में जाना चाहिए, इस क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना चाहिए।
6: मैंने ये सोचा था कि हमारे ब्रज में ये लोकगीत परंपरा है, ये ख़त्म होती ही दिख रही है। मैं अपने युवा कलाकारों को ये कहना चाहता हूँ कि हमारे ब्रज की जो सांस्कृतिक है, इसको कैसे बचाए रखना है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं युवा कलाकारों को एक ये प्रेरणा दूँ कि मैं आगे बढ़ करके इसमें लोकगीतों में, सिंगिंग में मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँ।
5: तो वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस से इंसान बहुत बेहतर बनता है पहले से, तो आप इसको कितना टाइम देते हो? जैसे रियाज वगैरह आप करते होंगे तो कितना टाइम देते हो आप इसको?
6: सुबह में 1 घंटा देता हूँ, शाम को भी 1 घंटा देता हूँ।
5: ओके, तो दिन में 2 बार आप रियाज करते हो। अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगी कि आज अगर सिंगिंग के क्षेत्र में हम देखें तो मोस्टली लोग ना बॉलीवुड की तरफ भागते हैं, तो आपने लोकगीतों में जाना है, ये ही क्यों चूज किया?
6: आजकल के हमारे जो युवा कलाकार हैं वो अपनी कहीं ना कहीं संस्कृति से भटके हुए हैं। मैं चाहता हूं कि वो अपनी संस्कृति को बचाएं, जिससे कि हमारी संस्कृति बरकरार बनी रहे।
5: तो अरुण जी, एक बात बताइए, आपकी फैमिली में से भी कोई है इस क्षेत्र में या?

0: उनको देख के आपको ये मोटिवेट हुए आप, या फिर अपना ही खुद स्टार्ट किया
1: नहीं,
0: था?
1: मेरे फैमिली में तो खैर कोई नहीं है। कहते हैं कि कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो विरासत में मिलती हैं, कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो ठाकुर जी से डायरेक्ट मिलती हैं। तो ये ठाकुर जी की अपार कृपा रही है मेरे ऊपर, जो मुझे ठाकुर जी ने मुझे डायरेक्ट दी ये चीज़।
0: नहीं तो किसी को देखकर आप मोटिवेट हुए, या फिर खुद ही सोचा था कि
1: ये
0: मुझे इस
1: मैंने
0: क्षेत्र में
1: खुद
0: ही
1: ही
0: जाना?
1: सोचा था कि ये मैं इस
0: अच्छा,
1: क्षेत्र में जाऊंगा मैं।
0: ओके। तो ये आपने संगीत की शिक्षा कहाँ से ली, और किस उम्र से आपने शुरुआत की थी ये गाने की?
1: ये मैंने 18 की उम्र से मैंने स्टार्टिंग की थी। और हमारे गुरुजी हैं प्रेमी जी महाराज, जो कि भजन रचयिता हैं, वो हमको अच्छे अच्छे भजन लिख के देते हैं, लोकगीतों के भी, होलियों के भी। तो वो हमको भजन लिख के देते हैं और मैं उनको प्रस्तुत करता हूँ।
0: तो आपको फैमिली की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलता है इसमें, क्योंकि इस क्षेत्र में जाने के लिए, मतलब अगर हम बात करें आज के टाइम में, तो जब बच्चा कहता है कि मुझे पढ़ाई में आगे बढ़ना है, तो पूरी फैमिली सपोर्ट करती है। मैंने ये चीज़ सुनी है, इसीलिए मैं आपसे
1: जी जी
0: पूछ रही
1: जी
0: हूँ।
1: बिल्कुल बात
0: लेकिन
1: सही है
0: ऐसे जब
1: आपकी।
0: हम टैलेंट के थ्रू कहीं आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो फैमिली से उतना सपोर्ट मिलता नहीं है। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ आपको फेस करना पड़ा?
1: नहीं देखो, कहते हैं कि मुसीबतें तो आती हैं। जब वो मीरा, जब वो अपने सतपथ के मार्ग पर चली थी, तो मीरा को भी कॉपरेट नहीं किया था लोगों ने, उसको भी बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन मेरे घर वाले भी मुझे नहीं कॉपरेट किया था कि इस संगीत के क्षेत्र में क्या करेगा जा करके, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं। लेकिन मैं अपने बल पे ही मैं आगे बढ़ता रहा और ठाकुर जी मुझे प्रेरणा देते रहे और मैंने आज ये मुकाम हासिल किया।
0: तो आपको कभी एक बार भी ये नहीं लगा कि फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, पता नहीं आगे मैं बढ़ पाऊंगा या नहीं? मतलब एक बार वो लगता है ना कि यार नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा कभी फील किया
1: नहीं,
0: आपने?
1: ऐसा कुछ भी फील नहीं किया। मुझे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं ये कर सकता हूँ और करके भी दिखाया है।
0: बिल्कुल। तो युवाओं को एक मैसेज तो यही मिलता है कि हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अकेले हैं तो कुछ कर नहीं सकते, या फैमिली सपोर्ट का हमें बहाना लेके ना अपने आप को ये नहीं कहना चाहिए कि फैमिली सपोर्ट नहीं था इसलिए हम कर नहीं पाए। तो आपसे मैं एक बात और पूछना चाहूंगी कि इस संगीत के क्षेत्र में कौन कौन सी उपलब्धियां आपने अब तक हासिल की हुई हैं?
1: संगीत के क्षेत्र में मैंने राज्य युवा महोत्सव हुआ था, जो कि वो लखनऊ में हुआ था। जिला लेवल में मैं प्रथम रहा था और आगरा मंडल में मैं प्रथम रहा था, जोन लेवल में मैं प्रथम रहा था, जिससे कि मैंने उसमें एक ब्रज का मैंने गीत गाया था।
0: किस चीज़ की प्रतियोगिताएं थी वो, मतलब
1: वो ब्रज
0: लोकगीतों
1: लोकगीतों
0: की?
1: की,
0: ओके।
1: ब्रज लोकगीतों की, तो मैंने ब्रज का एक भजन गाया था मैंने।

0: बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने ये प्रेजेंट किया, तो आप हमारे युवाओं से वैसे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जैसा आपने बोला कि युवा हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, उन युवाओं से आप क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं उन युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि अपने धर्म को पहचाने, अपनी संस्कृति को पहचाने, दूसरी धर्म को अपना धर्म ना अपनाएं, जिससे कि अपनी आजकल के युवा कलाकारों में ये गलतियां हैं कि वो अपनी संस्कृति को भूलते हुए वो दूसरी चीज़ों में प्रेरित होते जा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अपनी संस्कृति बचाए रखें और अपने ब्रज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने ब्रज के बारे में बोलें।
0: अरुण जी, आपसे एक बात और पूछनी थी। जैसे आप इस क्षेत्र में काफी समय से हैं, तो जब आप इस क्षेत्र में आए तो आपका जो जीविकोपार्जन है वो इसके थ्रू सही चल जाता है?
1: हाँ, इसके थ्रू मेरी जो जीवन याचिका है वो सही चलती है। काफ़ी तरह के प्रोग्राम करता हूँ मैं, इसकी जागरण है, भजन संध्या है, और भागवत में भी मैं रहता हूँ मैं, जैसे कि मैं ऑर्गन प्ले करता हूँ और भजन भी गाता हूँ, तो इसमें अच्छा खासा मुझे पड़ जाता है।
0: तो
1: जिस
0: ये जो भजन आप गाते हैं वो आप खुद ही लिखते हैं या फिर कोई और?
1: नहीं, ये हमारे गुरुजी हैं जो प्रेमी जी महाराज हैं, वो हमको लिख लिख करके ब्रज लोक धुनों पर अच्छे अच्छे भजन बनाते हैं और मैं उनको प्रस्तुत करता हूँ मैं।
0: अच्छा, तो अभी आपने आगे का क्या सोचा है? जैसे आपने बताया कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पर आप काफी सारी उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं, तो अभी आगे क्या तैयारी है आपकी?
1: मुझे लखनऊ से अग्रिम बधाई मिली है कि आप हार ना माने, कहते हैं कि हार के आगे जीत है, तो
0: बिल्कुल,
1: आप नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि मैं राष्ट्रीय लेवल पर पहुंचूंगा, राष्ट्रीय लेवल पर भी मुझे प्रथम पुरस्कार मिलेगा, ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी।
0: बिल्कुल, हमारी तरफ से भी पूरी पूरी शुभकामनाएं हैं आपको इसके लिए। तो अरुण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए।
2: दोस्तों, अभी तक आप सुन रहे थे व्यक्तिगत विकास वार्ता के अंतर्गत युवा कलाकार अरुण रावल से चंचल सारस्वत की बातचीत।
3: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
5: आराम से मैडम।
4: क्या?
5: आराम से पहुंचेंगे मैडम, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
6: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
2: और कार्यक्रम में अब आपको लिए चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुनवाते हैं ये गीत।

और अब चलते चलते सुन लेते हैं ये गीत। गीत को स्वर दिया है शफाकत अमानत अली ने फिल्म राज 3 से।

तो दोस्तों, अब चलते चलते बस युवाओं के लिए यही कहना चाहेंगे, सपने बड़े देखिए, मेहनत निरंतर कीजिए और अपने संस्कारों को कभी मत भूलिए। यही एक सफल और आदर्श युवा की पहचान है। इसी संदेश के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 6 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
2: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
1: ईरान के तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार के बावजूद भारतीय नागरिकों को जारी नए परामर्श में अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने को कहा है। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जैमिसिन ग्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत त्रिपुरा में 96 सड़क परियोजनाओं के निर्माण के लिए 211 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इस परियोजना से राज्य में 160 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण

0: होगा। इन परियोजनाओं से राज्य की 96 बस्तियों को पहली बार हर मौसम में सुगम सड़क संपर्क प्राप्त होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया है कि ये कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की जा रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिक सुरक्षित, सुगम और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना है। प्रवर्तन निदेशालय ने बेंगलुरु और मुंबई में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से जुड़े 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई कल शुरू की गई। ये जांच राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के कथित उल्लंघन के मामले में की जा रही है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला में आज निर्माणाधीन गोदाम ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। घायलों का SSKM अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए दुर्घटना स्थल पर हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं तथा स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

लीजिए प्रस्तुत है सांध्यकालीन सभा में प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आज रात्रि 9:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी संध्या 6:15 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। इस कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय रहेंगे फसल बीमा योजना से किसानों की सुरक्षा और खेत की उर्वरता बढ़ाने में जैविक खाद की भूमिका। साथ ही साथ सुनिएगा एक वार्ता खेत बचाओ अभियान के क्रम में मिट्टी की जांच के लाभ। वार्ताकार होंगे पुनीत कुमार।

संध्या वंदन कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे। संध्या 6:45 पर ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 7:05। आज इस कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं ब्रज काव्य सुधा, प्रस्तुत करेंगे खचीर मल भारद्वाज अनुरागी।

शाम सुहानी। श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे संध्या 7:31 पर। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं रात्रि 8:20 पर। सुनिएगा देशभक्ति परक रचनाएं। कार्यक्रम एक ही फिल्म से आपके लिए लेकर आएंगे रात्रि 8:30 पर सुहाने तरानों का आनंद लीजिएगा रात्रि 9:15 पर। रात्रि 10:00 सुनिएगा फिल्म संगीत रात्रि 10:30 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन सकते हैं पंडित ओंकारनाथ ठाकुर का ख्याल गायन, जो कि होगा राग दर

बारी कांडा में। रात्रि 11 बजे होंगे हिंदी समाचार, 11:05 पर समाचार होंगे अंग्रेजी में। रात्रि 11:10 पर होगा हमारी द्वितीय सभा का समापन। अभी तक आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम आकाश सिम्स हेलो डॉक्टर में इस गुरुवार 25 जून को 12 बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम में विषय रहेगा कमर एवं रीढ़ की हड्डी का दर्द, कारण, लक्षण और निवारण। कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर एसके गुप्ता, वरिष्ठ न्यूरोसर्जन आकाश सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 25:30-135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 94-122-25-575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में कमर एवं रीढ़ की हड्डी का दर्द, कारण, लक्षण और निवारण इससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। याद रहे मथुरा से बाहर के श्रोताओं को लगाना होगा पिन कोड 0565। सूचना समाप्त हुई और आइए अब सुनते हैं देशगान।

FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं मृणालिनी दीक्षित।

ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनान को मृणालिनी बहन की राम राम। भैया खेती बाड़ी का कार्यक्रम संजा को हमारे किसान भैया जब खेत ते लौट के आवे तो बड़े आनंद से सुने और जानकारी ले में हैं। आज हम चर्चा करेंगे फसल बीमा योजना से मैं किसान भैया को का लाभ है। भैया फसल बीमा योजना यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानन भैया को प्राकृतिक आपदा कीट या बीमारी से जो फसल खराब हो जाए वहाँ में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करें, यानी जो मेहनत से हमारे किसान भैया बहन अपनी पूंजी लगाकर जो फसल तैयार करें अगर किसी भी तरह की कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाए तो वाको जो नुकसान है जाए तो हमारे किसान भैया कहो जाए ना कि जब अपने आँख के आगे अपनी मेहनत के पैसन ने जाते देखें तो एकदम टूट जावें, तो उस आपदा से जो फसल नुकसान हुए वासे हमारे किसान भैया की आर्थिक सुरक्षा के गाजे ये फसल बीमा योजना हुई है। भैया सूखा बाढ़ ओलावृष्टि आंधी तूफान या बेमौसम बारिश से जो फसल नष्ट हो जाए वो नष्ट होने पर हमारे किसान भैया को आर्थिक मुआवजा सरकार द्वारा दिया जावे या योजना के अंतर्गत। भैया सबसे बड़ी बात कि जहाँ बहुत कम प्रीमियम यानी कि राशि देनी पड़े किसान भैया को अपनी जेब से, खरीफ फसलन के काजे कुल 2%, रबी फसलन के काजे 1.5% और बाकी प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार अपनी ओर से जमा करे हैं। आय में एक स्थिरता बनी रहे अगर फसल बर्बाद है जाए की स्थिति में बीमा की रकम से हमारे किसान भैया को एक आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहे जैसे कि वह पुनः अपने आप को खड़ा करके खेती जारी कर रखें और भैया और ऋण प्राप्त करने में बहुत आसानी हुए या योजना के अंतर्गत बीमाकृत जो किसान भैया बहन हुए उन्हें बैंक वित्तीय संस्थान खेती पर ऋण आसानी से दे देवे क्योंकि कम जोखिम वाले माने जावे हैं। आधुनिक खेती को भी जैसे भैया प्रोत्साहन मिले नुकसान को डर कम हैवे के कारण किसान भैया उन्नत बीज आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके आधुनिक खेती को बढ़ावा दे में हैं और उन्हें अत्यधिक लाभ ले में हैं। तो भैया अपनी जो मेहनत की पूंजी से

लगाकर फसल तैयार करी जावे, बाकी बीमा जरूर कराएं और अपने और अपने खेत की फसल को सुरक्षित रखें। ये तो रही आज की चर्चा। कार्यक्रम में हम आपको आगे जानकारी दे पाएंगे खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत मिट्टी जांच के लाभ जानकारी देंगे पुनीत कुमार। लेकिन भैया बातें पहले आनंद लें आंसू रावत के सुर में जालू गीत को।

0: भैया अभी आप आनंद ले रहे हैं आशु रावत के स्वर में जा लोकगीत को, राधे रानी हम पर एक बार नजरिया मारो। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको जानकारी दे पा रहे हैं, पुनीत कुमार थे, खेत बचाओ अभियान के क्रम में मिट्टी की जांच के का लाभ है।
1: भाइयों, इस समय सरकार द्वारा खेत बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में खेत बचाने के लिए मिट्टी की जांच आवश्यक है। अब हम जानते हैं मिट्टी की जांच कैसे और क्यों कराएं, इससे क्या क्या फायदे हैं। मिट्टी परीक्षण इसलिए कराया जाता है ताकि खेत में मिट्टी की सही स्थिति का पता चल सके। मिट्टी परीक्षण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सूक्ष्म पोषक तत्व जिंक, आयरन, सल्फर, बोरॉन, पोटेशियम, जैविक खाद एवं मृदा स्वास्थ्य का पता चलता है। अब हम जानेंगे कि मिट्टी जांच का नमूना कैसे लें और सही विधि क्या है मिट्टी जांच कराने और मिट्टी खेत से निकालने की। नमूना लेने का सही समय फसल कटाई या बुवाई से पहले नमूना लेना सही रहता है। फसल कटाई के बाद या बुवाई से पहले नमूना लेना चाहिए। मिट्टी नमूना और मिट्टी का सही परिणाम आए इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें मिट्टी परीक्षण के लिए नमूना लेने से पहले कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे मिट्टी लेते हैं तो उस जगह से मिट्टी न लें खाद डालने के बाद। आप अगर खेत में खाद डाल दें तो उसके बाद मिट्टी का नमूना न लें। पेड़ के नीचे से मिट्टी का नमूना न लें। खेत के किनारों से, नालियों के किनारे से, गीली मिट्टी के स्थानों से मिट्टी न लें। मिट्टी लेने की सही विधि है कि खेत से कुछ 8 स्थानों या 10 अलग अलग स्थानों से मिट्टी खेत से निकालें। 8 या 10 स्थानों पर अलग अलग

तानों पर से आप बी आकार का गड्ढा खोदें जो कम से कम 15 से 20 सेमी खेत के नीचे से मिट्टी लें। अगर खेत के मिट्टी लेने के समय उस पर घास कूड़ा या कोई कंकड़ पत्थर है तो उसे हटा दें और उसके बाद आप 15 से 20 सेमी खेत के नीचे से मिट्टी लें और 8 से 10 स्थानों से मिट्टी लेकर प्लास्टिक की बाल्टी या कपड़े पर उस मिट्टी को एकत्र कर लें और उसके बाद किसी साफ स्थान पर जाकर उसको अच्छी तरह मिलाएं और मिट्टी को गोलाकार फैलाएं। फैलाकर आप उस मिट्टी को 4 भागों में बांटें और सामने के 2 हिस्से हटा दें। यह प्रक्रिया जब तक करें कि तब तक वह मिट्टी आधा केजी न हो जाए और इस नमूनों को साफ थैली में भरकर अपना नाम, मोबाइल नंबर, खेत संख्या व फसल का नाम लिखें। इसके बाद उस मिट्टी को सॉइल टेस्टिंग जांच के लिए आप उस मिट्टी को ले जाएं और आप सॉइल टेस्टिंग जहां कराते हैं वहां उसे दे दें, जिससे कि आपकी साफ मिट्टी अगर जाएगी तो उसका अच्छा परिणाम और सही परिणाम निकल कर आएगा। मिट्टी परीक्षण से होने वाले फायदे। मिट्टी परीक्षण से प्रमुख होने वाले कुछ फायदे जैसे पीएच, अम्लीय क्षारीयता, ईसी, लवणीयता, ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व, जिंक, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, इसकी आपको सही जानकारी मिल जाएगी और इन पोषक तत्वों का पता चल जाएगा कि इसमें कोई पोषक तत्व कम या अधिक तो नहीं है। जैसे माना कि पीएच अगर आपके खेत में कम है या अधिक है तो इससे भी खेत को नुकसान होता है और पैदावार में आने वाली कुछ समस्याएं होती हैं। वैसे अधिकांश सबसे अधिक उपयुक्त जो पीएच माना गया है वह 6.5 से 7.5 तक उपयुक्त और सबसे अच्छा पीएच माना गया है। पीएच पौधों में पोषक तत्व उपलब्ध कराने में मदद करता है। अगर आपके खेत में पीएच कम या अधिक है तो आपके पौधों में पोषक तत्व उपलब्ध नहीं होंगे, खेत की फसल वृद्धि और उत्पादन पर उसका प्रभाव पड़ेगा। पौधे पोषक तत्व ठीक से नहीं ले पाएंगे तो इससे आपकी होने वाली फसल में नुकसान होगा, पैदावार नहीं होगी और आपको समझ नहीं आएगा कि मेरे खेत में क्या कमी है और अनावश्यक रूप से आप उर्वरक या खादों का प्रयोग करेंगे जिससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा ईसी। ईसी मिट्टी की लवणता का पता चलता है। ईसी मिट्टी की लवणता बनाती है। अगर ईसी अधिक है होने पर वृद्धि प्रभावित होती है। ये भी फसल पर काफी प्रभाव पड़ता है इसका अधिक होने पर। उसके बाद आता है ऑर्गेनिक कार्बन। ऑर्गेनिक कार्बन का मिट्टी में बहुत अपना ही अलग महत्व है। मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने में ऑर्गेनिक कार्बन का अलग महत्व है। मिट्टी को पोषक तत्व उपलब्ध कराने में ऑर्गेनिक कार्बन मदद करता है। मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या बताता है। अगर ऑर्गेनिक कार्बन अगर आपके खेत में कम है उसमें पौधों में पोषक तत्व उपलब्ध कराने में मदद नहीं करता, सहायक नहीं बनता, मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ाने में मदद नहीं करता, मिट्टी की संरचना में सुधार नहीं करता तथा लाभकारी सूक्ष्म जो जीव हैं जो संख्या बढ़ाता है, जो खेत में सूक्ष्म संख्याओं की संख्या को बढ़ाने में सहायक करता है, जो पोषक तत्वों को पौधों को पोषक तत्व देने में जो मदद करता है वह मदद नहीं होती। फसल में पैदावार कम होती है, पोषक तत्व उसमें अधिक नहीं पहुंच पाते जिससे हमारी फसल प्रभावित होती है और पैदावार भी कम होती है। ऑर्गेनिक कार्बन मिट्टी में मौजूद
जैविक पदार्थ की मात्रा का सूचक है।

अगर यह मिट्टी की उर्वरकता और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर ऑर्गेनिक कार्बन अधिकांश अब खेतों में कम होता जा रहा है, बहुत कम खेत हैं जिनमें ऑर्गेनिक कार्बन ठीक होगा या अच्छा होगा, परंतु ज़्यादातर 80% खेतों में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी है और किसान इस पर ध्यान नहीं देता, अनावश्यक रूप से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ज़्यादा करता है या ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने में वह ध्यान नहीं दे रहा, जिससे उसका फिजूल खर्चा बढ़ता है, फसल पैदावार में वृद्धि नहीं करती और उसे समझ भी नहीं आता कि हमारी फसल किस कारण से वृद्धि नहीं कर रही, और वो रासायनिक खाद बीज और खादों का प्रयोग करते हैं और फिर उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता इतना जितना मिलना चाहिए। अगर ऑर्गेनिक कार्बन अगर आपके खेत में अच्छा है, बढ़िया है, तो आपके खेत में प्रचुर मात्रा में, पूरी मात्रा में ऑर्गेनिक कार्बन है, जितने भी पोषक तत्व हैं आपके खेत में, DAP हो, यूरिया हो या नाइट्रोजन हो, सूक्ष्म पोषक तत्व जिंक, कॉपर, बोरोन या और भी जो पोषक तत्व हैं उन्हें पहुंचाने में मदद करता है और यह बहुत लाभ देता है खेत को भी और खेत में जो होने वाली फसल है उसे भी काफ़ी लाभ देता है। मिट्टी परीक्षण से क्या बदलाव आता है? मिट्टी की जांच के बाद किसान यह समझ पाते हैं कि खेत में कौन कौन से पोषक तत्व की कमी है। मिट्टी परीक्षण से पहले किसान को यह नहीं पता होता कि उसके खेत में किस पोषक तत्व की कमी है या किस पोषक तत्व की अधिकता है। माना कि किसी के खेत में DAP NPK प्रचुर मात्रा में है पर उसे नहीं पता और वो डालता जा रहा। मृदा परीक्षण से आने वाले जो बदलाव हैं, मिट्टी जांच के बाद किसान खेत में कौन से पोषक तत्वों की कमी है और किस पोषक तत्व की अधिकता है उसका पता चल जाता है। कौन सी खाद कितनी मात्रा में आवश्यक है उसका पता चल जाता है। इससे जरूर से ज्यादा खाद डालने की समस्या खत्म होती है। संतुलित पोषण मिलने से फसल की पैदावार बढ़वार अच्छी होती है, उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार आता है, मिट्टी की सेहत लंबे समय तक बनी रहती है, फसल गिरने या पीले पड़ने जैसी अन्य समस्याएं कम होती हैं, फसल में समस्याएं आती हैं किसान को पता ही नहीं चलता कि मेरे खेत में किस फसल की में ये क्या कमी है या ये क्या कहना चाह रही है कि किस समस्या से यह ग्रसित है, उसको किसान को यह पता नहीं भी नहीं चलता और अनावश्यक रूप से वो रासायनिक प्रयोग करते रहते हैं जो उसकी खेत में अधिक मात्रा में है। अधिक मात्रा में पोषक तत्व वाले उर्वरकों का प्रयोग कम कर रहे हैं या कुछ समय के लिए बंद कर दें। जैसे कोई किसान सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट कराता है तो उसको पता चलता है कि उसके खेत में किस पोषक तत्व की कमी है, किस पोषक तत्व की अधिकता है। अगर जिस पोषक तत्व की अधिकता है तो उस पोषक तत्व वाले उर्वरक का प्रयोग या कम करे या कुछ समय के लिए बंद कर दे, जिससे उसका होने वाला फ्यूज खर्चा भी कम होता है। अगर पोषक तत्व कम है तो उन पोषक तत्व वाले उर्वरक या जैविक खाद का प्रयोग थोड़ी अधिक मात्रा में कर दे, जिससे मिट्टी संतुलित हो जाएगी और पोषक तत्व भी उसमें संतुलित हो जाएंगे। अगर DAP यूरिया SSP अधिक है तो कम करे, बंद कर दे, जिससे पैसा भी बचत होगा। अगर पोषक तत्व कम है तो उन्हें दे सकते हैं, इससे मिट्टी संतुलित होगी और किसान का पैसा भी बचेगा। मृदा परीक्षण से लाभ। जब आप मृदा परीक्षण कराते हैं तो उससे होने वाले लाभ, मिट्टी की उर्वरकता का पता चलता है, फसल के अनुसार सही उर्वरक की मात्रा निर्धारित की जा सकती है, उर्वरकों का अनावश्यक उपयोग कम होता है जिससे लागत घटती है, मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी या अधिकता का पता चलता है, मिट्टी का pH, अम्लीय, क्षारीयता, लवणता EC ज्ञात होता है, सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे NPK, जिंक, आयरन, बोरोन, कॉपर आदि का भी पता चलता है। किसान की आय और लाभ में वृद्धि होती है। किसान की आय और खेती की सफलता काफी हद तक मिट्टी की उर्वरकता और सेहत पर निर्भर करती है और मिट्टी जांच से आपको यह सब पता चल जाता है। आज कई किसान अधिक पैदावार के चक्र में बिना मृदा जांच

0: के केवल अनुमान के आधार पर प्रयोगों का अंधाधुंध उपयोग कर रही हैं, जिससे लागत बढ़ जाती है और पैदावार कम होती है, फसल की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, उन्हें उपज भी उम्मीद के अनुसार सही नहीं मिलती। इसका मुख्य कारण खेत की मिट्टी की वास्तविक स्थिति ज्ञात नहीं होना। ऐसे किसानों के लिए मृदा परीक्षण और सही तरीके से मृदा नमूना लेना बहुत आवश्यक होता जा रहा है। इसलिए आज के समय हर किसान भाइयों को मिट्टी जांच कराना आवश्यक होता जा रहा है, जिससे उन्हें अपने खेत की उर्वरकता की, सूक्ष्म पोषक तत्वों की जानकारी पता चल सके, जिससे उनकी फिजूल खर्ची न हो और कम लागत में अधिक पैदावार उन्हें प्राप्त हो सके।
1: भैया अभी आप जानकारी ले रहे हैं पुनीत कुमार से खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत मिट्टी की जांच के लाभ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको आनंद दिखा रहे हैं बालकृष्ण भारती के स्वर में जालो गीत को।

भैया अभी आप आनंद ले रहे बाल किशन भारती के स्वर में जालो गीत को, संवरिया ले चल पल्ली पार। भैया कार्यक्रम चलते चलते अपने भैयान को मौसम की जानकारी दे दें। मौसम विभाग के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 5 दिनों तक आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है और उमस भरी गर्मी भी रह सके है। जाके अलावा आने वाले दिनों में लू की भी चेतावनी जारी करी गई है। जैले भैयाओं के साथ भैयाओं खेती बाड़ी में सावधानी पूरी तरह से बरतें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इन्हीं जानकारी के साथ हमारा वृष ग्रामीण कार्यक्रम संपन्न हुए। सभी भैया बहनान को राम राम।

अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी मृणालिनी दीक्षित। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संध्या वंदन।

कृष्णा और कंस, इस फिल्म से ली हुई भक्ति रचना अभी आपने सुनी। आवाज़ें श्रेया घोषाल और प्रणब कुमार विश्वास की।

0: फिल्म केदारनाथ से ली हुई भक्ति रचना अभी आपने सुनी अमित त्रिवेदी की आवाज में। और अब इसी के साथ संध्या वंदन कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
2: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
3: आराम से मैडम।
2: क्या
3: आराम से पहुँचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
4: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: ब्रज साहित्यिक, इस कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं ब्रज काव्य सुधा। प्रस्तुत कर रही हैं खचेरमल भारद्वाज अनुरागी।
5: आज के जा ब्रज का वसुधा कार्यक्रम को आरंभ करते भए सबसे पहले मैं अपनी रचना सरस्वती वंदना के प्रति दो छंद प्रस्तुत कर रहे हूँ। जा प्रकार भारती की आरती उतारु नित मन माहे भव सिंधु पार करे मोहे तू उबारियो तेरी शरण माहे मानव मेरो विश्राम लेत ने कहे रे मेरी ओर उरु में विचारियो शुद्ध बुद्ध करे मन को मयूर खिल जाए ऐसो उपकार करे ज्ञान सद दीजियो कहते अनुरागी कवि कृपा को र छोड़े मात शीश पे विराज के विचार नब कीजियो शीश पे विराज के विचार नब कीजियो मधुर मधु बातन सो मन के विचार न सो सबको बनू प्रेमी मात मोहितु निहारियो राह छोड़ यदि कहीं तनक में भटक जाऊं करियो ना अबारव आए तुरत समारियो सभा बीच यदि कहूँ फंदा में उलझ जाऊं आए कहीं जल्द मोही बंद मुक्ति कीजियो कहते अनुरागी छंद और न प्रबंध जानू सर्वस ने छावर स्वीकार बस कीजियो सर्वस ने छावर स्वीकार बस कीजियो। अगली कविता जल बचाओ कल बचाओ के संदर्भ में यह प्रकार प्रस्तुत कर रहे हूँ। अरे जल संरक्षण करके भैया, हाँ जल संरक्षण करके भैया जीवन सफल बना ली जाओ। अरे जल संरक्षण करके भैया जीवन सफल बना ली जाओ। ओ पानी स्वच्छ विमल अपनाओ, पानी स्वच्छ विमल अपनाओ और बीमारी सो मुक्ति पाओ। अरे करो अपव्यय मत पानी को धर धीरज काम चला ली जाओ। अरे जल संरक्षण करके भैया जीवन सफल बना ली जाओ। अरे जल संरक्षण करके तो दोहन कर रहे हो मानव धरती, दोहन कर रहे हो मानव धरती और पल क्षण कर रहे हो मन की मर्जी। अरे फिर कहे पछताए पानी को पंपंग से हटा ली जाओ।

जीवन सफल बनाए ली जाओ अरे जल संरक्षण कर कहीं तो जल की रक्षा करो रात दिन, जल की रक्षा करो रात दिन और स्वच्छ सदा पियो जल हिल मिल। अरे प्रेम और सौहार्द परस पर मन अपनो हर साली जो अरे जल संरक्षण करके भैया जीवन सफल बनाए ली जो। अरे जल ही तो जीवन कहलावे, जल ही तो जीवन कहलावे, जल बिन सभी सुन है जावे। अरे जिंदगानी बिन पानी सब सुनी, चाहे कितने उसाज सजाय ली जो। अरे जल संरक्षण करके भैया जीवन सफल बनाए ली जो। अरे जल संरक्षण करके थोरो थोरो जले बचाओ, अरे थोरो थोरो जले बचाओ, संकट कल को दूरी भगाओ। अरे रखो सदा पानी संग्रह करे, चाहे थोरो सो दुख पाए ली जो। अरे जल संरक्षण करके भैया जीवन सफल बनाए ली जो। बूंद बूंद जो पानी राखो और निष्कंटक हो जीवन ताको, बूंद बूंद पानी को राखो निष्कंटक हो जीवन ताको। अरे भव सागर पार उतर जामे सत पथ को लक्ष्य बना ली जो। अरे जल संरक्षण करके भैया जीवन सफल बना ली जो। अरे जल संरक्षण करके। अगली कविता प्रदूषण मुक्त पर्यावरण एवं स्वच्छ अभियान के संदर्भ में जा प्रकार प्रस्तुत कर रहे हूँ। वृक्ष हमारे जीवन साथी, वृक्ष हमारे जीवन साथी, मानव इन्हें काटो और जनमानस में भरे चेतना, भाव में मल मर साधो। वायु करें जो शुद्ध रोग सो मुक्ति हमें दिलाते, और दूषित गंध मिटा करके सुख

मनोमंगल बैठ गोद में प्रकृति सहचरी तेरे, बना विधान पहरुए दे रहे पहरा शाम सबेरे। सर सर मरमर की धुन मारुत तेरी अजब निराली, फल फूलन सोलदी संपदा हर तेरा है माली, हर तेरा है माली। बिन औषध को विपुल खजानो, जो चाहो वो पाओ। स्वच्छ मिला आवास सभी को, उस प्रभु के गुण गाओ। सुमन असंख्यों खिले धरा पे, सुरभि रही मधुमाती। पुरवा से पछुआ बयार चलती, इठला बल खाती। राखो स्वच्छता चौदिस जग में, मन अपने चित लाई। राखो स्वच्छता चौदिस।

की भूमि क्यों कर ले आप सफाई, मैं कोठे फूलों की बगिया मन मयूर खिल जाई। अनुरागी कब मोह पास में मन हर्षा वै भारी, जीवन सुधा वाटिका में पाकर छवि शरण तुम्हारी। अगली कविता बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के संदर्भ में, भारत के जन ने जब चारण में सुधार करो और बेटी को पढ़ाओ और बेटी को बचाइए। चेतोरे अजऊ अनारी मंद मूड लेके संकल्प सत बेटी को उबारिए। अंत कर्ण विमल जाको सब को ही साधनित, और काहू सोन दुराव करे मन में विचारिए। कहते अनुरागी जो बेटी न को संघार करे, तिनको विकराल काल रूप प्रभु धारिये, तिनको विकराल काल रूप प्रभु धारिये। अगला छंद, खाली देख कलाई भैया राखी बांधे सनेह की, खाली देख कलाई भैया राखी बांधे नेह की, लंबी होए आयु सो सो देती जी बधाई है। संकट पर्यो देखी दौरे आवे माई के, और बेटी को ही ओ फट्यो जी गाय सी रमाई है। व्याकुल ससु को है खान पान बिसराए, प्रभु सो लगाई डोरे अति घबराई है। कहत बेटी मन ही मन गंगा जमुना राज होई, भैया बाप मेरे बाड़े त्यारी प्रभुताई है, भैया बाप बाड़े मेरे त्यारी प्रभुताई है। अगला छन, बेटी ही माता है और बेटी ही देवी जान, बेटी ने जगत माए सृष्टि फैलाई है। बेटी जू ही चावल आने सवार है की प्रखी पात्र, अंतरिक्ष माए ध्वजा की रति लहराई है। रानी लक्ष्मी बाई लेकिन चंद्रहास हाथ एक, काट काट रुंड मुंड श्रोणित

है, कहते अनुरागी बेटी बेटन सो आगे बढ़े, कहते अनुरागी बेटी बेटन सो आगे बढ़े, समर भूमि माहे ने जब वीरता दिखाई है। अंतिम छंद है। ऐते ऊपर फर्क करे बेटा और बेटी न में, ऐते ऊपर फर्क करे बेटा और बेटी न में, एरी नर सोचो बेटी बेटा ते सवाई है, तोप टैंक गन मशीन बेटी ने करतब दिखा, अंत के समय पे बेटी

तब देखा अंत के समय पे बेटी होती ही सहाई है। वेद ओ पुराण शास्त्र श्रुत कहे नित्य प्रति, वेद ओ पुराण शास्त्र श्रुत कहे नित्र प्रति, बेटी ने पुरुष मन मोह की खवाई है। और कहते अनुरागी मानो मानो रे हमारी बात, बेटी को पढ़ाओ बात मेरे मन भाई है, बेटी को पढ़ाओ बात मेरे मन भाई है। अंतिम कविता है कन्या भ्रूण हत्या के संदर्भ में, गर्भ माँ है।

और कियो न हरि गुण गान रे, पल में होए ना सतिहारो खोटे कर काम रे। होगी अब कैसे भैया, और डूबेगी तेरी नैया फोटे मग पाम रे, पल में होए ना सतिहारो खोटे कर काम रे। तो कर तू ध्यान है अबहू, मत सोचे दुर्बातन कबहू, सुबह और शाम रे, पल में होए ना सतिहारो खोटे कर काम रे। अल्ट्रासाउंड तेने करवायो, प्रभु को फिर नाम भुलायो, और मिले नरक धाम रे।

0: amore.
1: आप सुन रहे थे ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आज आपने सुना ब्रज काव्य सुधा। प्रस्तुत कर रहे थे खचेरमल भारद्वाज अनुरागी। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर।

श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम आकाश सिम्स हेलो डॉक्टर में इस गुरुवार 25 जून 12 बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम में विषय रहेगा कमर एवं रीढ़ की हड्डी का दर्द, कारण, लक्षण और निवारण। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर एस के गुप्ता, वरिष्ठ न्यूरोसर्जन, आकाश सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सिम्स हॉस्पिटल, मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 25 30 135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 94 122 25 575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में कमर एवं रीढ़ की हड्डी का दर्द, कारण, लक्षण और निवारण से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है कमर एवं रीढ़ की हड्डी का दर्द, कारण, लक्षण और निवारण। समय 25 जून 2026 दिन में 12 बजे से। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लखनऊ अग्निकांड में एलडीए ने विभागीय जांच में दोषियों को किया चिन्हित। तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 पीसीएस अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में मिशन मोड पर फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाने का दिया निर्देश। विशेष टीमों ने जनपदों में निरीक्षण कर कई कोचिंग सेंटरों को किया सील। मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में आज उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग को किया संबोधित। कहा, पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में निवेश के लिए बना है सकारात्मक माहौल और भारत में तजाकिस्तान के राजदूत लुकमोन बोबो कालून ज़ादा ने आज रामपुर की रजा लाइब्रेरी का किया दौरा। कहा, दोनों देशों की साझा संस्कृतियों को सहेजी है ये पुस्तकालय। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में एलडीए ने विभागीय जांच कर दोषियों को चिन्हित कर लिया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि आग की चपेट में आई इमारत का नक्शा 2014 में पास किया गया था, जिसके बाद 2016 में एलडीए ने मानकों का पालन न करने पर इमारत को गिराने का नोटिस जारी किया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। विभागीय जांच में तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 पीसीएस स्तर के अधिकारियों की लापरवाही पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गई है।
1: तो इसमें जो दोषी लोग हैं, हम लोगों ने अपनी आंतरिक जांच कर ली है। जो दोषी लोग हैं उस समय जो तैनात प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी रहे हैं उनके विरुद्ध, और साथ ही साथ निर्माण करने में जिन लोग का निश्चित रूप से सहयोग रहा होगा 16-17 में तैनात जो अधिकारीगण थे उनके विरुद्ध हम लोगों ने कार्रवाई के लिए शासन भेज दिया है। और हम लोग शासन से अनुरोध भी कर रहे हैं कि सख्त से सख्त इन लोगों पर कार्रवाई की जाए।
0: इस बीच आज एलडीए ने आग की चपेट में आई बिल्डिंग पर नोटिस लगाने की कार्रवाई की। इस नोटिस के जरिए एलडीए ने बिल्डिंग मालिकों से 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। अगर एलडीए को संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो बुलडोजर का इस्तेमाल करके इमारत को गिराने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। वहीं आग की घटना में घायल हुए 7 लोगों को इलाज के बाद केजीएमयू से डिस्चार्ज कर दिया गया है। केजीएमयू के प्रवक्ता के सिंह ने बताया कि एक गंभीर रूप से घायल युवक की हालत भी अब स्थिर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रदेश भर में मिशन मोड में व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत सभी जनपदों में अस्पतालों, नर्सिंग होम, मेडिकल कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों, शॉपिंग मॉल, सरकारी भवनों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच कर आवश्यक सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कल बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रत्येक जनपद में विशेष टीम गठित कर फायर ऑडिट अभियान संचालित किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए कि किसी भी परिस्थिति में बेसमेंट में कोचिंग अथवा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन न होने पाए। इसी क्रम में आज प्रदेश भर में फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने कोचिंग संस्थानों में चेकिंग अभियान चलाया। गौतमबुद्ध नगर में सिटी मजिस्ट्रेट वेद प्रकाश पांडे ने बताया कि जांच के दौरान 2 कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया गया है, वहीं कई अन्य के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। अयोध्या में सीएफओ महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अयोध्या प्रशासन ने कोचिंग सेंटरों की जांच के लिए 2 टीमें बनाई हैं, जो फायर सेफ्टी की जांच के साथ लोगों को जागरूक भी कर रही हैं।
2: जो दुखद घटना हुई है लखनऊ में, इस क्रम में हमारे जिले में 36 हम लोगों ने कोचिंग को रजिस्टर किया हुआ है फायर सर्विस में। उन सभी को हम एक अभियान के तहत 2 टीमें हम लोगों ने बनाई हुई है। एक चेकिंग ड्राइव शुरू किया हुआ है, सुबह से हम इसी में लगे हुए हैं। छोटी मोटी कमी मिल रही है तो उसको इमीडिएट रेक्टिफिकेशन के लिए कह रहे हैं। अगर कहीं कोई बड़ी कमी मिलती है तो निश्चित रूप से फिर उस पर कार्रवाई की जाए।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत इन्वेस्टर्स रोड शो का आयोजन किया गया। रोड शो के माध्यम से प्रदेश के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, सेक्टोरल पॉलिसीज, एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी आदि की प्रगति से अवगत कराते हुए निवेशकों को आमंत्रित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री

0: प्रधानमंत्री ने देश की जानी मानी कंपनियों के प्रमुख अधिकारियों से मुलाकात की और कई निवेशकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर बेहद सकारात्मक माहौल बना है।
1: आज उत्तर प्रदेश भारत के 3S का एक मॉडल बना है, जहां सेफ्टी है, जहां पर स्टेबिलिटी है और स्पीड है। एक मजबूत रूल ऑफ लॉ के स्टेट के रूप में यूपी ने अपने आप को स्थापित किया है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी यूपी के अंदर आपको मिलेगा। एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस यूपी के अंदर आपको मिलेगी।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज नाबार्ड लखनऊ में एफपीओ राज्य स्तरीय कृषि चुनौतियों पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसान उत्पादक संगठनों के समक्ष आने वाली विभिन्न कृषि संबंधी चुनौतियां तथा उनके समाधान के लिए विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों की भूमिका पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मौसम की अनिश्चितता और वर्षा के बदलते स्वरूप को देखते हुए प्रदेश को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। कल कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के अंतर्गत आने वाले विभागों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों और संबंधित विभागों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप पहले से तैयारी रखने के निर्देश दिए। साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर पेयजल स्रोतों के संरक्षण, हैंडपंपों के अनुरक्षण, तालाबों के पुनर्जीवन और जन जागरूकता कार्यक्रमों को अभियान के रूप में संचालित करने के निर्देश भी दिए। भारत में तजाकिस्तान के राजदूत लुकमोन बोबो कालून ज़ादा ने आज रामपुर स्थित रजा लाइब्रेरी और संग्रहालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां संरक्षित दुर्लभ पांडुलिपियां भारत और तजाकिस्तान की साझा सांस्कृतिक विरासत को समझने में बहुत महत्वपूर्ण हैं। रजा लाइब्रेरी के निदेशक पुष्कर ने बताया कि तजाकिस्तान और भारत के बीच सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही एक समझौता भी किया जाएगा।
2: तजाकिस्तान और भारत के बीच में सांस्कृतिक और अकादमिक सहयोग किस प्रकार का हो सकता है, उस दिशा में हमने बातचीत भी की और आने वाले समय में हम वहां के संस्थानों और रामपुर रजा पुस्तकालय के बीच में समझौता ज्ञापन करेंगे। एक विशेष बात ये आई कि कुछ ग्रंथ यहाँ पर तजाकिस्तान से सीधा संबंध रखते और वो उस स्क्रिप्ट को और उस भाषा के अध्ययन के लिए मुझे हिज एक्सीलेंसी एम्बेसडर साहब ने कहा है कि वो वहां से स्कॉलर्स हमारे यहाँ भेजेंगे जो उसका अध्ययन कर सकें। और
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने मुजफ्फरनगर हरिद्वार रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS कॉरिडोर के लिए DPR तैयार करने को सहमति प्रदान कर दी है। प्रदेश के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि मुजफ्फरनगर हरिद्वार RRTS कॉरिडोर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को नई दिशा और गति देने वाला दूरगामी कदम सिद्ध होगा
3: और हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि RRTS को मुजफ्फर होते हुए हरिद्वार तक ले जाने के लिए DPR तैयार करने का निर्देश दिया है। उस DPR के लिए 6.43 करोड़ की स्वीकृति भी प्रदान की होती है। शासन से इसके लिए पत्र जारी हो गया है। मंडलायुक्त मेरठ को इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है और जो DPR इसकी तैयार होनी है, जितना हिस्सा मेरठ के अंदर आएगा उसका पैसा मेरठ का प्राधिकरण और जितना हिस्सा मुजफ्फरनगर जनपद में आएगा उसका पैसा मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण खर्च करेगा।
0: प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आज ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर्व पर श्रद्धालु सुबह से ही पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं। बदायूं के कछला गंगा घाट पर पवित्र स्नान और पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अमरोहा के ब्रजघाट और तिगरी गंगा धाम में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए प्रशासन ने नेशनल हाईवे 9 पर रूट डायवर्जन प्लान लागू किया है। बीते 24 घंटों में राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जनपदों में हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक कल भी राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, जबकि आगामी सप्ताह में मानसूनी गतिविधियां तेज होने के साथ प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर शुरू होने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ अग्निकांड में

0: एलडीए ने विभागीय जांच में दोषियों को किया चिन्हित, तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 पीसीएस अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में मिशन मोड पर फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाने का दिया निर्देश। विशेष टीमों ने जनपदों में निरीक्षण कर कई कोचिंग सेंटरों को किया सील। मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में आज उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग को किया संबोधित, कहा पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में निवेश के लिए बना है सकारात्मक माहौल। और भारत में तजाकिस्तान के राजदूत लुकमोन बोबो कालून ज़ादा ने आज रामपुर की रजा लाइब्रेरी का किया दौरा, कहा दोनों देशों की साझा संस्कृतियों को सहेजी है ये पुस्तकालय। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
2: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

जी हाँ दोस्तों, जिंदगी की तेज रफ्तार, फिर भी नई उम्मीद, नई आशाओं और आपके ढेरों संदेश, साथ ही साथ फिल्मी गीतों के साथ लेकर हाजिर है आपका पसंदीदा कार्यक्रम शाम सुहानी। कार्यक्रम में हमें आपके ढेरों संदेश प्राप्त हुए हैं और इसी क्रम में पढ़ते हैं ये पहला संदेश। संदेश प्राप्त हुआ सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ और समस्त परिवारीजनों का। जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े। कल्याण मुंबई से किशोर हेवराले, सुजाता प्रतीक हेवराले। बंडू लोहार पोपलगढ़, माया चंद्रकला और देवीदास। ये संदेश हमें मिला है खुपटी महाराष्ट्र से, गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल, जूली और जगदीश जौहरी। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश गौरव, गरिमा शर्मा। जैमिन कुमार जैन, हेतल कृष्णा, राकेश जैन, राजकोट गुजरात से। अगले संदेश के साथ देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, इन्हीं के साथ राधिका प्रभा देवी तामुरिया। संदेश प्राप्त हुआ बालोद छत्तीसगढ़ से। नांदेड़ महाराज से सुधाकर गायकवाड़, विकास, प्रीति, आशा, दीपांजलि, दीक्षा और बागमारे, इन्हीं के साथ शशांक बागमारे। चोटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा जुड़ चुके हैं और अगली फरमाइश के साथ आप सभी श्रोता जुड़े हैं। जिला अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान। नलवेश्वर नगर नरविल महाराज से पीएस नहावकर, निर्मला विशाल नहावकर। मलकापुर से नारायण मंगला, आशीष मुरहेकर। लाल माता सुदामा नगर अटलाई, जिला झालावाड़ राजस्थान से आप सभी श्रोता, हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर मीनाक्षी, मनोहर बाई बागरी, प्रभुलाल बागरी। बागरी मोहल्ला झालावाड़ से मनभावन, शोभा, कपिल नैना, सत्यनारायण, फुंदी बाई बागरी। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता जुड़ चुके हैं। विजय सुरलकर, रत्नमाला सुरलकर, गौरी सुरलकर, मोताला महाराज से। पाकुड़ झारखंड से श्वेता भगत, किसुतासु और

सर्वानंद और इन्हीं के साथ सत्यम आनंद। कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक, सविता, अनिकेत, ऋषिकेश, जीविका, सानिका दले, पुनावले पुणे से अजय, करिश्मा, अविका, विशाखा सोन बने। ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से आप सभी श्रोता कारी रायकारी मीनाकारी पुंजराज आरती आकर्षण जय श्री। अगले संदेश के साथ श्रोतागण जुड़े हैं मजनू कटिल्ला से कमल, मधु सागर बालूजा, सतना एमपी से उमंग आकांक्षा माही मलिक। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश बल्लू और तरुण निषाद। पटेल नगर मलोट से डॉ. रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी, गगनदीप आरजू और गुड्डू जाजौरिया। पैठण मारा से बाबा साहेब कड़ंगर, साखरबाई परमेश्वर सावणी और इनके सभी परिवारी जन। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कपिल, किरण, कुणाल और इनके समस्त मित्रगण। गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अजनान, साइमा हसन, बाबू मिफ्रा, चाहत और सादिया। पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, मुरली नीरा, प्रमेश उमिल पंछोर, इन्हीं के साथ केवरा राजेश्वरी वर्मा। खंडवा मध्य प्रदेश से शालिया डावर, हलीमा, जिक्रा आयशा। धर्मपुरी से मूसा, ईशा और जाकिर खत्री। नांदेड़ से प्रकाश जैन, लातूर से संगीता सूरज और पीआर जैन जुड़ चुके हैं। सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर ये गीत। फिल्म का नाम है दोस्ताना, आवाज सुनिधि चौहान की, गीत रचना अन्विता दत्त की, संगीत विशाल शेखर का।

क्या श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शाम सुहानी आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ जुड़े हैं जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता रजत और मयंक भाटिया जुड़ चुके हैं। नसवाला चौक मलकापुर से संजय सौभाग्यवती, प्रथमेश निवृत्ति, शीरसागर संजय कुमार, जत जिला सांगली से श्याम और छत्रपति संभाजीनगर से राजेंद्र, राधिका और इनके समस्त परिवारीजन। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राशि और शीतल राजेश। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक, अनिल, जयवीर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र, शाहिल और बिट्टा बजाज। जिला कासगंज यूपी से योगेंद्र नायक, गीता, निहारिका, सुशांत और इनके समस्त परिवारीजन जुड़ चुके हैं। गांव शेटे जिला सांगली से हनुमंत और संगीता शिंदे, नीतीश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, तनुजा, ईशान देवांगन, पलारी छत्तीसगढ़ से आप सभी श्रोता। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत और स्वीटी छाबड़ा। दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि और नोखेलाल वर्मा। गंजडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज, मोहम्मद कैफ, अनवर, लुबना और आलिया अंसारी जुड़ चुके हैं। चंडीगढ़ से सतीश, विमला, अनेजा, विक्रम, सचिन, सतीश, योगेश और युदव कड़वासवारा। संदेश प्राप्त हुआ हनुमानगढ़ राजस्थान से। दरियापुर भावली महाराज के आप सभी श्रोता गजानन येले, नवदीप, विश्वदीप, अशोक येले, शेरी वडनी रकोला से अरुणा, बलदेव, आदित्य दामोदर, किसन सपकाल, आशा, सोनिया, साईराज, विशाल सपकाल, बीट शहर, शास्त्री नगर से। मामूलवाड़ी महाराज से सुपान ताइडे, बसंतरा भोजने, निवृत्ति आडुकार जुड़ चुके हैं। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही, मेहरा जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से संदेश प्राप्त हुआ है। जाफराबाद से सुधाकर राजे यादव, प्रशांत कुमार, संचित, प्रथमेश, प्रणाली सर्वद, सानवी देशमुख, शेख चांद, शेख फूर खान, गुफरान और जाकिया, इन्हीं के साथ अदनान और रुमान पैठर से आप सभी श्रोता हैं। छत्रपति संभाजीनगर से प्रकाश, सुषमा, प्रांजलि, सोहम, सदानंद, विराज और अंशुमन ओवी। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता सुभाष योगी, इन्हीं के साथ बब्बू डब्बू। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी पर्ल, विलिस डिकैस्ट्रो, राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन, नौरीन, आसना, मोहम्मद कैफ अंसारी। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से आप सभी श्रोता जुड़े हैं। बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंद्रु, संस्कृति और पौरुष। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता। स्टेशन रोड जमशेदपुर से श्रोता हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल सोनू, पपी भाटिया। लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह, दलजीत, राजदीप, गुरुनूर, गुरराल और इन्हीं के साथ अविराज। करणवीर हाउस बुच्चो कैचिया बठिंडा से प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर, करणवीर, दीपिंदर, बरिंदर, कुलदीप, एकम, दमन, अभिजोत। रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या क्रांति और डीके साहू। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा टिल्लू नायक, कैतल हरियाणा से मधु नायक, तुलसी मस्कीन, वीना, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, शाहदरा दिल्ली से, चंडीगढ़ से।

राहुल, रचिता केशु और रिदान खुराना। समतानगर कृष्णी से लक्ष्मण जगताप, श्रेया निशांत और मानसी। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश गौरव, गरिमा शर्मा। राजनगर मधुबनी बिहार से राजकुमार गुप्ता, विनीता, रविराज, गौरव और इनके मित्रगण। छपरा से संजय कुमार गुप्ता, संजीत, सर्वजीत और सुधांशु कुमार गुप्ता। शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी और प्रियांशी मनवर जुड़ चुके हैं। तेलीपारा विलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवंश श्रीवास, करुणा, आयुष विवेक, आयुषी श्रीवास, मास्टर विट्ठल सुरोशे, सुषमा परिधि, मायरा सुरोशे, काटा रोड वाशिम, महाराष्ट्र के श्रोता। करताल हैदराबाद तेलंगाना से कानुगुला गोपाल माहेश्वरी, प्रमाणिक विष्णुवर्धन, विघ्नेश और इनके समस्त मित्रगण। प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल, यशस्वी वर्मा छत्तीसगढ़ पलारी से। गाडगे नगर यवतमाल मारा से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई, प्रतीक्षा शैलेश, स्वप्निल रक्षिता और रियांश लोखंडे। सैयद मसरूर, साइना हसन, अक्सा नाजिया, आफिया इब्राहिम, सद्दाम और आदाब, कुमार हेड़ा सहारनपुर से। आदर्श नगर मलोट पंजाब से आप सभी श्रोता राज शर्मा, मीना, योगेश, सौरभ, मैंडी, साइना और निवान शर्मा। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।

श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म ताल से। आवाजें हरिहरन और सुखविंदर सिंह की थी। गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीत AR रहमान का था। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शाम सुहानी।

कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ जुड़े हैं साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से गुरमीत सिंह और मीता। अगले संदेश के साथ हाशमी परिवार अजमेर से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज, असद, अरहाम और इनके समस्त परिवारी जन ग्राम पंजौनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श और अलौकिक चंसौलिया, खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष कोयल, डुग्गू भाविक और इनके समस्त परिवारी जन। श्रीरामपुर से डीक अशोक कुमार, अविका जीविका सानू, अर्चना कुमार, कोयते बस्ती पुनावली से अजय करिश्मा, अविका सोनवने, मेन बाजार कुंडलवाड़ी मारा से गंगाधर येमेकर, प्रमोद और प्रदीप येमेकर, निगत परवीन अब्बासी, मोहम्मद सईद अब्बासी, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान अरजान और अबान अब्बासी बुलंदशहर से, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता गीता जुड़ चुके हैं। अमरावती मारा से प्रवीण हांगोड़े, योगिता प्रियाली पार्थ और परिवार के समस्त जन, बुलढाणा वर्षिंगी मारा से अमोल, शोभाताई, दीपाली और श्लोक मानकर, इस्लामापुर मारा से सहदेव, शशिकला और सुमोहित तामोदर, अब्दुल गफार डावर, अब्दुल हक, जियाउल हक, मोहम्मद उमर डावर, इन्हीं के साथ राजेंद्र कटारे। संदेश प्राप्त हुआ नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से। कोटपा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश, उषा, अमित, हैपी रॉय, जिला गाजीपुर से प्रतीक, रोशनी, प्रांजल रॉय जुड़ चुके हैं। गमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री और प्रतीक कुमार, गुजरात से धीरज और इनके समस्त मित्रगण, कुंडलवाड़ी मारा से गंगाधर, विजयलक्ष्मी सावनकर, बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार, संक्रांति, रितेश, राजेश्वरी और उत्कर्ष चौहान। रोहिदास चौक पठानपुर सिटी से सुनीता, यशिराज, प्रशांत, ऋषि शिंदे और कृष्णा घोड़के, आदिनाथ पाटिल, अमोल गुड़िया और अशोक बोराला खुर्द से जुड़ चुके हैं। तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहाउद्दीन, फजान लल्ला, फरहान लल्ला, समायरा गुड़िया। कोली नांदेड़ महारा से नारायण गायकवाड़, दयानंद, ओम कुमार और साई गायकवाड़, छत्तीसगढ़ सरगांव बाजार से नसीम मोहम्मद, हबीब इरफान मोहम्मद,

कैरो जिला तारन तरन पंजाब से गुरदर्शन, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और गुरशबद। अगले संदेश के साथ दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार, रिंकी शेखावत, गोविंदपुरा, सीकर, राजस्थान के आप सभी श्रोता हैं। अडार नांदगा छत्तीसगढ़ से माखन चांदनी, भूपेश और दीपेश वर्मा, बुल्ढाणा माना से वासुदेव बोधवडे, अनीता, रमेश राव गाठोडे, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र, कपिल, पूजा परिहार, गंडोडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, जाहिरा बेगम, अयान अंसारी, उस्मान यासीन और कमर राही, चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पपूराजा खुशदिल, संगीता रानी, महक खुशदिल, सुनीता रानी, आरजू हसमुख, बुलबुल, संजीव बंटी जिंदल। कोल सिटी बरकाकाना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना और सोनू तस्नीम, निप्पी सहानी इन्हीं के साथ अफजल मलिक। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल और खलीफों की बाबड़ी से खुदा इनके समस्त परिवारीजन, मोहम्मद खाजा, आयशा तबस्सुम और जुबेरिया वरंगल से जुड़े हैं। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, सोनम अदीबा। अगले संदेश के साथ विकास कासगंज से पवन, सुयश, आशीष, तन्मय और अपूर्वा जुड़ चुके हैं। जयराम सिंगणकर, दिशांत और अर्पिता, संदेश प्राप्त हुआ यवतमाल से। जाकिर मुलानी, सुमैया मुलानी, सुबान, समीर, सलमा मुलानी, मुमताज, दिलशाद, नसीर, बाबूबी और बादशाह मुलानी पढ़रपुर से जुड़े हैं। वणिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी और इनके समस्त परिवारीजन। सुनवाते हैं आप सभी श्रोताओं की आप ही की पसंद पर ये गीत। इसी गीत को सुनना चाहा नजमुल होदा, शगुफ्ता, एसएम जावेद ने गुमला झारखंड से।

श्रोताओं इसी गीत को सुना चाहा मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज नावेद हसन, सुहेल अनम यशफ और रसीद ने।

रिंगिनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, कलानौर से नरेंद्र, किरण, नितिन और मयंक शर्मा। नांदुरा महाराज से श्रीकृष्ण संदीप अमूल्य बाठे। सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश, पूनम, ज्योति और शिवांश वर्मा।

जी हाँ दोस्तों, गीत संगीत भावनाओं की अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है, जो हृदय की गहराइयों को शब्दों और सुरों के माध्यम से व्यक्त करता है। और यही प्रयास था आज के इस कार्यक्रम शाम सुहानी में। अब इस कार्यक्रम को संपन्न करने की मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी तक आप सुन रहे थे श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम शाम सुहानी। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

लावारिस फिल्म में आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक को। गीत रचना जावेद अख्तर की थी, संगीत राजेश रोशन का। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

करम फिल्म का गीत अभी आपने सुना अलीशा चिनोय की आवाज़ में। इस गीत को लिखा था विशाल ने, संगीत तैयार किया विशाल शेखर ने।

और आइए अब चलते चलते सुनते हैं अदनान सामी की आवाज में ये गीत फिल्म गरम मसाला से। गीत रचना समीर की, संगीत प्रीतम का।

और इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 MHz पर। आइए सुनते हैं समवेत स्वरों में देशगान।

अभी तक आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में देश गान। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम आकाश सिम्स हेलो डॉक्टर में इस गुरुवार यानी 25 जून को 12 बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय रहेगा कमर एवं रीढ़ की हड्डी का दर्द, कारण, लक्षण और निवारण। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर एस के गुप्ता, वरिष्ठ न्यूरोसर्जन, आकाश सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सिम्स हॉस्पिटल, मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 2530135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में कमर एवं रीढ़ की हड्डी का दर्द, कारण

लक्षण और निवारण इस विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोडावासी लगाएं। सूचना समाप्त हुई। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हद कर दी आपने के कुछ गीत।

श्रोताओं, इस गीत को आवाज़ें दी थी उदित नारायण और विदा शर्मा ने। गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीत आनंद राज आनंद का। कार्यक्रम एक ही फिल्म से में आज आप सुन रहे हैं फिल्म हद कर दी आपने के कुछ गीत। इस क्रम में आई सुनते हैं ये अगला गीत। गीत को स्वर दिया है आनंद राज आनंद ने।

कार्यक्रम एक ही फिल्म से में आज आप सुन रहे हैं फिल्म हद कर दी आपने के कुछ गीत, और आइए अब सुनते हैं चलते चलते इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग। आवाजें हैं उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब यहीं संपन्न होता है। आज इस कार्यक्रम में आपने सुने फिल्म हद कर दी आपने के कुछ गीत। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर।

0: से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
2: It is really our responsibility.
3: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
4: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी होने वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: इस बीच ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ी महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम

0: से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
1: That Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
0: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरु नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा रोड आरओबी 63 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बनेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रेलवे देगी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
2: We had 26 delegates from
3: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो, इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देश भर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
4: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की खेड से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज SSKM अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना, NDRF, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं।

0: दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। काल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
1: अरुणाचल प्रदेश के की पन्योर जिले के याजागी स्थित पोसा में मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ताजा खबरों के अनुसार 4 लोग लापता हैं, 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र याजाली और होजपोटिन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। SDRF, NDRF और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में भी अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल बारिश की संभावना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
2: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
1: भारतीय नौसेना के जहाज उदयगिरी और कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत वियतनाम के हो चिन मिन शहर से दौरा पूरा करने के बाद रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल आलोक आनंद ने हो चिन मिन शहर की पीपल्स कमेटी और वियतनाम पीपल्स नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में INS कवरत्ती पर एक संयुक्त योग सत्र भी आयोजित किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अम्बरीश सक्सेना।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% तक बढ़ा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर ₹94.66 पर बंद हुआ।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जोगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेस और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 5 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: The news at 9. Good night.
1: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं सुहाने तराने।

Dica. कार्यक्रम की अगली पेशकश लता मंगेशकर और एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाजों में फिल्म पत्थर के फूल से, गीत रचना देव कोहली की, संगीत राम लक्ष्मण का।

हम सब चोर हैं। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और अलका याग्निक को। इस गीत को लिखा नवाब आरजू ने, संगीत निर्देशन बप्पी लहरी।

श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रहे थे एसपी बाला सुब्रमण्यम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में फिल्म पत्थर के फूल से। इस गीत को लिखा देव कोहली ने, संगीत राम लक्ष्मण का था।

0: आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।
1: कार्यक्रम के अंत में आपने सुना फिल्म ड्रीम गर्ल से लिया हुआ ये गीत अल्तमश फरीदी और पलक मुच्छल की आवाजों में। इस गीत को लिखा शब्बीर अहमद ने, संगीत मीत ब्रदर्स का। और इसी के साथ सुहाने तरानों का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, कृपया हमारे अगले अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी।

0: संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
1: नमस्कार श्रोताओं, हर साल देश में कुछ ऐसी प्रतिभाओं और ऐसे प्रेरणादायी बच्चों को आप राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करते हुए देख पाते हैं, जिन्होंने देश में अपनी वीरता से, अपने समाज सेवा से और तमाम क्षेत्रों में अपने प्रेरणादायी कामों से देश को प्रेरित किया है। तो इस वर्ष भी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो आज हम कार्यक्रम में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के महत्व, इसकी नामांकन की प्रक्रिया पर हम विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे और बातचीत करेंगे, और साथ ही हम पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं और जो नामांकित होकर जिन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ था उन बच्चों से भी उनकी कहानियां सुनेंगे। तो आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा कार्यक्रम में। हम सबसे पहले तो स्वागत करेंगे महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।
2: सबसे पहले मुझे आपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी प्रेरणादायक पहल के बारे में बात करने के लिए यहाँ मेरा आना अत्यंत में मेरे लिए बहुत खुशी की बात है।
1: जी, इस बार का जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है उसके नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा हमारे जो देश भर के सुनने वाले परिवार हैं, बच्चे हैं, उनको जानकारी दें और बताएं कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का मकसद क्या है, किस तरह से इस बार का ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो पूरी प्रक्रिया है ये इस बार भी विशेष है।
2: जी, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जिसको हम लोग शॉर्ट में PMRBP भी बोल सकते हैं, 5 से 8 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इस आयु के, उनके लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और यह पुरस्कार 6 श्रेणियों में दी जाती हैं। ये श्रेणियां हैं बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो इन 6 श्रेणियों में जो बच्चे उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त करते हैं उनको हम लोग इस पुरस्कार के माध्यम से सम्मानित करते हैं। और यह पुरस्कार हमारे युवा नागरिकों के साहस, प्रतिभा और योगदान को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया है।
1: जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस बार की जो प्रक्रिया है नामांकन की वो किस तरह से हमारे आप सुनने वालों को बताना चाहेंगे उसके बारे में, और क्या क्या योग्यताएं या क्या क्राइटेरिया है पूरा।
2: जो हमने आपको पूर्व में बताया कि 6 श्रेणियां आइडेंटिफाई की गई हैं, तो इसमें जो एक्सीलेंट अचीवमेंट्स होते हैं इन 6 फील्ड्स में से कोई भी फील्ड में अगर किसी बच्चे का एक अत्यंत ही मतलब उत्कृष्ट उन्होंने अगर कोई कार्य किया हो, काम किया हो, तो वो उसको दर्शाते हुए हमारी जो आवेदन की प्रक्रिया है उसके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
1: जी, तो हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे ये 6 श्रेणियां रखी गई हैं, इन श्रेणियों को हमने देखा है कि जो अब इन श्रेणियों के होने से एक विविध तरह के प्रतिभाएं हमारे सामने पेश होती हैं हर साल। तो इन श्रेणियों को जिस तरह से अब 6 किया गया है और अलग अलग श्रेणियां हैं, तो उनके बारे में भी हमारे सुनने वालों को हम चाहेंगे कि आप विस्तार से बताएं कि कौन कौन सी श्रेणी है और किस तरह से इन श्रेणियों से अलग अलग प्रतिभाओं के जो बच्चे हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत हो पाते हैं।
2: देखिए, जैसे पहली जो श्रेणी है बहादुरी, बहादुरी का मतलब अंग्रेजी में ब्रेवरी शब्द यूज करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपनी जान की बाजी लगा के दूसरों को बचाते हैं। ऐसे हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं और पिछले वर्ष भी उत्तर प्रदेश से और अन्य राज्यों से भी कई ऐसे उदाहरण आए थे जिसमें 2 बच्चे तो पोस्टह्यूमस मतलब जिनका देहांत हो गया था और उनको मरणोपरांत ए मतलब अवार्ड दिया गया था, तो उन बच्चों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अन्य बच्चों को बचाया था। एक यूपी का बच्चा था जिसने जो है उसके पिताजी को एक मगरमच्छ ने पकड़ रखा था, वो एक पानी के स्रोत में अपने पिताजी को उन्होंने जो है बचाया था। ये तो मैंने बहादुरी की बात की। सामाजिक सेवा की बात करें तो पिछले वर्ष एक केस आया था जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक हमारा बच्चा वो हमारे जवानों को अपनी सेवाएं दे रहा था, तो सामाजिक सेवा का ये बहुत ही अत्यंत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसे ही एनवायरनमेंट के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में भी लोगों ने कई सारे ऐसे उत्कृष्ट कार्य किए हैं, और आज आपने जिन बच्चों को शामिल किया है वो भी इसके बारे में और आपको उदाहरण स्वरूप बताएंगे। खेल की अगर हम बात करें, स्पोर्ट्स की, तो वैभव सूर्यवंशी का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा।
1: जी जी।
2: और वो नित्य नए नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। पिछले साल हम लोगों ने वैभव सूर्यवंशी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया था, पांचवी जो कैटेगरी है कला एवं

0: संस्कृति, कला एवं संस्कृति मतलब आर्ट एंड कल्चर, इसमें भी पूर्व के वर्षों में हम लोग कई बच्चों को सम्मानित कर चुके हैं और इसमें किसी भी प्रकार की प्रतिभा हो सकती है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। इसी प्रकार जो लास्ट कैटेगरी होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हमारे बच्चे बहुत आगे जाके काम कर रहे हैं, इवन AI से रिलेटेड, और इस
1: जी
0: प्रकार की भी एंट्रीज आ रही हैं। तो कुल मिला के इन 6 एंट्रीज में, 6 जो मतलब श्रेणियां रखी गई हैं, इसमें काफी बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ के बच्चे आ रहे हैं और उनकी हमारे पास नॉमिनेशंस आ रही हैं।
1: जी आपसे सर हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये भी एक बड़ा फोकस रहता है कि जो प्रतिभावान बच्चे हैं वो देश के कोने कोने से आए, दूर दराज गांवों से आए और ऐसे वर्गों से आए जो वंचित हैं, हाशिए पर हैं, दिव्यांग हैं, तो इस बार भी क्या इन्हीं बातों पर फोकस होगा नॉमिनेशन के वक्त कि देश के अलग अलग कोनों से, दूर दराज के इलाकों से भी जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाए?
0: अवश्य देखिए, हम लोगों का एक प्रयास ये भी रहता है कि हम भारत के हर कोने से, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट हो, सारे रीजन से हम लोगों का तो ये भी प्रयास रहता है कि यथासंभव मतलब हर जोन और हर राज्य से भी हम बच्चों को शामिल कर सकें। हम लोग हर साल 20 से 25 बच्चों को सम्मानित करते हैं, तो प्रयास यही रहता है कि एक तो भारत के हर एक कोने से बच्चे आए, दूसरा ये भी है कि जो बच्चे आर्थिक परिस्थितियों से, जिनके पेरेंट्स उतने वेल टू डू नहीं हैं, मतलब जो गरीबी से जूझ रहे हैं, जो कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, तो प्रयास ये रहता है कि हर प्रकार के, हर वर्ग के, और विशेषकर वैसे बच्चे जो कठिन परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं, उनके योगदान को हम लोग जो है उनको सराहा जाए और उनको ज्यादा से ज्यादा, बड़ी से बड़ी संख्या में सम्मानित किया जाए।
1: बिल्कुल। और हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे बहुत सारे परिवार वालों और बच्चों के मन में ये प्रश्न होगा कि जब बच्चे नॉमिनेशन के लिए खुद का आवेदन करेंगे, तो इसमें हम देख रहे थे कि दो प्रक्रिया है कि एक थर्ड पार्टी नॉमिनेशन और सेल्फ नॉमिनेशन, तो इसके बारे में भी आप कुछ हमारे सुनने वालों को बताना चाहेंगे कि इन दोनों प्रक्रियाओं को रखने का मकसद क्या है, क्योंकि इसमें ये भी है कि बच्चा खुद से भी आवेदन कर सकता है या किसी संस्था या परिवार या कहीं और से भी उसकी प्रतिभा का आवेदन किया जा सकता है।
0: जी, नॉमिनेशन के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि
1: जी
0: नॉमिनेशन ऑलरेडी 1 अप्रैल से प्रारंभ हो चुका है और 31 जुलाई तक नॉमिनेशंस होंगे, और इसके लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in
1: जी
0: इसके माध्यम से आवेदन किया जा सकता है, और यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। जो आपने मूल प्रश्न पूछा था कि कैसे नामांकन किया जा सकता है, कैसे नॉमिनेशंस किए जा सकते हैं, तो बच्चा स्वयं भी अपना नामांकन कर सकता है, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसे होती है कि बच्चे को उतनी जानकारी नहीं होती, तो कोई संस्था भी उनके बिहाफ पे, उनके पेरेंट्स या कोई भी रिश्तेदार या कोई भी संस्था उनके बिहाफ पे भी नॉमिनेशंस कर सकती हैं।
1: जी जो ये प्रतिभावान बच्चे हैं इनकी निश्चित रूप से अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिभाओं को हम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जरिए समझ पाते हैं, तो मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि आवेदन के बाद की प्रक्रिया क्या रहती है, जब उनका चयन हो जाता है इस पुरस्कार के लिए, उसके बाद की प्रक्रिया के बारे में भी आप अगर हमारे सुनने वालों को बता सकें।
0: देखिए, जब बच्चे का चयन हो जाता है तो एक बात ये रहती है कि थोड़ी सी गोपनीयता का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम
1: बिल्कुल
0: किसी बच्चे को जिस दिन पुरस्कार देने का दिवस होता है उससे पहले ही उनके नाम सार्वजनिक ना हो जाएं, तो थोड़ा सा हमको ये ध्यान रखना होता है। तो जिन बच्चों का चयन होता है, 2 से 3 दिन या 4 दिन पूर्व हम संबंधित जिले के कलेक्टर साहब को बताते हैं, और वहां के जो कंसर्न कलेक्टर साहब होते हैं वो फिर उस बच्चे से, उस बच्चे के परिवार से संपर्क करते हैं, और उन बच्चों को, वो जहां भी हो, देश के जिस भी कोने में हो, उनको हम बकायदा हवाई जहाज के माध्यम से, या आसपास के बच्चे हों
1: जी
0: तो मतलब बाय रोड भी वो आ सकते हैं, तो उनके आने, उनके लाने, ले जाने, ठहराने, वो सारी व्यवस्थाएं करते हैं, और उनके साथ उनके पेरेंट्स या परिवार का कोई एक सदस्य भी आ सकता है, तो उनको बकायदा हम जहां भी पुरस्कार दिया जाता है, मोस्टली दिल्ली में ही होता है, तो हम उनके लिए पूरी व्यवस्था करते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो उनका चयन होने के पश्चात उनको इन्फॉर्म करने, उनको कम्युनिकेट करने के साथ साथ उनको उस स्थान से दिल्ली लाने और दिल्ली से वापस छोड़ने और यहाँ पे ठहरने, और कार्यक्रम जहां भी हो, चाहे राष्ट्रपति भवन में हो या विज्ञान भवन में हो या अन्य किसी

0: स्थल पे हो, हम पूरी व्यवस्था करते हैं ताकि उनको किसी प्रकार से कोई कठिनाई ना हो और वो उस पुरस्कार को ग्रहण कर सके।
1: बिल्कुल सर, क्योंकि इस राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में हम सभी जानते हैं कि बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक, स्कूलों, संस्थाओं की भी बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि वो अपने आसपास असाधारण बच्चों को तलाश सकते हैं। तो अंत में हम आपसे उन स्कूलों, अध्यापकों और जो शिक्षक हैं या परिवार हैं, अभिभावक हैं या पूरा समाज है, उसके लिए आप कुछ अपील करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे कि वो अपने आसपास किस तरह से बच्चों को तलाश सकते हैं और उसके लिए नामांकन कर सकते हैं 31 जुलाई से पहले पहले, जैसे कि ऐसे बच्चे जो असाधारण हैं, जिन 6 श्रेणियों की हमने बात की, उन 6 श्रेणियों में अगर किसी भी तरह की उनमें ऐसी असाधारण प्रतिभा दिखाई देती है जो इस पुरस्कार के लिए बहुत जरूरी है या इस पुरस्कार के लिए खरी उतरती है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे और कुछ आप बताना चाहेंगे अंत में?
0: देखिए, इस पुरस्कार के बारे में इसका पर्याप्त प्रचार प्रसार हो, इसके लिए हम लोग न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट्स देते हैं। इसके अलावा रेलवेज पे भी हमारी एक पट्टी चलती है ताकि उसका प्रचार प्रसार हो सके। इस बार भारतवर्ष के समस्त कलेक्टर्स को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को मैंने स्वयं डीओ लेटर लिखा है और उनसे निवेदन किया है कि जो भी बच्चे उनके जिले में हों, आसपास में हों, उनके बारे में नॉमिनेशंस भेजें। इसी के साथ साथ हमने ऑनरेबल गवर्नर्स, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, इसके अलावा माननीय जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इसके अलावा जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी जो महिला एवं बाल विकास की संस्थाएं हैं, जैसे आंगनबाड़ी हैं और अन्य संस्थाएं हैं, सारे स्कूल्स में, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से सारे स्कूल्स में और अन्य सारे विभाग, जो भी महत्वपूर्ण विभाग हैं जहां से हमें एंट्रीज प्राप्त हो सकती हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय संगठन हो, नवोदय विद्यालय संगठन हो, समिति हो, तो हमने इस बार प्रयास ये किया है कि हमारी इस योजना या इस पुरस्कार के बारे में पूरे भारतवर्ष में इसका प्रचार प्रसार हो ताकि ज्यादा से ज्यादा एंट्रीज आ सकें। तो मैं समस्त भारतवर्ष के समस्त नागरिकों से और बच्चों के अभिभावकों से, उनके जो टीचर्स हैं स्कूल के, उन सबसे यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आपको कोई भी बच्चा ऐसा अगर आपके ध्यान में आता है, आपके संपर्क में आता है जिसमें प्रतिभा है, और मैं कहना चाहूंगा यहाँ कि भारतवर्ष में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि उस प्रतिभा को तराशने की जरूरत है, तो हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि आपको कोई भी ऐसा बच्चा जो उत्कृष्ट कार्य करता हुआ दिखे, मिले या आपके संपर्क में आए, उनके जो नॉमिनेशंस हैं आप जरूर उनके नॉमिनेशंस करें ताकि बड़ी से बड़ी संख्या में हमारे पास नॉमिनेशंस आएं ताकि हम इन बच्चों को पुरस्कृत कर सकें।
1: बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर, आपके जो भी बातें हैं निश्चित रूप से हमारे देश भर के विभिन्न श्रोताओं तक पहुंची होंगी और इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे ऐसे परिवार या बच्चे जरूर आगे आएंगे जो नामांकन करना चाहते हैं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के इस संस्करण के लिए। आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे आगे भी, आगे आने वाले अवसरों पर जरूर बातचीत करना चाहेंगे और जानकारी लेना चाहेंगे विभिन्न गतिविधियों पर महिला और बाल विकास मंत्रालय की। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: थैंक यू सो मच।
1: अब हम कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में उन प्रेरणादायी कहानियों को सुनते हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को दिखाया है, देश के लिए बहुत बड़ा अमूल्य योगदान दिया है, समाज को अपनी कारनामों से प्रेरित किया है। हमारे साथ सबसे पहले जुड़ी है शिवानी हसुरू, जो एक 17 वर्षीय एक पैरा एथलीट है और दिव्यांग होना उनके लिए कोई बाधा नहीं है। जैवलिन, शॉटफुट थ्रो, इन सभी में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने मेडल्स जीते हैं। तो शिवानी, बताएं अपनी कहानी हमारे सुनने वालों को, आप कहाँ से आती हैं और किस तरह से आपने अपनी छोटी सी आयु में पैरा एथलीट होने का इतना बड़ा गौरव हासिल किया है।
2: मेरा नाम शिवानी है, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ
1: जी,
2: और मैं पैरा एथलीट हूँ, शॉर्ट पुट जैवलिन करती हूँ। तो मेरे को पहले बचपन से ही मेरा हाथ नहीं है,
1: जी
2: तो पहले बचपन में बहुत फील होती थी लाइक मेरे को हाथ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी ऐसा। अभी मैं नवोदय स्कूल में पढ़ती थी 6 से लेकर 12 तक। बचपन में बहुत लोग बहुत कुछ बोला है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, तेरे को हाथ नहीं है वैसा। तो मम्मी पापा ने एक ही बात बोला है कि हम तो बड़े करेंगे, तुम कुछ भी मत बोलो, हम है इसके साथ, ऐसा बोल के मेरे को साथ दिया है। ऐसे मेरे को बचपन से हॉस्टल में भेजा है कि मेरे को लाइक आदत पढ़ने के लिए, विदाउट हैंड करने के लिए जो भी,
1: हम्म,

0: नवोदय स्कूल में गई हूँ 6th से लेकर 12th तक। फिर
1: जी जी
0: एक हैदराबाद में आदित्य मेहता फाउंडेशन है, जिसमें ओनली पैरा एथलीट्स को सपोर्ट करते हैं। उसमें मेरा डिफरेंट डिफरेंट गेम्स में मेरा बेस्ट लिया था, तो मेरा शॉट पुट जावलिन में अच्छा था, तो मेरे को ट्रेनिंग देते हैं, साथ में कंपटीशन भी भेजते हैं। वैसे मैं शॉट पुट जावलिन में स्टेट नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक गई हूँ। इंडिया के लिए 4 गोल्ड मेडल लाई हूँ, और ऐसे मेरे पास अभी अभी तक 19 मेडल्स हैं, जिसमें से 16 गोल्ड, एक सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज है। और मैं उसके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना
1: बिल्कुल
0: चाहती हूँ आगे से।
1: बिल्कुल, हमारी बहुत शुभकामनाएं शिवानी आपके साथ। जिस तरह से आपने अपनी छोटी सी उम्र में पैरा एथलीट होने का एक बड़ा अवसर हासिल किया और साथ में आपने बहुत सारे मेडल्स जीते, तो ये मेडल्स की झड़ी आपके लिए लगातार बनी रहे। और आपसे बस ये भी मैं जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका एक्सपीरियंस कैसा था, क्या क्या कैसा मन में उत्साह था, इसके बारे में भी हमारे सुनने वालों को बताएं।
0: कभी भी मैं टीवी में देखती थी नरेंद्र मोदी जी को और मैम को, द्रौपदी मुर्मू मैम को, मैं सोचती थी इतना बड़े लोगों से मैं कब मिलूंगी, ऐसा सोचती थी। फिर सोचा भी है कि मैं कभी नहीं मिल पाऊंगी, ऐसा सोची थी। पर मैं बहुत खुश हूँ ये अवार्ड मिला है। उधर जाके सर से, पीएम नरेंद्र मोदी जी से बात करना, उनसे इंटरेक्ट करना, ये सब कुछ मेरे को सपना जैसा लगा, पर वो सच था, बहुत अच्छा लगा।
1: जी बहुत धन्यवाद शिवानी, बहुत शुभकामनाएं आगे के आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। अब हम जुड़ रहे हैं एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व से, और हम सभी जानते हैं कि ये सभी बच्चे हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आयशी प्रिशा बोरा, इन्होंने छोटी सी 14 साल की उम्र में एक यंग इनोवेटर होने का गौरव हासिल किया। साइंस और इनोवेशन की कैटेगरी में इन्हें ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान मिला, और इन्होंने खासतौर पर सस्टेनेबल फार्मिंग और वेस्ट रिसाइकलिंग के नए नए तरीके खोजे हैं। तो चलिए इनसे ही जानते हैं कि कैसे ये एक यंग इनोवेटर होते हुए सस्टेनेबल फार्मिंग और जो रिसाइकलिंग है और जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको लेकर काम कर रही हैं। बहुत स्वागत है आयशी आपका।
2: नमस्कार सर, थैंक यू सर।
1: जी तो बताएं अपने बारे में। आपको सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी प्रोफाइल से ही लग रहा है कि एनवायरनमेंट से बहुत प्यार है और हम सभी को होना भी चाहिए, तो बताएं कि किस तरह से आपके मन में इस तरह की बातें आती हैं। जैसा कि हम आपने सुनने वालों को बता भी रहे थे कि जो सस्टेनेबल खेती है या जो वेस्ट रिसाइकलिंग है, ऐसे इस इन सब चीजों पर काम करने को लेकर कैसे प्रेरणा आती है।
2: मेरा मेन मोटिव यही होता है कि मैं जितना हो सके उतना अपनी मदर अर्थ को प्रोटेक्ट कर
1: बिल्कुल
2: सकूं। सस्टेनेबिलिटी मेरे हिसाब से एक जरूरत बन चुकी है आज के समय में, सो दैट्स व्हाई आई वर्क ऑन दीज स्टफ, एंड या आई वांट टू वर्क फर्दर ऑन इट, मेकिंग मोर सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स एंड व्हाट एवर आई कैन डू।
1: जी तो बहुत इंटरेस्टिंग आपके इनोवेशन है आयशी। ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगे कोई ऐसा आपका कोई सपना है कि अपना स्टार्टअप हो, आगे आपकी कोई कंपनी हो, आपके प्रोडक्ट्स राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के जो वेस्ट मटेरियल के प्रोडक्ट्स हैं वो बिकें, तो कुछ ऐसा सोचा है आपने।
2: राइट नाउ आई विल बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, आई डोंट नो अबाउट स्टार्टअप्स एंड ऑल, बट एज ऑफ टूडे
1: हाँ
2: व्हाट आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन इज टू कम अप विद द मोस्ट सस्टेनेबल सोल्यूशन टू
1: सोल्यूशंस।
2: ऑल दी सोसाइटल प्रॉब्लम्स, एंड इफ फ्यूचर आई गेट द चांस टू इम्प्लीमेंट देम इन रियल लाइफ, डेफिनेटली आई एम वेरी ईगर टू डू दैट, बट राइट नाउ आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन बिल्डिंग द सोल्यूशंस, एंड एज ऑफ नाउ आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन माई स्टडीज ऑल्सो, एज आई एम अ 10th ग्रेडर दिस ईयर।
1: साथ में आपसे भी वही सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव कैसा था, एक्सपीरियंस कैसा था, क्या आपके मन में एक्साइटमेंट था, उसके बारे में भी आप बताएं।
2: इट वॉज समथिंग दैट आई नेवर ड्रीम्ड ऑफ, एंड इवन टूडे आज भी मैं शब्द नहीं ढूंढ पा रही हूँ मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ। बहुत अच्छा लगा, लाइक इट्स समथिंग द लिटिल आयशी इनसाइड मी वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर, एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट टू बी ऑनेस्ट।
1: थैंक यू सो मच आयशी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने अपने एक्सपीरियंस, अपने इनोवेशंस के बारे में हमारे सुनने वालों को बहुत डिटेल में बताया। थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू सर।
1: अब हमारे साथ एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व है, एक और हमारे साथ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेता पिछले साल के जुड़ रहे हैं, वंश तयाल। वंश तयाल ने अपने जीवन में किसी भी तरह के मिसिंग को किसी

0: भी तरह के लॉस को लॉस नहीं समझा और आज वो एक बहुत बड़े यूथ लीडर है और एक केयर गिवर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्हें सराहना मिली है। तो वंश को हम जोड़ना चाहेंगे। वंश, अपने बारे में बताएं थोड़ा सा। हम सभी जानते हैं कि आपका परिवार नहीं है, माता पिता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपने अपने जीवन में किसी भी तरह की रुकावट को महसूस नहीं किया और आज आपने इस लॉस को उबारते हुए एक बहुत बड़े यूथ लीडर के तौर पर उभर कर सामने आने का खुद को मौका दिया। बताएं अपने बारे में कुछ।
1: तो ये मौका मिले बहुत एक कठिन समय रहा, जब तक मेरे माता पिता नहीं थे, लेकिन बहुत रिश्तेदारों का सपोर्ट नहीं था, बहुत कठिन समय रहा मेरे लिए। बहुत ही आगे मूव ऑन कैसे करना है, कैसे खड़ा होना अपने पैरों पे, बहुत मुश्किल था लाइफ में, है ना। कि अब तो हिम्मत हार गई थी कि क्या ही करेंगे, कहाँ जाएंगे, अकेला हूँ, क्या करूँगा, ऐसी रह जाऊंगा। बहुत मुझे रिश्तेदारों ने भी सपोर्ट नहीं किया बिल्कुल भी, कुछ नहीं बना। फिर थोड़ा होप हुई एक, फिर होम में आया मैं, चिल्ड्रन होम में आया चंडीगढ़ में। फिर देखा वहाँ पर एनवायरमेंट, देखा लगा ना, कुछ 4-5 महीने लगे, हुआ थोड़ा सा बैकअप आया, धीरे धीरे सपोर्ट आया, वहाँ के स्टाफ ने काफी सपोर्ट किया मुझे इस बात के लिए। उसके बाद फिर एक छोटा सा बच्चा आया, मतलब बहुत छोटा बच्चा था, स्पेशल बच्चा, मतलब एक साइबर पॉलिसी थी उसको, मतलब वो चल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था। तो उससे काफी इंस्पायर हुआ, काफी मोटिवेट हुआ उस बच्चे से मैं, कि हाँ चलो बहुत छोटा है, और उसको बच्चे को उनके माँ बाप ने छोड़ दिया, उसको भी हाँ उसकी हालत ऐसी है, मतलब फिर भी मैं रिलायबल हूँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, कि कुछ भी कर सकता हूँ। तो आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम, कि हाँ ही कैन डू वेल, ही कैन सर्वाइव, तो मैं तो क्या ही हूँ, मैं तो फिर भी अपने काफी बड़ा हूँ, 12-13 साल का था उस टाइम। तो काफी अच्छा मौका था, इसलिए मैंने फिर काफी इंस्पायर होकर मैंने सोचा कि इसको वॉलंटियर सर्विस दूंगा। और काफी जिस होम में मैं रहता था तो काफी स्पेशल बच्चे भी रहते थे वहाँ पे, तो उन सबकी हेल्प करना और हेल्प आउट करके, मतलब उन सबकी मदद करके, मतलब उस बच्चे को मैंने काफी नाइक टूडे की वो चल भी सकता है, खा भी सकता है, बोल भी पा रहा है आराम से। तो काफी था ये समय, फिर धीरे धीरे नॉमिनेशन का पता लगा कि हाँ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का भी नॉमिनेशन मिल जाता है सोशल वर्क में। तो मेरे सुपरिटेंडेंट सर थे, मैं चला देता रोड़ा, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया, काउंसलर मिस्टर प्रदीप ठाकुर थे, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया कि हाँ करो करो। तो फिर उन्होंने दोनों ने इकट्ठे मिलकर फॉर्म वगैरह भरा मेरा।
0: बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपने इतनी छोटी सी उम्र में अपने जीवन के अनुभव से जो समाज सेवा का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, ये बहुत सच में सराहनीय बात है। हम आपसे और जानना चाहेंगे कि फ्यूचर में जिस तरह से हम भी जानते हैं कि देश भर में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके परिवार नहीं है, उनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं, क्या आपने सोचा है फ्यूचर में कि आप कैसे अपने इस समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाना चाहेंगे?
1: जैसे कि मेरा एक स्कोप है इन फ्यूचर में कि मैं एक अच्छा पढ़ाई करके साइकोलॉजिस्ट बनूँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और जितनी करीबी से मैंने मुसीबतों को देखा है, वो मैं चाहता हूँ कि वो लोग ना देख पाए, कि वो युवा पीढ़ी ना देख पाए, जो बच्चे हैं वो ना देख पाए, उनका साथ ही अपनी सोशल सर्विस कंटिन्यू रखना चाहता हूँ और सबकी हेल्प आउट करना चाहता हूँ जितनी मेरे से हो सकेगी, मतलब सेल्फ होके उन्हें हेल्प करना चाहूंगा उनकी।
0: बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएं वंश आपके लिए हमारी कि आप इस तरह से अपने समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जुड़ते हैं सुमन सरकार से। सुमन सरकार एक तबला वादक हैं, छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत सारे मंचों पर अपने तबला वादन का परफॉर्मेंस दिया है और साथ में इनका एक और काम है कि ये जो ऐसे बच्चे जो म्यूजिक के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ट्रेनिंग, उनको फ्री ट्रेनिंग की भी इन्होंने कोशिश की है, तो ऐसे भी समाज सेवा का ये काम कर रही है। बहुत स्वागत है सुमन आपका।
2: सर आपको बहुत धन्यवाद।
0: तो सुमन बताएं कि कैसे आपके मन में म्यूजिक को लेकर ये इंटरेस्ट आया था, क्योंकि आपको कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आप अपनी प्रतिभा के बारे में हमारे सुनने वालों को बताएं।
2: तो सर देखिए, मेरा जर्नी जो शुरू हुआ था 3 साल की उम्र में ही शुरू हो गया था, जब मैं एकदम छोटा था, तो तभी मैं ये तबला को मतलब आसपास के जब कुछ चीजों को बजाने की कोशिश करता था। मेरे फादर का जो बहुत सपना था वो थोड़े शास्त्रीय संगीत का चर्चा करेंगे, मेरे परदादा जो थे वो श्रीखोल बजाते थे, तो मेरे फादर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए ये सपना पूरा नहीं हो पाया, तो उसी हिसाब से उन्होंने मेरे अंदर ये सपना देखना शुरू किया। तो जब मैं 3 साल का उम्र का था तभी मेरे पापा ने ये नोटिस किया कि बच्चे के अंदर ताल का कुछ ज्ञान है, तो मेरे फादर ने शिक्षा चालू कर दिया था मेरे गाँव में। मेरे प्रथम गुरु का नाम है श्री पबीर कुमार सरकार, उनसे मैं सीखना चालू किया, तो वहां से जानने शुरू हुआ। तो फिर चलते चलते जब मेरा उम्र 7 साल का हुआ तो मेरा फर्स्ट स्टेज प्रोग्राम था, कंपटीशन था, तो मैं बहुत डरता था तब स्टेज पे सबके सामने बजाने के टाइम। तो मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया, गुरु का आशीर्वाद तो रहता ही है।
0: बिल्कुल,
2: तो इसी हिसाब से लाइफ में फर्स्ट जब कंपटीशन दिया तो उसमें मैं फर्स्ट हुआ। मेरा उम्र तब 7 साल का था, मैं तब फर्स्ट हुआ, तो जो जजमेंट

0: था, उन्होंने बोला कि मेरे फादर को उन्होंने एडवाइस दिया कि बच्चे को और ऊपर ले जाओ और अच्छे गुरु के पास ले जाओ। तभी से मैं कोलकाता के गुरु से सीखने लगा, श्री उज्जवल भारती से। तभी से मेरा जर्नी, ये जो शास्त्रीय संगीत का जर्नी है, तभी शुरू हुआ। धीरे धीरे ये बढ़ता रहा, मैंने रियाज करता, हमारा तो पूरा रियाज पे चलता है ये शास्त्रीय संगीत। मैं पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये शास्त्रीय संगीत का जो प्यार मेरे अंदर बढ़ता रहा
1: जी। और ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे, जो आपकी कोशिश है कि आप फ्री ट्रेनिंग दें जो संगीत सीखने वाले बच्चे हैं उनको, उसके बारे में भी बताएं किस तरह का ये आप काम कर रहे हैं।
0: आज के जो जनरेशन है वो सिर्फ एडुकेशन पे भागता है, तो मेरा एक ही कहना है कि एडुकेशन के साथ साथ ये जो शास्त्रीय संगीत व हमारा कला संस्कृति जो है, इसमें भी बहुत बड़े बड़े सम्मान पा सकते हैं। यही मेरा वार्ता रहेगा समाज के अंदर, जो पद्मश्री पद्मभूषण बड़े बड़े जो सम्मान है वो शास्त्रीय संगीत में भी मिल सकते हैं।
1: बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत बधाई भी कि पिछले साल आपने जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये सम्मान हासिल किया। थैंक यू सो मच सुमन।
0: थैंक यू सर।
1: अब हम जुड़ रहे हैं अर्णव अनुप्रिया महर्षि से। इनका जो एक AI पावर्ड रिहैबिलिटेशन सॉल्यूशन है दिव्यांग लोगों के लिए, वो बहुत चर्चा में है, उसने इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्निशन हासिल की है। तो आइए उनके इस सॉल्यूशन के बारे में उनसे जानते हैं, और साथ में जो पिछले साल राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो सम्मान मिला है उसके बारे में भी उससे हम बातचीत करते हैं। अर्णव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे श्रोताओं को सबसे पहले अपनी इनोवेशन के बारे में बताएं कि किस तरह से आपने AI के जरिए एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की।
2: मेरा जो AI सॉल्यूशन है उसका नाम फेयर चांस है, जिसका फुल फॉर्म है फाइन मोटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड रिहैबिलिटेशन चांस। ये उन दिव्यांग लोगों के लिए बना है जिनके उंगलियों की जो ताकत रहती है वो बहुत कमजोर रहती है, उसके रिहैबिलिटेशन के लिए बना है, जैसे पैरालिसिस पेशेंट्स, सेरिब्रल पॉल्सी पेशेंट्स। ये जो AI इनोवेशन है, ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कोई भी साधारण लैपटॉप या स्मार्टफोन पे चल जाता है, और इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको एक लाइव असेसमेंट मिलता है, एक लाइव आउटपुट मिलता है कि आप कितना अच्छा आपके उंगलियों के मूवमेंट्स कर रहे हो।
1: आपसे आखिर में मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान है उसको हासिल करके आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या मन में था, उसके बारे में भी अपना एक्सपीरियंस बताएं।
2: यही पुरस्कार के माध्यम से मेरे जो ये काम है इसको एक क्रेडिबिलिटी मिली है कि सचमुच का ये असली, मतलब सचमुच का काम कर रहा हूँ जो एक्चुअली दूसरे दिव्यांग लोग और दूसरे पेशेंट्स के काम में आ सकता है।
1: जी, आपके लिए बधाइयां भी इस पुरस्कार के लिए। धन्यवाद आप जुड़े हमारे साथ इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, जिस तरह से इस पूरे कार्यक्रम में हमने महिला और बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजित कुमार जी से चर्चा की राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में, हमारे श्रोताओं को बहुत सी जानकारियां नामांकन से लेकर इस पुरस्कार के मकसद के बारे में जरूर हासिल हुई होंगी। और साथ में कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में हमने पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित कुछ प्रेरणादायी बच्चों से बात की, तो उनके अलग अलग कहानियों को सुनकर भी बहुत सारे सुनने वाले जो बच्चे हैं, परिवार है, वो प्रेरित हुए होंगे कि जो 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक इस साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, अगर किसी श्रेणी में उन्होंने कोई ऐसा कारनामा किया है, कोई छुपी हुई प्रतिभा है, तो जरूर वो सामने आएंगे और नामांकन करेंगे। आप सभी का कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: चर्चा का विषय है।

श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की आवाजों में फिल्म बंटी और बबली से। गीत रचना गुलजार की, संगीत शंकर एहसान लॉय का था।

केके की आवाज़ में आपने सुना ये गीत फिल्म कार्तिक कॉलिंग कार्तिक से। इस गीत को लिखा जावेद अख्तर ने, संगीत शंकर एहसान लोय का था।

कार्यक्रम में आगे आइए, सुनते हैं श्रेया घोषाल की आवाज में ये गीत फिल्म देवदास से। गीत रचना नुसरत की, संगीत इस्माइल दरबार का।

कार्यक्रम के अंत में आइए आपको सुनवाते हैं उदित नारायण के स्वर में ये गीत फिल्म वीर जारा से। इस गीत को लिखा जावेद अख्तर ने, संगीत मदन मोहन का।

अभी तक आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 MHz पर। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम आकाश सिम्स हेलो डॉक्टर में इस गुरुवार यानी 25 जून को अपराह्न 12 बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम में विषय रहेगा कमर एवं रीढ़ की हड्डी का दर्द, कारण, लक्षण और निवारण। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर SK गुप्ता, वरिष्ठ न्यूरोसर्जन, आकाश सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सिम्स हॉस्पिटल, मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 2530135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में कमर एवं रीढ़ की हड्डी का दर्द, कारण, लक्षण और निवारण इससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है कमर एवं रीढ़ की हड्डी का दर्द, कारण, लक्षण और निवारण। यदि आप कमर एवं रीढ़ की हड्डी की समस्या जैसे रीढ़ की हड्डी में दर्द, कूल्हे के जोड़ में नस का दबा होना, माइग्रेन, सर्वाइकल दर्द आदि के समाधान के लिए सवाल पूछना चाहते हैं तो डॉक्टर SK गुप्ता से पूछ सकते हैं, जो कि हैं वरिष्ठ न्यूरोसर्जन, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सिम्स हॉस्पिटल, मथुरा। समय और दिन याद रखिए, 25 जून 2026 दिन में 12 बजे से। सूचना समाप्त हुई। और आइए अब आपको सुनवाते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पंडित ओंकार नाथ ठाकुर का ख्याल गायन, निबद्ध है राग दरबारी कान्हड़ा में।

Rosa, Rosa, Rosa.

Sajo, mira, me, sajo, la, da, do.

哎呀，在。

0: आप सुन रहे थे पंडित ओंकार नाथ ठाकुर की आवाज़ में राग दरबारी कानड़ा। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और

0: दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is clearly our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के दौरान के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार के मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वे सुरक्षित रूप से उतरा। मंत्रालय ने बताया कि घटना की सूचना न देने के मामले में संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और विमान चालक दल के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। घायलों का इलाज सरकारी SSKM मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कोलकाता नगर निगम घटना की रिपोर्ट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि हादसे की विस्तृत जानकारी कल विधानसभा में दी जाएगी। गुजरात के भुज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आज AI आधारित स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट से पहले वाहन का पंजीकरण, प्रशिक्षण वीडियो देखना, फोटो स्कैनिंग और RFID सेंसर लगाना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बनेगी। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक न हो ईरान की यात्रा न करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।